0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो

ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में चल रही इस विशेष कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के परिपूर्णतम रूप भागवत जी कहते हैं कृष्णास्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण में भगवान के सभी गुण प्रकट थे जो उनके चरित्रों से स्पष्ट होते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय करने की गुंजाइश नहीं है। संशय करने वाले विनाश को प्राप्त होते हैं। वे सुखी नहीं हो सकते। संशयात्मा विनिश्यंती न सुखम न संशयात्मनः। श्रोताओं, कृष्ण शब्द का अर्थ है कृषिर भावाचक शब्दे। कृषि भावाचक शब्देष्ण निर्वित्त वाचक तयोरै वाक्यम परः ब्रह्म कृष्ण इत्याभिधीयते। भगवान श्री कृष्ण सर्व कला पूर्ण है और यह उनकी समय समय की लीलाओं से स्पष्ट हो जाते हैं। किंतु चंद्रवंश में अवतरित होने से वे सुदश कला पूर्ण कहे जाते हैं। उन विशिष्ट 16 कलाओं के नाम इस प्रकार है। सबसे पहला अन्न, जिससे जीवन मात्र की उत्पत्ति होती है। अन्न भवंती भूतानि, अन्न से तृप्ति होती है। तथा छंदोग्य उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यंजनात्। उनको ब्रह्म जानकर उनकी कभी निंदा ना करें। उनकी निंदा करने वाले ब्रह्म की निंदा कर रहे हैं। दूसरा कला है स्वजनों की सृष्टि हुई। यह दूसरी कला अन्न और प्राणों से मिलने से हुई। इससे स्वजनों में चलने फिरने की शक्ति आ जाती है। फिर भगवान कृष्ण के तीसरा कला अन्नमय प्राणमय मनोमय की है। इसी से अंधजनों का जन्म हुआ और इनमें प्रेम आता है। चतुर्थ कला अन्न प्राण मन और विज्ञान की है। इसी से जरायुजों की सृष्टि हुई। पंचम कला अन्न प्राण मन विज्ञान और आनंद की है। पंचकोश मनुष्य मात्र में साधारण्यता होते हैं। इन सब का विस्तृत वर्णन अनेक ग्रंथों में आता है। फिर भगवान कृष्ण के षष्ठ कला उनकी विभूति उनकी ऐश्वर्य की है, जो मनुष्यों के कर्मानुसार न्युधादिक होते हैं। किंतु भगवान में एक रस परिपूर्ण है। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के 10वें अध्याय में अपने विभूतियों गिनाते हुए अंततः 41वें श्लोक में संपूर्ण विभूतियों

मेरे से ही तेज अंश से उत्पन्न होते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण कहता है। सप्तकला धर्म की है जिसके रक्षार्थ सदैव भगवान सनदत करते हैं। भगवान की रची सृष्टि भी धर्म के आधार पर स्थित है। जहां धर्म में कुछ भी विषमता आई अथवा

भगवान ने अपनी यही विरुद्ध गीता के चौथे अध्याय में भी बताया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। अष्टम कला है सर्व प्रकार के अर्थ भगवान की कृपा से सुलभ होते हैं। भगवान ही परम अर्थ माने जाते हैं। नवम कला है ज्ञान। सब प्रकार का परिपूर्ण ज्ञान भगवान में है, वह ज्ञान स्वरूप है। उनकी कृपा कटाक्ष के बिना ज्ञान का प्रकाश असंभव होते हैं। और दसवां कला है तेज, जिसको हम प्रकाश कहते हैं। संसार में जितना प्रकाश, जितने ज्योति है, सब भगवान कृष्ण की सत्ता से है। सारा विश्व प्रकाश्य है और भगवान कृष्ण प्रकाशक है। एकादश कला है यश। भगवान कृष्ण यश के अथाह सागर है। संसार का कोई भी व्यक्ति उनकी यश की था नहीं पा सकते। वेद भी नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं। शेष भी सहस्रमुख वाले, दो सहस्र जिहाओं वाले भगवान के नित्य जीवन सुयशों का गान करने में असमर्थ हो जाते हैं। और फिर भगवान कृष्ण के द्वादश कला है योग की। भगवान श्री कृष्ण समस्त योगियों के ईश्वर है, इसलिए भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्ण। फिर उसके बाद त्रयोदश कला में सर्वज्ञाता है। भगवान ही पूर्ण सर्वज्ञ है। शेष सब में थोड़ी बहुत अल्पज्ञाता का भास झलक दिखता है। ब्रह्मा का जो स्वरूप है वह भगवान श्री कृष्ण का है। ब्रह्मा का बचरे तथा ग्वालों का छिपाना, शंकर का मोहिनी रूप देखकर मोहित होना, नारद का विश्व मोहिनी के संग विवाह करने के लिए भगवान का रूप मांगना, इंद्र का वज्रप्रल कोप करना आदि आदि सर्वज्ञाता के अभाव का ही आभास नहीं होते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वज्ञ है। चतुर्दश कला है इच्छा की। भगवान की इच्छा शक्ति से ही सृष्टि की रचना होती है। इनकी इच्छा अनुसार ही यह पूरा सृष्टि चलता है। भगवान की इच्छा शक्ति, इनकी योग माया, इनकी महामाया, इन सब को लेकर के यह सृष्टि आगे बढ़ता है। और पंचदश कला है सर्वतंत्र स्वतंत्रता। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में भी वर्णन करते हैं, भगवान के निमित्त परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। और सोलवां कला है सर्वसिद्धि। संसार के सभी कार्य भगवान की कृपा से ही सिद्ध हो जाते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये 16 कलाओं होने के कारण इनको साक्षात परब्रह्म का अवतार माने जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत जी कहते हैं कृष्णास्तु भगवान स्वयं। चलिए आज की कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।

0: पाए गए थे। तब से इस संख्या में क्या बदलाव आया है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और परोपकारियों का मानना है कि ये संख्या जरूर बढ़ी है। अब एमसो जल्द ही इन जानवरों की नई गिनती शुरू करने वाला है। पहले की तरह रास्तों पर चलकर और पारंपरिक ट्रांसेक्ट सर्वे के बजाय अब इस कार्यवाही के लिए नई टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल होगा। एमसो की तरफ से अब ड्रोन और थर्मल इमेजिंग के इस्तेमाल से आसमान से कुत्तों की गिनती की जाएगी। इन सेवाओं के लिए मार्केट रिसर्च का टेंडर पिछले फरवरी महीने में जारी किया गया था। ये एक ऐसा माध्यम है जिसका इस्तेमाल शायद ही कहीं और किया गया हो। यदि ये अभियान आगे बढ़ा तो मॉरिशस निश्चित रूप से इसे लागू करने वाला दुनिया के प्रथम देशों में से एक होगा। समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समाज के लिए सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बना रहा है। हालांकि इससे पैदा होने वाली संभावनाओं के अलावा इसे नियमबद्ध करने का मुद्दा भी अहम बनता जा रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अफ्रीकी देशों की तैयारी का स्तर जानने के वास्ते हाल में अफ्रीकन AI गवर्नेंस इंडेक्स नाम का एक नया टूल लॉन्च किया गया है। इसकी जिम्मेदारी होगी अफ्रीकी महाद्वीप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों, संस्थाओं और मैकेनिज्म्स का मूल्यांकन करना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, नेपाल में हाइड्रो पावर परियोजना स्थलों के सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस आपदा में लापता हुए 2500 से ज्यादा लोग इन सुरंगों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। बचाव टीमों में भारत और चीन के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। पिछले कई दिनों से अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। पिछले बुधवार को अचानक उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 794 तक पहुंच गई है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है, जो आज दिन की 10 बजे तक बरकरार रखी जाएगी। मास्कारेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, खासकर देश के पूर्वी, दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं और रह रहकर बारिश होती रहेगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। जनता से खास सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। ऊंची जगहों पर न जाएं और खासकर गाड़ी चलाते हुए सड़कों पर क्रॉसविंड वाली जगहों पर खास सावधानियां बरतें। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी और इनका असर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों तथा तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से इन इलाकों में न जाने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:19 पर सूर्योदय, शाम को 6:01 पर सूर्यास्त होगा।
1: RM3 Radio.

0: संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति नमस्कार आपको
1: नमस्कार नीतुषा श्रोताओं को भी नमस्कार पिछली आधिकारिक गणना 2013 में हुई थी जब मॉरिशस में लगभग 3 लाख आवारा कुत्ते

ता फरमाए आमीन। आइए इसी नेक तमन्ना के साथ आज की इस मजलिस का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है आप बफ़ज़ले खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात सवाल खैर RM3 के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समाअत फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक हम्द और नातु सलाम। ताक़ीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

उनकी कौम में सरदार लोग जो तकब्बुर करते थे गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि सवाले अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ जो चीज वो देकर भेजे गए हैं हम उस पर बिला शुबा ईमान रखते हैं। तो सरदाराने मगरूर कहने लगे कि जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम तो उसको नहीं मानते।

आखिर उन्होंने उस ऊंटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि सालेह, जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। बस उनको जलजले ने आ पकड़ा सो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फिर सवाले उनसे नाउम्मीद होकर फिरे और कहा कि मेरी कौम, मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैरखाही की, मगर तुम ऐसे हो कि खैरखाहों को दोस्त ही नहीं रखते।

ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में हो गई। और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ।

और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, ऐ कौम अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप और तोल पूरी किया करो और लोगों को चीजें कम न दिया करो और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी न करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि यह बात तुम्हारे हक में बेहतर है, और हर रास्ते पर मत बैठा करो कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और अल्लाह की राह से रोकते और उसमें कजी ढूंढते हो। और उस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े से थे तो अल्लाह ने तुमको जमात कसीर कर दिया, और देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और अगर तुम में से एक जमात मेरी रिसालत पर ईमान ले आई है और एक जमात ईमान नहीं लाई तो सब्र किए रहो यहां तक कि अल्लाह हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला।

फिरौन की कौम में जो लोग सरदार थे, जो तकब्बुर करते थे, वो कहने लगे कि शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने शहर से निकाल देंगे, या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा, खा हम तुम्हारे दीन से बेजार ही हो तो भी, अगर हम इसके बाद कि अल्लाह हमें इससे नजात बख्श चुका है तुम्हारे मजहब में लौट जाएं, तो बेशक हमने अल्लाह पर झूठ बांधा और हमें शाया नहीं कि हम इसमें लौट जाएं। हां।

अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज का इहाता किए हुए है। हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है। ऐ परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे, और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है।

और उनकी कौम में से सरदार लोग जो काफिर थे कहने लगे कि भाइयों, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो बेशक तुम खसारे में पड़ गए। तो उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ये लोग जिन्होंने शुएब की तकजीब की थी ऐसे बर्बाद हुए थे कि गोया वो उनमें कभी आबाद ही नहीं हुए थे। गरज जिन्होंने शुएब को झुटलाया वो खसारे में पड़ गए। फिर शुएब उनमें से निकल आए और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए और तुम्हारी खैरखाही की थी, तो मैं काफिरों पर अजाब नाजिल होने से रंजो गम क्यों करूं।

और हमने किसी शहर में कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वहां के रहने वालों को जो ईमान न लाए दुखों और मुसीबतों में मुब्तला किया ताकि वो आजिजी और जारी करें। फिर हमने तकलीफ को आसूदगी से बदल दिया यहां तक कि वो माल औलाद में ज्यादा हो गए तो कहने लगे कि इसी तरह का रंज राहत हमारे बड़ों को भी पहुंचता रहा है। तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो अपने हाल में बेखबर थे।

और अगर उन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकात के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो तकजीब की, सो उनके आमाल की सजा में हमने उनको पकड़ लिया।

और क्या अहले शहर इससे निडर हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ नाजिल हो और वो खेल रहे हो? क्या ये लोग अल्लाह के दांव का डर नहीं रखते? सुन लो कि अल्लाह के दांव से वही लोग निडर होते हैं जो खसारा पाने वाले हैं।

0: क्या उन लोगों को जो अहले जमीन के मर जाने के बाद जमीन के मालिक होती हैं, ये अम्र मूजिबे हिदायत नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत डाल दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कुछ सुन ही ना सकें। ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुनाते हैं और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए, मगर वो ऐसे नहीं थे कि जिस चीज को पहले झुठला चुके हों उसे मान लें। इसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है और हमने उनमें से अक्सर लोगों में अहद का पास नहीं देखा और उनमें अक्सरों को देखा तो बदकार ही देखा।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार, कुरान पाक को हमारे दिलों का नूर, हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई और हमारे गमों का मदावा बना दे। ऐ अल्लाह, हमें अपनी नेमतों का शुक्रगुजार बना, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे दिलों को ईमान से रोशन फरमा और हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून, बरकत और रहमत अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और उसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।

मोहतरम सामीन, आज हम बात करेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद आदत मुबारका के बारे में। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े सखी थे, किसी सवाल करने वाले को नहीं कभी नहीं कहा, हुआ तो फौरन दे दिया वरना नरमी से समझा दिया कि दूसरे वक्त तू ले जाना। बात के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सच्चे थे, सब बातों में आसानी और सहूलत इख्तियार फरमाते और अपने साथ उठने बैठने वालों का ख्याल रखते, उनके हालात को दरियाफ्त करते रहते। जब रात के वक्त बाहर जाना होता तो आहिस्ता से उठते और आहिस्ता से जूता पहनते और आहिस्ता से कुंडी खोलते और फिर आहिस्ता से बाहर चले जाते। इसी तरह घर में तशरीफ़ लाते तो आहिस्ता से आते और आहिस्ता से सलाम करते ताकि सोने वालों को तकलीफ़ ना हो और किसी की नींद

मोहतरम सामईन, जब कोई शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल ज़कात इस गर्ज से लाता कि मुस्तहिकीन में तकसीम फरमा दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लाने वाले को दुआ देते, ऐ अल्लाह इस फला शख्स पर रहम फरमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर तशरीफ़ ले जाते तो दरवाज़े के सामने ना खड़े होते बल्कि दाहिनी या बाएं जानिब खड़े होते और घर वालों को इत्तला के लिए फरमाते, अस्सलामु अलैकुम।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, तेरी नेमतों को शुमार करना हमारे बस में नहीं। तूने हमें आँखें दीं कि तेरी कुदरत के नज़ारे देखें, ज़ुबान दी कि तेरा ज़िक्र करें, दिल दिया कि तेरी मोहब्बत महसूस करें, और कुरान पाक अता फरमाया ताकि हम ज़िंदगी का सीधा रास्ता पहचान सकें। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी नेमतों की कद्र करने वाला, तेरा शुक्र अदा करने वाला और तेरे अहकामात पर चलने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

94.95 Wave RJ Sundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Danny Sayaranga.

मधुर गानिया ने मन धागा धागा जोरती नवा इन द वॉइसेस ऑफ हर्षवर्धन वावरे वान एंड जोशी टेकन फ्रॉम द मूवी टकरी।

0: सभी भक्तों को प्रणाम नमस्ते और बहुत सी प्यारी सी सुबह से हम आपको इतना ही कहेंगे प्रणाम सभी को। आज हम भक्ति में शक्ति में सुनेंगे बहुत सारे भजन, वो भजन जो आपके दिल और आत्मा को शांत कर दे। आज हम बात करेंगे शिव है कौन, कैलाश के योगी वो देवों के देव महादेव क्यों कहलाए जाते हैं, वो नीलकंठ क्यों बने, भोलेनाथ क्यों कहलाए और हमसे चाहते क्या हैं, हर जीव से हर इंसान से वो चाहते क्या हैं। आज शिव पुराण की कुछ सुंदर कथाओं और उनके अर्थ को उनके जीवन से जोड़ेंगे। मैं हूँ आपके साथ पूनम और आप सुन रहे हैं आरएम थ्री पे भक्ति में शक्ति। सभी को सबसे पहले कहूँगी ओम नमः शिवाय, हर जय श्री हरि और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत प्यारे प्यारे से भजन, पर सबसे पहले गणेश वंदना।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, कभी सोचा है शिव को महादेव क्यों कहते हैं? शिव पुराण की एक प्रसिद्ध कथा में ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। एक उसका आरंभ खोजने निकले और दूसरा उनका अंत को खोजने निकले, लेकिन दोनों की ही सीमा नहीं पा सके। यही अनंत स्वरूप शिव तत्व को दर्शाता है। और मेरा विचार है, जिस परमात्मा का कोई अंत नहीं, उसे हम अपने छोटे विचारों में कैसे बांध सकते हैं? शिव को समझने की शुरुआत शायद यही होती है कि अहंकार छोड़ो, बस सिर्फ इतना कहो, हर हर महादेव। हर हर महादेव कहते ही शिव प्रसन्न होते हैं और उनको दिल करता है खुद आपके सामने आके प्रकट होना। अगर आपने दिल से उन्हें कहा है हर हर महादेव, तो एक ना एक दिन वो आपके सामने जरूर प्रकट होंगे।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

भक्तों 11:06 हो चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं भक्ति में शक्ति में प्रभु महादेव की। समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला और सृष्टि संकट में पड़ गई, तब महादेव ने उस विष को स्वीकार किया। विष उनके कंठ में रुक गया और वह कहलाए नीलकंठ। लेकिन इस कथा में सभी के लिए बहुत सुंदर सीख भी दी। शिव ने विष लिया पर उसे दुनिया में फैलने नहीं दिया। सत्य यही है कि हमें तप करना पड़ता है उस परमात्मा को ढूंढने और देखने के लिए। कई बार बहुत लोग कहते हैं कि हमसे मेडिटेशन नहीं हो पाता, हम उस ईश्वर से जुड़ नहीं पाते, आंखें बंद करते हैं, हमें गंदे विचार आते हैं, हमारा दिल भटकता है, हम इधर उधर भागते हैं, इधर उधर सोचते हैं। और यही तो सच कहते हैं, यही तो वो विष है जो हमारे अंदर होता है। हमें उसी को तो मंथन करके बाहर निकालना होता है, संसार में नहीं फैलाना होता है पर बाहर निकाल के उस जगत में दे देना होता है, उस सृष्टिकर्ता को दे देना होता है, जिससे हम साफ पाक हो सकें। कई लोग कहते हैं कि जब हम बैठते हैं वो मेडिटेशन के लिए तो हमसे हो ही नहीं पाता। तो आपको क्या करना है, आपको उसके साथ जुड़ना है, आपने बैठना है। आपको ये नहीं करना आपको जैसे बुरे अच्छे गंदे कैसे भी विचार आए, शुरुआत में ऐसा ही होता है, आपको नहीं अच्छे विचार आते, आपका दिल दिमाग भटकता है। और एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने, हो सकता है साल, क्योंकि हमारे अंदर जितना विष होगा, जितनी बुराइयां होंगी, एक एक करके बाहर निकलेगी। समय लगेगा पर आपको 1 मिनट, 2 मिनट,

0: पाँच मिनट बैठना ही बैठना है, फिर आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आप कहेंगे मैं बिल्कुल हल्की हो गई या मैं बिल्कुल हल्का हो गया, मेरे अंदर कोई बुरे विचार नहीं आते, मेरे अंदर कोई विकार नहीं बचा, मैं सरल हो गया, मैं संसार से मीठी बात कर सकता हूँ, मैं अच्छे शब्द बोल सकता हूँ, अपने खुद के लिए अच्छे शब्द चुन सकता हूँ। तो आपको भी इतना ही करना है, उस ईश्वर की साधना करनी है और अपने आप को उसमें रमाना है।
1: RM3 Radio.
2: घोर तपस्या करके जिन त्रिलोचनी भगवान शिव को पाया, सारे गण यक्ष भूत प्रेत जिनके इशारों पर नाचते हैं, वो त्रिशूल और डमरूधारी भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा को धारण किए हुए हैं और अपने भक्तों पर सदा अमृत बरसाते रहते हैं।

11:22 हो चुके हैं भक्तों, हम बात कर रहे हैं आज महादेव की। शिव जी का एक सुंदर नाम है पशुपति। महादेव के संसार को देखिए, नंदी भी है, नाग भी है, पर्वत है, वन है और प्रकृति के हर रूप के लिए स्थान है। शैव परंपरा में पशुपति का अर्थ होता है बहुत ही प्यारा। जो व्यक्ति, जो इंसान बंधनों में फंसे होते हैं, उनको मुक्ति देने के लिए वो मुक्ति स्वामी है। प्रेम जो शिव हमसे करते हैं, जो हमसे चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि उनकी बनाई सृष्टि से भी प्रेम किया जाए। किसी पशु को पानी देना, पेड़ बचाना, किसी जीव को नुकसान ना पहुंचाना, ये भी तो एक भक्ति ही है। मैं थी आपके साथ पूनम, भक्ति में शक्ति के साथ। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे सुबह सेम टाइम पर, और हम आपको इतना ही कहेंगे, भक्ति में बहुत दम रखिए। भक्ति अगर आपके पास है

0: मस्ती
1: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप समाचार अदिति से। अदिति आपको नमस्कार।
2: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समाज के सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बना रहा है। हालांकि इससे पैदा होने वाली संभावनाओं के अलावा इसे नियमबद्ध करने का मुद्दा भी अहम बनता जा रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अफ्रीकी देशों की तैयारी का स्तर जानने के लिए हाल में एक अफ्रीकन एआई गवर्नेंस इंडेक्स नामक नए टूल की लॉन्चिंग की गई है। इसकी जिम्मेदारी होगी अफ्रीकी महाद्वीप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही नीतियों, संस्थाओं और मैकेनिज्म्स का मूल्यांकन करना। मॉरिशस में ईंधन की कीमतें निर्धारित करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट अहम भूमिका निभाता है। ये सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मंडी में दामों के उतार चढ़ाव का असर कम करने में मदद करता है। हालांकि भारी घाटे के कारण ये स्थिति पब्लिक फाइनेंस के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। अर्थशास्त्री मनीषा दुकोनी का मानना है कि लंबी अवधि के संतुलन के लिए व्यावहारिक उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उत्तरी साइप्रस के समंदर में एक यात्री जहाज के उलट जाने से कम 8 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लापता बताए जा रहे हैं। जानकारियों के मुताबिक फेरी में 259 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। प्रारंभिक जांच के तहत लापरवाही के आरोपों पर जहाज के कैप्टन और 7 क्रू सदस्यों को हिरासत में लिया गया। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। नोवेल फ्रांस में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड श्री अशोक कुमार कमल, श्री अशोक कुमार कमल जो विशाल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती पिंकी कमल और उनके भाई श्री धीरज कमल के मकान नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजवेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। रॉयल रोड कॉन्दमास SSS के सामने 91 साल की श्रीमती सनमत सियर किसुन जो दादी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके बेटे श्री सुनील अकुंग के मकान रॉयल रोड कॉन्दमास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्दमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
3: You're listening to RM3 Radio।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: सुहाना सफर। दिन के 12:12 हुए हैं। आज है सोमवार 31 अगस्त। आप सबों का हम स्वागत करते हैं रेडियो मनोरंजन आरएम 3 पर। जी हां, मैं हूं वेदिता। सुहाना सफर प्रोग्राम लेकर आए हैं और आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे खूबसूरत गाने।

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर। जी हाँ दोस्तों, ये है प्रोग्राम सुहाना सफर। आप विनीता का साथ दे रहे हैं। जानती हूँ आप लोग हमारे टिकटॉक का वेट कर रहे हैं, तो हमारा टिकटॉक अभी होने वाला है थोड़ी देर में लाइव।
2: RM3 Radio.

सुहाना सफर, सुहाना सफर। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका प्रोग्राम सुहाना सफर, जहाँ पे मैं वेदिता आपका साथ दे रही हूँ। तो चलिए, इसी खूबसूरत गीतों के साथ अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और हमारा नेक्स्ट गाना सुहागन फिल्म से लिया गया है। हमारे जो दोस्त हैं हमारे टिकटॉक पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, तो चलिए उनको हम हेलो हाई भी कह देते हैं। सबसे पहले तो कैनेडा से हमारे जो दोस्त हैं किरण जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। किरण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आई होप कि आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के एंड तक रहेंगे, वरना मुझे पता है कि अभी कैनेडा में और हमारे और कैनेडा में जो टाइम होता है ना, वो अलग होता है। जब हम अभी तो शायद वो सोने जा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी मॉर्निंग ऑलरेडी हो गई है, तो आफ्टरनून भी हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट गाना किरण जी हम आपके लिए डेडिकेट करते हैं, हाई ट्रैवल। कैसे हो आप? और यहाँ पर राजफा हमारे साथ है, वी हैव एंजल, हाई, थैंक यू। एंड साथ में यहाँ पर सू भी हमारे साथ हैं, हाई सू भी, नमस्ते जीतन दुलवा। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मम्मा उमिला के लिए गाना होगा, साथ में पापा सुरेश सुकन के लिए ऑफ घोंगोप। सी दयाल द्रोना हमारे साथ हैं, लविंग द सिलेक्शन, थैंक यू सो मच। माधुरी जी कैसे हो जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नमस्कार दुर्गा। और चलिए सूर्या के लिए, जो फिजी से हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, एंड वी ऑल्सो हैव ए के, एंड यहाँ पर हमारे से विकास नक्चेदी जी भी हैं, तो उनका हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सविता रुकाया आपका भी, ज्योति चमन, हाई, गुड मॉर्निंग रोहित। एंड साथ में यही गाना हम डेडिकेट करेंगे बृंदा सोहन के लिए, और कहते हैं कि इटली वालों के लिए कुछ चला दीजिएगा। तो चलो इटली वालों के लिए हम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं, और साथ में बेबो के लिए रेशान हमारे साथ है, एंड हैप्पी दिवाली रिशान, रक्षाबंधन था आप भूल गए, दिवाली तो भी आने वाली है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर चलिए नेक्स्ट गाना जो होगा, हम लंदन के जितने भी लोग हैं उनके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। एक दीवाना लड़का है लंदन से, और उन्होंने अपना असली नाम तो नहीं लिखा लेकिन है यहीं पे, चलिए उनके लिए गाना हो जाए। एंड नजीमा गोवर्धन आपके लिए भी डेडिकेट करते हैं हमारा ये प्यारा सा गीत, इट्स अ लवली वन, आप एंजॉय करेंगे ज़रूर।

सुहाना सफर, सुहाना सफर। प्रोग्राम है सुहाना सफर और अब विदिता का साथ दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं उनके लिए गाना डेडिकेट करते हैं। देविना, विकास जी, विमला लक्ष्मण, तंगा बहादुर, उत्तम, संध्या, आरती, सदाशिवन, मुश्ताक खान ने हमें बड़े दिनों के बाद याद किया, लेकिन अच्छा लगा कि उन्होंने हमें याद तो किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुआ में हमेशा आपको याद रखता हूँ, इसके लिए थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पर रेखा गोपोल, कविता, अनुमेधा, सुकून और साथ में तस्लीमा हमारे साथ हैं, एंड हमारे साथ हैं लक्ष्मी, लक्ष्मी भी आ गई हैं। चलो अच्छी बात है, लक्ष्मी के आने से बहुत कुछ होता है, अच्छा अच्छा होता है। नेक्स्ट गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे फॉर निकी। कहते हैं हाय वेदी, व्हेन डू यू हैव प्रोग्राम RM2? वो तो रोज़ सुबह होते हैं 7 से 9 रोज़ सुबह। चलो राकेश तवाकल, नमस्ते, स्वागत आपका, प्रणाम, कैसे हो आप? भारती जी नमस्कार, आपका भी हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किशोरदा के काफ़ी सारे फैंस हैं, ऐसा करते हैं उनका गाना एक चला ही देते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं कौन, विक रॉय एंड साथ में पूजा, करुणा भोला, तो चलिए उन सब के लिए गाना चलाते हैं। ये गाना है आपके लिए श्रीमान फंटूश फिल्म से किशोरदा की आवाज में।

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द न कोई जाना। कभी कभी होता है इंसान अपने दिल में अपने दर्द को दबा के रखता है, छुपा के रखता है। कभी कभी दर्द होता है पर समझ में नहीं आता है कि क्या होता है। फिर कुछ गाने ऐसे चलते हैं जिसे सुनकर जब आंखों से आंसू बहने लगते हैं ना, तो पता चलता है हाँ, दिल के कोने में कहीं ना कहीं कोई दर्द तो छुपा जरूर था। तो चलिए, वही दर्द को हम दूर करने आए हैं, आपको एंटरटेन करने आए हैं, आपके लिए लेकर खूबसूरत पुराने गाने जो आप सुनेंगे हमारे साथ आपके अपने रेडियो मनोरंजन पर। और यहाँ पर नंदा मेकन साथ में है, करुणा भोला, एंड वी हैव दीपक दीपदियाल, मिस्टर नुरेदीन फ्रॉम पेरिस, शामन सावन सोवेन फ्रॉम सेंट जूलिया दुतमा, वेदना, साहिल, करुणा, उनके सभी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए गाना मांग रही है। और वहीं पे दिलवंती सोनातन जी को हम नमस्ते कहेंगे, ललिता का हम स्वागत करेंगे, रायांश को हम हेलो बोलेंगे, और अतुल महेंद्र कौर को हम जर्मनी से हमें साथ दे रहे हैं तो उनका वेलकम करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जानकर बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ NTR भी है तो उनका भी स्वागत करते हैं। एंड एक और मैसेज आया है, हाय नमस्ते सिस, आई एम योर ग्रेट फैन। ओ थैंक यू सन, थैंक यू सो मच। ये SON नहीं है, SAN है, शायद संजय होगा, शायद संदीप होगा, लेकिन कोई ना कोई भाई तो हमारा ज़रूर होगा। सो थैंक यू सो मच। चलो, जानकर अच्छा लगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं वेदना। एंड किरण यहाँ पर हमारे साथ हैं, किरण कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, या ऑफ कोर्स डेफिनेटली ओल्ड इज़ गोल्ड। और चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट गाना बेटे परमेश के लिए आप मांग रहे हैं, वहीं पेंद्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एंड प्रणाम जी, आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं नितेश, हैव अ गुड डे यू टू, नेक्स्ट गाना आपको डेडिकेट करूँगी। और राजेश उगर के लिए गाना हम चला रहे हैं, तो ऐसे में लीना हलकोरी आ गई हमारे साथ जुड़ने के लिए। काम कर रहे हैं अभी काजन साउथ।

में तो उनके लिए गाना होगा, आपके सभी दोस्तों के लिए ये गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे, साथ में श्यामा माहिर अली जी का भी हम वेलकम करते हैं। कहते हैं चेहरे पे घिरी जुल्फें, कह दो तो हटा दूं मैं मुसाफिर माफ। ब्यूटीफुल खूबसूरत गाने आपके लिए लेकर आए हैं रेडियो मनोरंजन RM3 पर। हमारा टिकटॉक लाइव चल रहा है, अगर आप हमसे बात करना चाहती हैं, आई मीन टू से अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे यू आर मोस्ट वेलकम।

0: खाना सफर।
1: एक फूल तेरे जोड़े पे कह दो तो लगा दूं मैं, क्या बात है क्या बात है। पहले ज़माने के जो गाने थे ना, आई मीन जो 60s 70s 80s के गाने थे, कमाल के गाने थे। 90s का दौर भी कमाल का ही था, 90s के वो रोमांटिक गाने। चलो कोई नहीं, अभी हम आपके लिए जो गाना लेकर आए हैं वो तो काफ़ी पुराना है, और इस गाने को हम डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे कुछ दोस्तों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे गाने जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए डेडिकेट करते हैं हमारे इस प्रोग्राम का गाना हमारे सभी उस लिसनर्स के लिए जो इस समय हमारे साथ है। एंड मैंने पूछा मेरे लिए फूल कौन लाएगा, काफ़ी सारे लोग हैं जो कहते हैं ले आएंगे। चले तो यहाँ पर हम राजन अंकल के लिए गाना चलाएंगे। राजन अंकल ने एक गाने की फरमाइश की थी और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि पारस फन का ये गाना मैं ज़रूर चलाऊंगी। तो चलिए देर न करते हुए ये गाना उनके लिए, निखिल धर्मू, चेतन सुधीर, रोशन गुरबीन, मीता सौंदरी, क्या बात है सौंदरी के लिए, लक्ष्मी और राजेश के लिए, और साथ में रेखा के लिए जो साथ दे रही है। एंड वी हैव किरण पुरी जी कहते हैं कि आपको मॉरिशस में सर्दी लग रही है, हमने तो -64 झेला है। मैंने पूछा उनसे कि भाई -64 में अभी भी जिंदा हो, कैसे बच गए, हम तो मर ही जाते। हमें तो इस सर्दी में ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी हड्डियों के अंदर चल रही है, अब सोचो -64। लेकिन हाँ भाई, दाद देनी पड़ेगी। चलो हमारी डीवा गर्ल के लिए भी गाना होगा। एंड देविका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नौशाद बुझावोना, आपको भी हम कहेंगे वेलकम। रेशमा राम की सुन, रेखा, और यहाँ पर नेक्स्ट गाना हम सुंदरी आपके नाम चलाएंगे, और साथ में वरुण रामधारी। हाँ, मैंने वरुण बोला, लास्ट टाइम मैंने वरुणा बोल दिया था। हाँ, क्या है ना कि उम्र के साथ साथ आँखें ठीक से दिखती नहीं है, तो ए कहीं गायब हो गया था, अभी मिल गया। चलो आपका नेक्स्ट गाना डेडिकेट करेंगे आपके लिए। वी हैव वशिका गोबीन, गुड आफ्टरनून, सुल्ताना खानदाई या लोडिता, और साथ हमारे हैं निजाम बहादुर और गिरवर, गुड मॉर्निंग टू यू।
2: RM3 Radio.
1: बहुत ही खूबसूरत सा गाना है मुकेश सावर लता जी की आवाजों में। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, आपको गाने याद है?

0: हमें क्या लेना भाई, कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको अपना स्ट्रेस बाहर फेंक देना है और हमारे साथ हमारी खुशियों में जुड़ जाना है।
1: सुहाना सफर,
0: सुहाना सफर। चलिए तो सुहाना सफर जो हमारा प्रोग्राम होता है, ये सिर्फ ऐसा है ना कि हमारे यहाँ सिर्फ गाने नहीं चलते, यहाँ पर गीतों के साथ जज्बात भी होते हैं। और शायद हमारे कई सारे लिसनर्स हैं जो इनको यहाँ लगता है कि एक हमारा एक छोटा सा फैमिली है, एक जैसे हमारा प्यारा सा एक घर है जहाँ पर हम सभी एक टाइम पे मिलने आते हैं। ये लंच टाइम होता है, सब साथ में मिलते हैं, भले लंच अपने अपने घर में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, लेकिन मुलाकात हमारी यहीं पर होती है। सो या वी आर फैमिली, और इस फैमिली को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। अभी अगला गाना मानसी के लिए और उनके स्पेशल फ्रेंड मनीष के नाम, और यहाँ पर हमारे साथ हैं चाची जी तो उनके लिए भी गाना होगा। चलिए निर्मला बाई के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मालिनी, बिश्राम, दीपक और व्यास के लिए, और यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए। ओके, ये है वेदना फ्रॉम कैट्रबोन, आपका स्वागत करती हैं। अंजी आर्मगम वनक्कम, स्वागत है आपका। एंड साथ में यही गाना हम डेडिकेट करेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंजी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना कि जो नाम होते हैं आप लोगों को मिक्स करके रखा हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि असली नाम क्या है। नू जायदा मा खानसा, ओके, शायद मैंने कहीं मिसप्रोनाउंस किया होगा, प्लीज़ मुझे अपना नाम भेज दीजिएगा। और चलो यहीं पे हम गाना जो है सिमी के नाम डेडिकेट करेंगे।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: हमारा तो खैरिश वारिश हो गया, अब आपकी खैर है, ज़रूर है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भी आता है उनको हम खुश करने की एकदम कोशिश करते हैं। गाने अलग अलग आते हैं, हर तरह के मूड से लाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई किसी के चेहरे पर कोई प्यारी सी हंसी हमें मिल जाए, फिर उसके बाद तो क्या हम तो खुश और मगैम्बो डबल खुश। तो चलिए इसी के साथ अब अगला गाना जो होगा वो हम अपने सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। अब एक बार फिर मैं आपसे कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। गाना हमारा जो आ रहा है ये पत्थर के सनम फिल्म से है, जो हमें लेके जा रहा है 1 बजे के समाचारों की ओर। ये गाना हम फरहा, विद्या, लीलू, नुजैद अहमद खानसा और रोश के नाम डेडिकेट करेंगे।

चलिए गाना केशनी कुमार के नाम डेडिकेट करते हैं जो साथ में हैं। और फरा, अगर आप अकेले अकेले फील कर रहे हैं तो घबराएगा नहीं, हम आपके साथ हैं। विश्वानी को हम वेलकम कहेंगे, अरुणा को नमस्ते, और साथ में यही गाना हम श्रेया के नाम डेडिकेट करेंगे जो साथ दे रहे हैं, और विशा के लिए भी जो साथ में हैं। तो ऐसा करते हैं, रवीन आपको भी बिग हेलो, और पूर्णिमा गोपाल आपका स्वागत। अगले गाने के साथ मिलेंगे, यानी कि समाचारों के बाद मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में।

वैसे दोस्तों फ्रांस से फैजल हमें सुन रही हैं, सो वी से अ बिग हेलो टू फैजल लिसनिंग टू अस। और इसी के साथ हमारा जो अगला गाना होगा ये हम किरण पुरी, जीजी लाल, नरेंद्र कुमार नंदी और काला राम कारीगर जो वैंकूवर कनाडा में साथ दे रहे हैं उनके लिए।

0: सभी को नमस्कार अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से गीता जी आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम जी सभी को हमारा नमस्कार एम्सो जल्द ही आवारा कुत्तों की दोबारा गिनती शुरू करेगा इस बार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक नया तरीका अपनाया जाएगा अब पैदल चलकर गिनती नहीं की जाएगी इसके बजाय ड्रोन और थर्मल इमेजिंग की मदद से ऊपर से इन कुत्तों की गिनती की जाएगी इन सेवाओं के लिए मार्केट स्टडी का एक नोटिस भी पिछले फरवरी महीने में जारी किया जा चुका है ये एक ऐसा तरीका है जिसका दुनिया में लगभग कहीं इस्तेमाल नहीं होता है अगर ये योजना अमल में आती है तो मॉरिशस निश्चित रूप से दुनिया के उन शुरुआती देशों में शामिल होगा जो आवारा कुत्तों की गिनती के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे कास्नोयाल के समुद्र से कल दोपहर बाद 58 साल के चंद्रजीत इतु का शव निकाला गया वहीं के रहने वाले ये व्यक्ति इलोमाले के पास कठिनाई में पड़ गया था गिवियनो के तटरक्षक उसकी मदद के लिए वहां गए लेकिन बहुत देर हो चुकी थी पोस्टमार्टम के अनुसार उसकी मौत डूबने से दम घुटने के कारण हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों के मारे जाने की खबर है कल दोपहर बाद ओमोन में एक 4x4 और एक बस के बीच हुई टक्कर में कुतुगाफे के रहने वाले 18 साल के अल्बेर माचे की आज सुबह मौत हो गई जबकि गुडलैंड्स के रहने वाले 32 साल के जेविन ग्रिधर की एक सड़क हादसे के बाद इन्फेक्शन के कारण मौत हो गई वो मोटरसाइकिल पर था जब सैतौतवान गुडलैंड्स में एक गाड़ी उससे टकरा गई जो 19 साल की एक लड़की चला रही थी और विदेशी खबरों में अमेरिका के अरिजोना स्थित ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क में आए भीषण तूफान और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है बाढ़ की चपेट में आने से कम 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं जबकि अब तक 62 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और उत्तरी साइप्रस में एक यात्री जहाज के उलट जाने से कम 8 लोग मारे गए हैं और 18 लापता हैं जहाज में 259 यात्री और 8 क्रू सदस्य थे खोज और बचाव कार्य जारी हैं इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए कुछ ही देर में शोक समाचार रॉयल रोड कोंडोमास्क एसएसएस के सामने 91 साल की 91 ईयर ओल्ड की श्रीमती सुनमत सेकिसुन जो दादी से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे सुनील आकुंग के घर रॉयल रोड कोंडोमास्क से उठाकर मेजिन कोंडोमास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM नोवेल फ्रांस में 49 साल के श्री अशोक कुमार कुरमुल जो विशाल से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी कल मंगलवार 1 सितंबर को सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी पिंकी और भाई धीरज कुरमुल के घर नोवेल फ्रांस से उठाकर मारिजानी रुजबेल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगी फ्यूनरल टुमरो एट 9:30 AM शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है
2: RM3 Radio.

0: हो इतनी सनम लता मंगेशकर मनमोहन सिंह की आवाज में दिन के 1:10 स्वागत है आप सबों का हमारे प्रोग्राम में जो है सुहाना सफर और आप दे रहे हैं वेदिता का साथ
1: RM3 रेडियो
0: तो चलिए ये गाना हम साधना और मुकेश के नाम डेडिकेट करते हैं फ्रॉम लालमाटी क्वायो से सीता श्वेता देवानेश प्रेमिला बेल्जियम से और इंदिरा तोको हमारे साथ जुड़ी हुई है नमस्कार स्वागत है साथ दे रहे हैं हमारे कौन चलिए जानते हैं विद्यानंद गोपोल और यहाँ पर जज साहब भी हमारे साथ हैं प्रिया पूनम गोपोल और यही गाना हम जीवन महादेव आपके नाम और विमी आपके नाम डेडिकेट करते हैं वहीं पर सुनील भुवन हमारे साथ हैं थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस सॉन्ग्स गाते रहिए मुस्कुराते रहिए

कितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे लेकिन प्यार कम नहीं करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम भी जब सितम करते हैं तो थोड़ा मान लिया कीजिए। प्यार के साथ आप विदिता का साथ दे रही हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन RM3। और यहाँ पर हमारी गीतों की इस लिस्ट में बबीता जी जुड़ गई हैं। नमस्कार, हम आपको विमला पाडू आपका भी वेलकम करते हैं। वीमा पेंटिया, गाना आपके लिए, आपकी बहन के लिए। और अविनाश कहते हैं रोमांटिक गाने रोमांटिक मौसम में कमाल हैं। जी बिल्कुल कमाल है। थैंक यू सिवासन समुगम, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पूरे फैमिली के नाम डेडिकेट करते हैं अगला गाना।

चलिए अभी गाना जो होगा उदेश दूला के नाम डेडिकेट करेंगे. कल्याणी हरी नमस्कार, वैदेही वेलकम, रेशमा पूरन नमस्ते, बबीता बंधु आपका स्वागत करते हैं, रुकैया सुदन जो अभी गजू से हमें सुन रही हैं, देविका सुब्रन, अभी अमन आपके लिए गाना होगा और साथ में ये गाना होगा आपके लिए तनवीर खालिद, जोहरा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. चलिए जी ये गाना आपके नाम और सरिता देवी हमारे साथ हैं उनके लिए गाना एंड चलिए यही गाना हम डेडिकेट करते हैं हमारे उन तमाम दोस्तों के लिए जिस समय ड्राइव कर रहे हैं हमारे गाने एंजॉय कर रहे हैं. एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल फ्रेंड्स एंड गुराप्पा फैमिलीज फ्रॉम हाईलैंड. चलिए गाना सुनिए.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: दिन के 1:25 हुई हैं, आप विदिता का साथ दे रही हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारे साथ कौन कौन है ये जान लेते हैं। और काफ़ी सारे दोस्त हमारे इस प्रोग्राम के साथ शामिल होना चाहते हैं और अपने उन्होंने कई सारे डेडिकेशंस किए हैं और कई सारे लोग यहाँ पर गाने की भी फरमाइश करते हैं, लेकिन हम गाने की फरमाइश नहीं लेते। अब हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ अपने गाने चलाते हैं या और आपको एंजॉय करना होता है। चलिए जी, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट गाना होगा फॉर बेटे कृत्यक्ष, आज उनका बर्थडे है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, उनके लिए प्यार भेजा है स्विट्स ने। और साथ में यहाँ पर वाइफ पूनम रामला के लिए गाना होगा। और रजिया निर्मला बाई प्रयाग जी कहती हैं कि उनके भाई धर्म उनका आज बर्थडे, ओके तो हैप्पी बर्थडे उनको सभी रामा फैमिली की तरफ से। एंड साथ में यही गाना हम डेडिकेट करेंगे हेमा शंकर के नाम। और यहाँ पर संजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी ने हेलो भेजा है, थैंक यू प्यारी बहन, ओके उनके लिए गाना होगा। ओके तो बेटी दीक्षा जो वैंकूवर में है उनके लिए गाना होगा साकुन की तरफ से। एंड यहाँ पर सुरीनाम से किसी ने मैसेज भेजा है, थैंक यू सो मच, गाना होगा आपके लिए। आप हैं राजा शंकर, नजीरा एंड जीवन सरजू और रजिया। तो चलिए भाई, इन्हीं गीतों को आप एंजॉय करते रहिए, गुनगुनाते रहिए और प्यार से हमारे इन गीतों के साथ डांस वांस भी करते रहिए। वैसे आज का जो मौसम था ये तो यही कहता है कि भाई मूड बना दिया और इसी मूड के साथ आगे बढ़ते हैं।

चलो जी, खूबसूरत से गाना है आशा जी की आवाज में, एंजॉय करें। लवना के लिए गाना होगा टू माय लव गुलाम। मोहिनी हेलो, हाउ आर यू? मुकेश बेरवा जी आपका भी वेलकम करते हैं, संजय बुधवा आपका स्वागत, माधुरी मैं चली पतली गली, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और इसी के साथ यही गाना हम विवेक के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे और सभी हमारे लिसनर्स के लिए। हमारा जो टिकटॉक है यहाँ पे हम एंड करने वाले हैं, लेकिन गाने जो है वो हमारे रेडियो मनोरंजन RM3 पर चलता रहेगा। एंजॉय करते रहिए, गुनगुनाते चलिए। थैंक यू सो मच।

चलिए तो मेरे जाने का टाइम हो गया है. थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े रहे. थोड़ी देर में आप समाचार सुन पाएंगे, फिर बाकी के प्रोग्राम मैं विदिता आपसे मिलूंगी वेडनेसडे को. अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, और बस प्यार से हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए.

0: सभी को हमारा नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे समाज के हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रही है, लेकिन इससे मिलने वाले अवसरों के साथ साथ इसे सही तरीके से नियंत्रित करने का सवाल भी उठ रहा है। अफ्रीकी देशों की इन चुनौतियों से निपटने की तैयारी का स्तर जानने के लिए एक नया उपकरण लॉन्च किया गया है, अफ्रीकन AI गवर्नेंस इंडेक्स। ये सूचकांक अफ्रीकी संघ के 55 सदस्य देशों में AI के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियों, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है। आज ब्रूनो लोरेट की दो पुस्तकों का विमोचन किया गया, द अम्ब्रेला, द पावर बिहाइंड ग्लोबल लॉ और नार्को टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग इन अफ्रीका एंड द इंडियन ओशन के जरिए ब्रूनो लोरेट संस्थाओं, सुरक्षा और सत्ता की सीमाओं पर अपने विचार सामने रखते हैं। विदेशी खबरों में अमेरिका के एरिजोना स्थित ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क में आए भीषण तूफान और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कम से कम 20 लोग लापता बताए जाते हैं, जबकि अब तक 62 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और उत्तरी साइप्रस में एक यात्री जहाज के उलट जाने से कम 8 लोग मारे गए हैं और 18 लापता हैं। जहाज में 259 यात्री और 8 क्रू सदस्य थे। खोज और बचाव कार्य जारी हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Sanskriti ki baatein,
4: नमस्कार। संस्कृति की बातें कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आज हम दो विषयों पर बात करेंगे, मतलब कि आज का जो कार्यक्रम है वह दो कड़ियों में प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले तो हम भारत की स्वतंत्रता दिवस पर ध्यान देंगे, किस तरह से मॉरिशस में इसको मनाया जाता है, और फिर हम एक कलाकार से मिलेंगे जो कि भोजपुरी कलाकार हैं, मॉरिशन है लेकिन विदेश में रहते अपनी भाषा, अपना गायन और अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। सर्वप्रथम हम मिलेंगे श्री प्रेमदीप चमन जी से। श्री प्रेमदीप चमन जी, नमस्कार।
5: नमस्ते, नमस्ते।
4: आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है।
5: धन्यवाद।
4: अभी अभी हमने भारत की स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है। भारत की स्वतंत्रता जब मॉरिशस में मनाया गया था वो उस वक्त की बात है जब भारत को पहली बार स्वतंत्रता मिली, तो मॉरिशस में इसे बड़े धूमधाम से मनाया गया था और इसका आयोजन भव्य रूप से किया गया था मॉरिशस में लाल माटी गांव में प्रोफेसर बासदेव बिसुंदयाल द्वारा। और आज तक उस दिवस को मॉरिशस वैसे ही मनाता है कि मानिए हमारे पूर्वज जिस भूमि से निकलकर, भारत से निकलकर यहाँ आए, तो ऐसा लगता है कि आज भी उसी रुझान, उसी उत्सुकता, उसी खुशी के साथ यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता को मनाते हैं। और आप प्रोफेसर बासदेव बिसुंदयाल के अनुयायियों में से, उनके सेवकों में से, उनके शिष्यों में से एक हैं। तो आज हमें बताइए कि भारत की स्वतंत्रता दिवस लाल माटी गाँव में, वहाँ स्वराज भवन में उस समय कैसे मनाया गया, और ये जो परिपाटी सी बन गई है मॉरिशस में हर वर्ष भारत की स्वतंत्रता दिवस मनाने की, वह आज तक किस तरह से मनाया जा रहा है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे प्रथम मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, मैं भी, और नमन करता हूँ। भारत की स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हुआ था और उसके पश्चात क्रमशः लाल माटी गांव में भव्य रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जब मुझसे पूछा आपने कि कब से मनाया जाता है, तो

0: तुरंत स्वतंत्रता के बाद तुरंत से शुरू हो गया बनाना, किंतु जहाँ तक मेरी पहुँच है, जहाँ तक मैं ही जानता हूँ, मैं बच्चा था कह सकता हूँ, लेकिन अपने बड़े लोगों का हाथ पकड़कर मैं वासुदेव बिसुंदयाल, पंडित वासुदेव बिसुंदयाल जी द्वारा प्रवचन हुआ करता था, वहाँ जाता था। हमारे गांव में एक विशाल भवन है जिसको स्वराज भवन कहते हैं, लाल माटी के सेंटर में है, केंद्र में है एकदम से, और वहाँ पर क्रमशः मैं कहूँ मिलनेस कागोचित जैसे बोलते हैं से पंडित वासुदेव विष्णु दयाल जी वहाँ 15 अगस्त को आते थे और वहाँ पर आकर प्रवचन करते थे। उस समय की बात ही कुछ और थी, बृहद एकदम से दूर सुदूर गांव से मॉरिशस के कोने कोने से वहाँ लोग आते थे, और जहाँ तक मुझे पता है बैलगाड़ी के साथ, बहुत सारी बैलगाड़ियों के साथ सारी जनता
1: जुलूस निकालकर,
0: जुलूस निकालकर स्वराज भवन चूंकि केंद्र में है हम निकलते थे, और एक रास्ता है जिसको कहते हैं मिशन कौशोद, बुनाके की होते हुए ब्रिजवेजा से होते हुए हम पुनः वहाँ पर आते थे जोश के साथ। और यहोम का झंडा आता है सोने वाले जाग चलो, पंडित वासुदेव विश्वदयाल जी सभी को गवाते थे, और वहाँ पर जब आते थे सर्वप्रथम वहाँ पर तरह तरह की गतिविधियाँ होती थी, सर्कल होते थे कि शिष्य बोलते हैं, और जादू होता था, और उसके पश्चात प्रवचन पंडित जी द्वारा हुआ करता था।
1: मतलब कि ऐसी गतिविधि चलती थी जिसमें बड़ों से लेकर बच्चों की रुचि उसमें उजागर
0: बनी रहती थी।
1: जी हाँ।
0: और खुशी की बात यह है मुझे बताते हुए कि आज यदि मैं यहाँ हूँ, हिंदी के दो शब्द बोल पा रहा हूँ, तो उसी परमात्मा परमात्मा की कृपा है वासुदेव बिसुंदयाल जी का, क्योंकि मेरे अनुभव से हिंदी का बीज लाल माटी में गाड़ा गया था, और उन्होंने द्वारा ही गाड़ा गया था। और वहीं पर बगल गांव में एक पहली पाठशाला खुली थी जहां पर हिंदी की पढ़ाई शुरू की थी, सजड़िया गांव में।
1: जी हाँ।
0: हाँ, और वहीं से हिंदी उपजी, पनपी, और आज जहां तक है देश में उसी की कृपा है।
1: और आप जैसे हिंदी के जो सेवक हैं, आज भी हिंदी के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कार हैं, जो परंपरा है, उसको बच्चों तक पहुंचाने में, नई पीढ़ी तक पहुंचाने में आप लोग लगे हुए हैं।
0: यही मेरा प्रयास है, क्योंकि जो कुछ मैंने सीखा उनके और एक शिष्य हुआ करते थे ठेकानंद ठाकुर जी, स्वर्गीय गुरु जी ठेकानंद ठाकुर जी, जिससे मैंने हिंदी पढ़ा, और उसके पश्चात चलकर मैंने यह प्रण लिया कि जबकि मैंने उन लोगों से हिंदी सीखी और उनके द्वारा हिंदी का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, तो क्यों ना मैं इसको प्रचार करूं, इसका प्रसार करूं, और ईश्वर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज यथासंभव जहां तक हो सकता है हम हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं, और गांव-गांव में हिंदी की बैठकाएँ, पाठशालाएँ चलाने का प्रयास कर रहे हैं।
1: और पंडित जी स्वयं कहते थे कि उनकी जो गुरु दक्षिणा है वह ये कि आप 10 जनों को हिंदी पढ़ाएं, 10 जनों में संस्कृति की बातें डालें, तो उनका जो दक्षिणा है वह पूरा हो जाएगा।
0: पूरा हो जाएगा। अभी अभी आपने कहा कि हिंदी केवल भाषा के लिए हम नहीं पढ़ाते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि भाषा गई तो संस्कृति गई।
1: जी हाँ।
0: और मुख्य रूप से हमारे पाठ्यक्रम में जहाँ कहीं भी हमारी पाठशाला चलती है, हमने हिंदी भाषा की पढ़ाई के साथ, पठन पाठन के साथ संस्कृति को जोड़ा है उसमें। जैसे बोलते हैं मोरल वैल्यूज़, उसमें गीता ज्ञान, रामचरितमानस की चौपाइयाँ सिखाई जाती हैं, संस्कार विधि, यज हवन बच्चों को सिखाया जाता है। और मुझे देखकर प्रसन्नता होती है कि मेरी पाठशालाएं जो चल रही हैं इन दिनों, उनमें हमारे बच्चे, हमारे अध्यापक कितने मौज मस्ती के साथ बच्चों के साथ एकजुट करके उनको हिंदी और यज्ञ आदि सिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ। और ये जो परंपरा सी बन गई प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदयाल द्वारा मॉरिशस में भारतीय स्वतंत्रता दिवस को मनाने का, फिर जब उनका निधन हो गया तब भी यह परंपरा जारी रही। और हमें बताइए जरा कि किस तरह से और भी संगठने, और भी जो संस्था हैं, जो लोग हैं, इसे जुड़ते गए।
0: यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पंडित जी जब बहुत पुराने समय में जब प्रवचन करते थे, तो मैं कहूँ कागज के चिट्ठड़ों को बटोर बटोर कर उन्होंने एक पत्रिका

0: पत्रिका या पत्र चलाया था जिसका था नाम था जमाना,
1: जी हाँ,
0: उस समय का, और हम लेते थे उसको, पढ़ते थे। और उसके सहयोग देने वालों में लाल माटी में बहुत तेरे ऐसे महान व्यक्ति हुए, नाम लेना तो मुश्किल है, बहुत सारे हाँ। लोग हैं जो बिशुन दयाल पंडित जी के अनुयायी थे, उन्होंने ही इस क्रम को जारी रखा। और जब पंडित जी प्रवचन कर रहे थे तो उसी पत्रिका को सभी लोग बांटते थे हमारी और हमारे लिए, और वही पत्रिका से आज हिंदी जीवित है। और उन्होंने स्वयं सेवक का गठन किया था, न केवल वहाँ पर जुलूस होता था बल्कि लाठी का खेल भी होता था,
1: जी हाँ।
0: जो भारत में है अभी तक, कैसे लाठी से वो करते हैं, लाठी का खेल भी सिखाया करते थे। तो उन सेवकों में बहुत सारे ऐसे लोग गुजर गए, स्वर्गीय हो गए, किंतु अभी भी एक आध लोग हैं जिनके साथ मिलकर हम यह आयोजन करते हैं। हमारा इसमें, मेरा इसमें कोई सहयोग नहीं, वहाँ की संस्था जो है, अभी हाल में स्वराज भवन की एक कमेटी लगी, उसमें मैंने साथ दिया, और उसके साथ साथ प्रेमचंद पुस्तकालय है बगल में, स्वराज भवन के एकदम बगल में, और पंडित जी द्वारा ही गठित है, और वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं जहाँ पर बच्चे आकर लेते हैं, पढ़ते हैं और घर ले जाते हैं। तो उन्हीं बड़े लोगों के सहयोग से, कृपा से, आशीर्वाद से हम जो कर पा रहे हैं वो भगवान की कृपा है।
1: और अब हमें ये बताइए कि उस समय से लेकर आज हम 2026 में हैं, इस वर्ष आप लोगों ने कैसे इस दिवस को मनाया और कौन कौन सी गतिविधियाँ चली, और आपके साथ मतलब कौन कौन इस गतिविधि में जुड़े, कौन कौन शामिल हुए, और किस तरह से इसको आप लोग ऊर्जा देते आ रहे हैं, ताकि क्योंकि ये जीवन है, जहाँ जन्म होता है वहाँ मृत्यु भी होती है, पंडित जी भी आज हमारे बीच नहीं रहे, तो आपके बाद जो हमारे आपके पीढ़ी के लोग हैं, किस तरह से युवा पीढ़ी इसको आगे ले जाएं, इस बात का ख्याल आप किस तरह से रख
0: कोई संदेह नहीं कि लाल माटी के पुत्र, लाल माटी के जो बच्चे हैं, इसको आगे लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन बच्चों में, उन नौजवानों में, भावी पीढ़ियों में, मैंने जहाँ तक भांपा है, कूट कूट कर परिवार संस्कार डाल रहे हैं। और आपने पूछा कि कैसे हमने मनाया इस साल 15 अगस्त को, आपको पता होगा कि 15 अगस्त को जितने भी महापुरुष होते हैं हमारे देश के, भारतीय ऊंचाइयों के लोग या मंत्रालय के लोग या जितने लोग हैं, वे सभी व्यस्त होते हैं,
1: जी हाँ।
0: किंतु मुझे हर्ष होता है, छाती दुगुनी होती है यह बोलते हुए आपको, कि इस वक्त, इस समय हमारे बीच में वहाँ पर स्वराज भवन में 15 तारीख को ही हमने कार्यक्रम रखा था, 3 बजे से सर्वप्रथम यज्ञ हुआ, और उसमें हमारा मुख्य अतिथि भारत के, भारतीय उच्चायोग के द्वितीय सचिव बहन श्रुति पाठक जी उपस्थित थी
1: जी।
0: और रातों रात में उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि गुरुजी मैं आ रही हूँ, और आई, बड़े ही प्रेम से आई, और आते हुए जो ही ज़मीन पर अपना पैर रखा, उन्होंने कहा, गुरुजी लाल माटी में प्रथम बार मैं अपना पैर रख रही हूँ, यह मेरा अहोभाग्य है। और एक बात न भूलूँ मैं, वहाँ के समाज वालों ने स्वराज भवन के सामने एक दुकान है जिसको कहते हैं गयाल सुपर मार्शे, एक केंद्र है, छोटा सा चौक है, उस चौक के पास एक पंडित वासुदेव विश्वनाथ जी की एक प्रतिमा रखी है, तो वहाँ उस चौक का नाम भी हो पड़ा है वासुदेव विश्वनाथ चौक, स्क्वायर। सर्वप्रथम हम निकले स्वराज भवन से, माला लेकर, फूलों की माला और गुच्छे, जाकर हमने वहाँ पर पंडित जी के गले में माला डाला, सभी लोगों ने, जितने अतिथि थे हमारे, और बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर हमारे गाँव के, वैसे तो सभी अपने आप में महान हैं, बड़े हैं, लेकिन एक आध व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहता हूँ, ह्यूमन सर्विसेज के प्रेमचंद बुझावन जी थे मुख्य अतिथियों में। वहाँ का हमारा एक लाल, जिसे मैं कहता हूँ लाल माटी के लाल, उसमें डॉक्टर जुरावन जी थे
1: जी।
0: वो भी थे, और अनगिनत वहाँ के लोग रहते, वहाँ से जाकर माला पहनाकर, तो अब हम जुलूस के साथ ही क्रम से वही ओम का झंडा आता है, सोने वाले जाग चलो गाते हुए हम स्वराज भवन में आए, और वहाँ पर महान व्यक्तियों के प्रवचन हुए, यज्ञ के पश्चात प्रवचन हुए, और वहाँ पर वासुदेव बिशुन दयाल जी के किए हुए कार्य जो उन्होंने किए हैं अपने जीवन काल में, उसका बहुत अच्छा उल्लेख किया गुरुजी मुकेश जमन जी ने
1: जी।
0: और सभा व ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक मेरा भाई था सुभाष सुखी जी, उन्होंने ही अपना भाषण दिया, जिसमें लोगों को दर्शाया कि आज के पीढ़ियों के साथ क्यों यह बांटना आवश्यक हो गया है, ताकि वे लेकर आगे

0: चले, जब तक हमें हमारी उम्र हो गई, पता नहीं कब तक भगवान हमसे सेवा कराते रहेंगे, और ताकि पीढ़ी इसको लेकर चले। और जैसे मैंने शुरू में कहा, कोई संदेह नहीं इसमें। हमने बच्चों को देखा, जो बच्चे आते हैं वहाँ बैठकर चुपचाप से सुनते हैं, कभी पूछते हैं कि वासुदेव बिसुंदियाल जी ने ऐसा ऐसा किया। मैं यदि बताऊं, मैं अपने नाना जी की उंगली पकड़ कर जाता था वासुदेव बिसुंदियाल जी को सुनने, और लौट कर मैं गंभीरता से सोचते रहता था कि इतनी सारी गतिविधियां और इतने सारे अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने। चलते चलते एक बात बताऊं, मेरे ख्याल से 1987 की बात है। हम उम्र के बहुत सारे अध्यापक लोग, हम गए थे पंडित जी से मिलने, शांतिमास के बगल में रहते हैं, गए मिलने। तो बेचारे अब तो अंतिम माना कि शैया पर थे, तो उनके पैर माना सर उस तरफ था और पैर इस तरफ था, तो मैं जाकर पैर के यहाँ खड़ा हो गया और उन्हें आँख खोलकर पुस्तकों के भंडार के बीच
1: जी
0: सोए हुए थे। तो उन्होंने पूछा, किधर से हैं आप लोग? तो मैंने जवाब दिया कि पंडित जी, हम पूर्व से हैं, लाल माटी गांव से। तो उन्हें आशीर्वाद देते कहा कि लाल माटी ही के लोग आ सकते हैं, पूर्व ही के लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं। और क्या कहें, भगवान की मर्जी थी, एक सप्ताह के बाद उसका निधन हो गया। और जब निधन हुआ तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं गुरुजी मुकेश झमन जी और टोली को लेकर हमने पूरी जहाँ पर से उनके अर्थी उठे वहाँ से लेकर वह शमशान घाट तक हम गए और पूरा हमने फिल्माया, और बहुत सारे लोगों से हमने इंटरव्यू लिया उनके बारे में, और बहुत सारे ऐसे सत्यदेव प्रीतम जी थे आदि बड़े लोग थे वहाँ पर। तो इस प्रकार की उनकी छाप लाल माटी में रह गई है।
1: जी हाँ, और जैसा कि आपने कहा, प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदियाल वे चाहते थे कि जो कार्य उन्होंने शुरू किया उसको आगे ले जाया जाए, और इस कार्य को आप लोग बहुत खूबसूरती से अंजाम दे रहे हैं। आप लोग भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि लाल माटी गांव, जिसको वे अपनी मिट्टी मानते थे, जहाँ के लोगों को वे अपना परिवार के सदस्य मानते थे, कम से कम वहाँ के लोग, वहाँ की युवा पीढ़ी इस कार्य को आगे ले जाए। और स्वराज भवन, जिसकी स्थापना उन्होंने बड़े प्यार और देशभक्ति के साथ किया था, उसके अंदर रहकर वहाँ जो गतिविधियाँ उस समय से शुरू हुई हैं उसको आप लोग जारी रखेंगे, इसका आप लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं।
0: यही नहीं, अच्छा रहा, अच्छा होगा यदि मैं बता दूं कि वहाँ के बाद 15 तारीख के बाद, अभी 27 गत गुरुवार की बात है, मेरी एक संस्था है वयस्कों की, कैसे कहते हैं, त्वाजे मास, जिसका नाम है ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ यंग एल्डरली। तो वहाँ के बहुत सारे लोग उपस्थित थे, हम अपने सेंटर में मिले थे, लाल माटी में कुछ बगल में है, वहाँ पर भी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। और वहाँ पर ज़िला परिषद के अध्यक्ष मौका फ्लाक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट हुए थे, वे आए थे, और ऐसे विद्वानगण और भी लोग आए थे, और वहाँ भी भव्य रूप से हमने मनाया। यज्ञ, बहुकंडीय यज्ञ हमने किया, फिर झंडारोहण किया भारत और मॉरिशस दोनों का, और पुनः वहाँ गतिविधियों के साथ उनके प्रवचन आदि के साथ बराबर हमने धूमधाम से मनाया
1: जी। और फिर आज के दौर में एक देश की स्वतंत्रता, खास तौर पर भारत की स्वतंत्रता को इतनी बढ़ चढ़ कर मनाने का उद्देश्य क्या है?
0: ऐसी तो बात ही नहीं हो सकती है कि जहाँ से हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादे आए थे, उनकी स्मृति में, उनको कैसे बोलते हैं, श्रद्धांजलि के रूप में हम भारत माता की स्वतंत्रता न मनाएं। यदि हिंदू होने के नाते, भारत की संतान होने के नाते, भारत के बेटा होने के नाते यदि हम इसको न मनाएंगे तो हमारा हिंदू कहना बेकार है।
1: हाँ।
0: और इस क्रम को हम, भगवान ने जब तक चाहा, हम जब तक रहेंगे, हमारी अगली पीढ़ी भी इसको मनाते रहेंगे।
1: हाँ, और फिर ये भी, ये इस बात का भी एक संकेत देता है कि जिस देश की सभ्यता किसी समय ऐसी चरम स्थिति पर थी, जहाँ पर पाश्चात्य सभ्यता काफ़ी पीछे थी, उस देश पर जब कब्जा करने की नौबत आती है, फिर वहाँ की जो जनता होती है किस तरह से फिर से पुनः अपनी स्वतंत्रता के लिए खड़ी होती है, और जो देश के लुटेरे हैं उनके हाथों से उसको छुड़ाकर एक बार फिर अपनी जो गरिमा है, अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको पुनः स्थापित करते हैं। और ऐसी ही कहानी रही है हमारी भारत माता की।

0: और इसी मार्ग पर चलते हुए मॉरिशस का भी उत्थान हमारे पूर्वजों ने किया। हम चाहेंगे कि भारत की जो उसका जो इतिहास है उससे आप जुड़कर मॉरिशस में किस तरह से हमारे पुरखों ने इस देश को संवारा, इस देश को इस मुकाम तक पहुंचाया, ज़रा इस पर कुछ टिप्पणी करें।
1: सबको तो पता है ना कि अंग्रेज़ों ने कहा था चलो मॉरिशस, वहाँ पर पत्थर के तले आपको सोना मिलेगा, नहीं
0: जी।
1: और बात तो हुई ना, यहाँ पर आकर हमारे पूर्वजों ने चीनी ईख की खेती की और एक से तो मिठास आया ही और साथ साथ में देश में सोना आया। हाँ, जब आपने कहा भारत माता की हम कैसे भूल सकते हैं, तो भूलना नहीं चाहिए कि हमारे देश को लघु भारत कहते हैं। और एक बात मेरी स्मृति मेरे दिमाग में आ रही है, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे मॉरिशस, जब वो लीडर ओपोजिशन के लीडर के ओपोजिशन पार्टी के लीडर थे, तो यहाँ जो इलोत में कॉलेज है रखा गया है
0: रविंद्रनाथ
1: टैगोर, तो उसकी नींव रखी गई थी, तो उन्होंने पत्रकारों से एक बात कही थी। उन्होंने पूछा था मॉरिशस के बारे में आप कुछ बताइए, तो उन्होंने एक बात कही थी जो मेरे दिमाग में धस गई, मैं था वहाँ पर। उन्होंने बात कही थी कि हिंद महासागर रूपी सुंदर नारी के दमकते ललाट पर मॉरिशस एक बिंदिया है
0: जी।
1: वो तो कवि थे ही, तो इस प्रकार की उपमा उन्होंने मॉरिशस के लिए दी। और कहते हैं ना, वो मार्क ट्वेन ने तो कहा है ना, सर्वप्रथम भगवान ने ईश्वर ने मॉरिशस की रचना की थी और उसके बाद में स्वर्ग की रचना की थी, तो यह क्रम सदा रहेगा। ऐसी बात ही नहीं कि धूमिल हो जाएगी समय के साथ, जरूर पाश्चात्य में लोग कुछ ढल गए हैं, लेकिन जहाँ तक लाल माटी की बात है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, संस्कृति सभ्यता और हमारी भाषा पनपती रहेगी, जीवित रहेगी, यही हमारी कामना है।
0: जरूर
1: भावी पीढ़ियों से, अंत में लगभग हम आगे ही गए हैं,
0: हाँ जी हाँ,
1: भावी पीढ़ियों से मैं यही याचना करूँगा कि और अभिभावकों से कि अपने बच्चों को यथासंभव उनको भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ने का प्रयास करें।
0: ज़रूर, और जैसा कि आपने कहा कि पाश्चात्य सभ्यता से हम अछूते नहीं हैं, गांधी जी ने भी यही कहा था कि आपके मन मस्तिष्क के सभी दरवाजे और खिड़कियाँ हर सभ्यता के लिए खुली रहनी चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता से आप कभी भी जड़ से न उखड़े, इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे ही हमको भी मॉरिशस में रहते हुए, चाहे हम पाश्चात्य सभ्यता की सभी बातों को, अच्छी बातों को अपनाते जाएं, लेकिन अपनी जड़ को ना भूलें, अपनी जड़ से हम वंचित ना हो। प्रेमदीप चमन जी, आज आप आए, कार्यक्रम की शोभा आपने बढ़ाई, भारत की स्वतंत्रता की गरिमा पर और मॉरिशस में किस तरह से गतिविधियां चलाई जाती हैं इस विषय पर आपने काफ़ी खुलासा दिया। हम आपका शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भी सभी लोगों को धन्यवाद, और यही मांग करूंगा कि जैसे आपने कहा अपनी मातृभाषा से ना हटें कभी,
0: अवश्य
1: इससे जुड़ के रहें, धन्यवाद।
0: अवश्य। तो हमारे इस कार्यक्रम की जो पहली कड़ी है, भारत की स्वतंत्रता दिवस मॉरिशस में आज भी लाल माटी में किस तरह से मनाया जाता है, यह कड़ी यहीं पर समाप्त होता है। अब हम थोड़ी ही देर में दूसरी कड़ी के साथ जुड़ेंगे, जहां पर हम मॉरिशस के एक भोजपुरी कलाकार के साथ मिलेंगे, उनका नाम है सुनील गंगाराम। हम देखेंगे कि किस तरह से मॉरिशस से बाहर रहते हुए विदेश में वे अपनी भोजपुरी भाषा, भोजपुरी गीत संगीत और अपनी संस्कृति को नहीं भूले, बल्कि उसको भरपूर बढ़ावा दे रहे हैं, इस छोटे से विराम के बाद।

0: संस्कृति की बातें,
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सब कोई के एक बार फिर स्वागत बा। ये प्रोग्राम के प्रस्तुति होवेला MBC और अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मिलाजुला सहयोग से। हमने के पहला कड़ी रहल भारत के स्वतंत्रता दिवस पर मॉरिशस में कैसे मनावल गल और अब सुनब जा दादा दादी के नहीं बल्कि सुनील गंगाराम जी के कहानी, जे कि एगो मॉरिशन कलाकार हवन मोचिदा के रहे होला। सुनील गंगाराम विदेश चल गएलन बहुत बरिस पहले, लेकिन भोजपुरी गीत संगीत आज भी उनकर दिल में बसल बा। सुनील गंगाराम जी नमस्ते।
2: नमस्ते,
1: आपके स्वागत बा आज के कार्यक्रम में। आज के हमने के कार्यक्रम के नाम है संस्कृति की बातें, और संस्कृति की बातें में आज हमने आपसे जानने चाहब जा आपके बारे में। आप एगो भोजपुरी कलाकार हवा, लेकिन आप बहुत बरिस से लगभग 88 से मॉरिशस में नहीं हुआ, फिर भी आज भी आपके भोजपुरी भाषा मॉरिशन जैसन ही बा। आपके जो भोजपुरी गीत संगीत के प्रति लगाव रहल तब से अभी ले बा। अपन परिचय में थोड़ा हमने के बतावा, आप भोजपुरी गीत संगीत में कौन समय से कदम रखला?
2: हम 20 बरिस हो गल बा जब से हम भोजपुरी गीत गाए लगली। तो बहुत पहला कहानी है। हमारे बाप हमारे पिताजी एगो गमचार हल कलाकार हल।
1: कौन नाम रहल आपके पिताजी?
2: परमानंद गंगाराम।
1: अच्छा जी।
2: तो ऊ जब हमने छोटा रही सा तो घर में रोज है ये रहल गीत
1: रियाज
2: कर स्वत रही सा। तो अभी बस कल हमने में
1: कौन बरिस के बात करत हवा आपके पिताजी जब रियाज करत रहन घर में?
2: और
1: फिर बाद में आपकी रुचि हो गायन के प्रति?
2: पिताजी हमके सब देलक सिखैलक।
1: तो जो पहला गीत आप गईला अपन पिताजी के रहते वो कौन गीत रहोई?
2: वो रहल पानी।
1: हाँ,
2: पानी एगो भोजपुरी गीत कर ले ली। वो ते मिल के इसमें हम देखे में कर ले ली।
1: थोड़ा गा के सुनाई बा
2: तो। सांझ के जब हम पानी भरे पीछा न करिए, रात के खिड़की खुले चोरब आ जाइए रे, तो आ जाइए तू आ जाइए। एगो प्रेम के गीत है। तो ये गीत मजा आगे होबिले नहीं रहा घर में कहूँ। तो पानी भरे में लोग जा सब देखल कहानी है आगे होल बाब सब। तो अभी हवे गीत पहला कर ली। अभी दो तीन गो से गा उगा कर ले आई
1: भोजपुरी में।
2: नहीं, भोजपुरी में एक उगा कर ली।
1: अच्छा, और फिर मॉरिशस में आप रहते मतलब कौन उम्र तक आप मॉरिशस में रहला और गायन के क्षेत्र में रहला?
2: हम लास वेंटवाजो में छोड़ के चले गए
1: मॉरिशस।
2: तो हो जा गई ली। तो
1: कहाँ हो जा? कहाँ?
2: अंगलितिया कर ली। हाँ, गई ली। तो एक साल में गुआमुयम के ली। हाँ, तब
1: हुआ अंगलितिया भी जाके तो हर मन में मॉरिशस के जो गमठ बा मॉरिशस के जो आपके गायन के प्रति रुचि रहल वो आपके मन में रहल?
2: हाँ, वो रहल। हाँ, तो हम यम किन ली तब सीख ली खेले के या गुरु मिलल सिखाई लग खेले के। तब आवा चली जा तली मर पिताजी से बात कर तली। तब वो हमके सिखावत रहल कैसे कैसे करे के। तब वो हमके एगो ब्रेक दिलक मॉरिस में गमठ करे के। गमत कर ली एक दू गो तीन गो। जब ओकर गमत रहल तो हमके दिलक करे के वो अच्छा बोलक अच्छा बा इतने कर ले जाइए।
1: फिर मॉरिशस में केकर केकर संगे आप गमत कर ले आइला?
2: तो कर ले विक्रम से कर ले हैं, रोशन से कर ली, सुमन से कर ली। अभी हाल ही गर्ल सेवन में सुमन से गमत हो।
1: और जब आगे यहाँ रहला जब स्थापित कर ला अपन नाम शुरू कर ला गमट के दुनिया में वो बखत के गायक लोग संगे गईला?
2: गईले अली एक गायक रह बिल टू उससे पियर रहता वो कर से पहला गमट कर ले ली बिल में मैं। तो वो अवरी दीदी को गायक नहीं जाए लो के नाम नहीं जाएगा। एगो पोस्टर फाक रह चल ओकर नाम नहीं जाइल हम
1: हां
2: बहुत पहले के बात
1: लेकिन यहां पर गमट करत रहला
2: गमट करत रही हूं
1: और जाय से आगे मॉरिशस से आप कोनो एल्बम निकलला
2: नहीं है जैसे जाय के आगे नहीं गीतवा रहल एगो गीत लिख धरी जैसे कि पानी रहल वो बहुत कहिए के लिखल गीत रहल

0: तोके जाके ओजा पड़ी जब शिक्षा के अली तब गेट वाल वहाँ से कर ली मैं उसमें
1: मतलब आपके आना जाना रहा मॉरिशस और इंग्लैंड और फिर मॉरिशस और आप अपन संगीत के जारी रखला यहाँ आके एल्बम निकलला बीच में और जो एल्बम निकलला जो गीत गईला ओकर में से आपके सबसे मनपसंद कौन गीत था
0: सबसे मनपसंद गीत हमार एक लिबर एगो कहानी है कि एगो लड़का जाता माँ आगे जानल बुतिक रहा ना तो सगरो चिन्हवा के बुतिक रहा नहीं रहा तो माँ बोली तो के जाके बुतिक से हमारे खातिर एक बार चिन्ह लिये और तेल उल हुआ दू तीन गो चीज खातिर आगे नहीं रहा कि जाके एक महीना के राशन की घर में ना पैसा नहीं रहा कोई लगे
1: जब बंद करी जाके मौसे से दस गो चीज लेके चला हुआ वो अवसर दिन नहीं
0: रहा अवसर नहीं रहा एक गो चीज एक दिन की ना वो आज ही से भी हुई
1: और क्रेजी भी देर रहा
0: हाँ देर रहा
1: राफा जी वहाँ पे ये हुई
0: ताऊ बोला ताऊ अब सोच साँच के जात हो सीमा में तो लड़का लोग लग कल खेले थे उनसे तो खेले लग लोग कर संगे तो जात जात बुटिंग में गला तो भुला गया हाँ
1: कौन कौन चीज ले के बा
0: हाँ
1: हाँ पसी लालिस तो नहीं दे दी
0: मैं लालिस तो रहा मैं
1: तो रचा एक कपार में रखे के कौन सी बाले हुए के तब गीतवा एकरे पर बा
0: एकरे पर बा तब घरे जब तो माँ दो थी ऐसा ही पर बा
1: और माँ तान कर तब पकावे के तो आपके ये गीत सुनी जा एक लिबर जो उनकी सुनील गंगाराम जी गए ले हवन

0: संस्कृति की बातें
1: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सब कोई के एक बार फिर स्वागत बा। आज ये बखत हमने बात कर रहे जा एगो भोजपुरी कलाकार के जीवन के बारे में, जे कि मॉरिशस में भोजपुरी गीत सीखलन अपन पिताजी से, गमटिया के बीच रहते आप एगो कलाकार बनला और फिर आप विदेश चल गए 1986 में, और तब से आप जो भोजपुरी गीत संगीत बा ओकर से जुड़ल हवा, आपके नियमित रूप से आना जाना होते रहेला मॉरिशस और हुआ पर, और आप अपन भोजपुरी गीत संगीत के रिकॉर्ड करेला अभी भी ओके पाचके करेला जारी रखा था हुआ। और आज हमने यही विषय पर बताया थे जा कि कैसे विदेश में रहते हुए भी आप अपन भाषा, अपन जो संस्कृति बा और जो गीत संगीत बा, भोजपुरी गीत संगीत एक आप बढ़ावा देवत हवा, जारी रखत हवा। हमने के थोड़ा बोला जब आप इंग्लैंड गए तो हुआ पर जब आप ये सब गीत गावत हवा तो आपके कोनो ऑडियंस रहा, कोई आपके अप्रिसिए करे होला, लोग रलन सा हुआ?
2: रलन सा लोग एगो रेस्टोरल मोशन के ओजा बड़ी परफॉर्म करत ली।
1: अच्छा, हुआ भी परफॉर्म करला?
2: जब जब दिवाली रहल बहुत पहले के बात है।
1: हाँ।
2: जब फिर घर तब
1: जी हाँ
2: दिवाली रहल तब वाम करता सब तब गाओ चली।
1: और आप जब गाय के जारी रखला तो खाली अपन लिखल गीत गावत रहला कि जो गीत देजा बा वो भी गावेला, या कैसे जो संगीत के आपके फील्ड बा कैसे एक आप पाच के करें?
2: नहीं नहीं, हम खाली अपन नहीं गायला हम।
1: अच्छा,
2: हम जैसे रंबा दीदी बा होकर गीत गायला, जैसे सोना नयन ओकरो गीत गायला, हम खाले पीले हम सब गाविला, जन जन गीत लोग पसंद करला से नाचे के
1: ओके प्रमोट करला। और हुआ पर खाली मॉरिशन लोग एक पसंद करे लंजा या विदेश लोग?
2: ना एक तो लोग सब हाँ सब हाँ, ऐसे हो जा पड़ी तो ढेर कोई बातें जो लैंड से आलोन सा इंडिया से वो लोग खुशी रहना सुने के।
1: और आपके ये जो सफ़र रहल बा भोजपुरी गीत मॉरिशस से लेके फिर इंग्लैंड में जाके, और मॉरिशस जब अभी भी आप मॉरिशस आवेला तो आपके जो लगाव बा क्षेत्र में वो वैसे ही बा, एकर ये जो सफ़र बा एकर बारे में थोड़ा बोला कैसे चल ले आवता, अभी ले कैसे शुरू होल, कैसे चल ले आवता?
2: तो शुरुआत तो बोलिए कैसे हो रहा ना, तो आईती बा उसने अभी ले हम आज भी हम सोचिला कैसन गीत लिखब, कौन विषय पर लिखब, कौन चीज जस्ती अच्छा लगी जनता के सुने के, और सुनीला सब जे
1: जो भोजपुरी भाषा आपके बा हुआ पर इंग्लैंड में रहते आप बताए कि आपके मौका मिलेला
2: बचाएला घर में?
1: अच्छा, तो मतलब कि भोजपुरी आपके वैसे ही बा,
2: वैसे बा,
1: तो आपके कोनो कठिनाई नहीं होवेला लिखे में भोजपुरी?
2: नहीं नहीं नहीं होवेला लिखे में, नहीं होवेला तो अब हम जब लिख लेना तो हमारे बुढ़िया कुछ नहीं ला।
1: अच्छा,
2: बुढ़िया अच्छा लगता तो बोली ना यही ना चबा वो ना चबा, थोड़ा समझे कर दे ला।
1: और कौन कौन विषय पर आगे लिखत रहला, कैसे कौन कौन विषय पर अब लिख ले जाला समय के साथ? हाँ,
2: एक वो गीत लिख रही पानी, तो वो पानी में रह पानी भरे जात रहन से, तो वो आगे के जमाना में
1: वो लाफोंटेन रहा,
2: लाफोंटेन रहा तब। हाँ, तब एक सोच सोच के लिख रही, तो अभी एगो

0: एक लिबर बा लिख ले ली तो एक दूसरा लिख ली दिनवा बा के रतवा बा प्यार के गीत हाँ खाली थोड़ा बढ़िया बा वो गीत बा और दूसरा एगो रैप कर ले भोजपुरी रहा एगो शराबी पर है
1: वो मॉरिशन शराबी रहा कि इंग्लैंड के शराबी रहा
0: मॉरिशन शराबी रहा
1: ऐसा गीत नहीं बा जन में आप सकबा मॉरिशस के जन संस्कृति बा और फिर इंग्लैंड में रह के हुआ के जन संस्कृति बा ओकर पर ओकर में कोनो तालमेल कोनो ऐसा गीत बा
0: नहीं नहीं बनाए ले हम संगीत सोचा चली बनाए के हाँ। सुन हम एक्चुअली हम शुरू कर ले लिखे के तो छोड़ दे लिया उसने
1: सुनील जी आप एगो कलाकार हवा और मॉरिशस में आप सुनत हुई बा देखत हुई बा कैसे भोजपुरी आज एगो दूसर आयाम ले ले
0: लेबा
1: मॉरिशस के जन कलाकार लोग हवन जा अपन जन एल्बम बा कितना परिष्कृत करके किसे रिफाइन एल्बम आज निकालत हवन जा उ लोग के भाषा भी आगे के जन भोजपुरी बा अभी के इस सब के मिला के अब भोजपुरी एगो दूसर
0: लेवल मिल
1: जी हाँ और इस सब के बारे में आपके कौन राय बा इस सब जब देखे ला आपके विचार एकर पर
0: हाँ जब सोची ला हम गजर जी जैसे कि हम जस्ती अच्छा नहीं मज़े करती और ये हमारा जस्ती गीत रहा हम जा पर ये उतना लेते वो नहीं लाना पहला काम करके
1: हाँ
0: तब जब काम करके आई बा तब लेते लिखा के चाहे ला लिखे के वो गीत ऐसा चीज नहीं है कि तू दू गो लालीन लिख दिला तो हो गल गीत हो गल नहीं
1: चाहे इंस्पिरेशन
0: हाँ और लिख ले जाए के चाहे ला और वो में से चाहे ला माइनस कर ले जाए के जन जन अच्छा बा जन जन अच्छा बा तो हाँ चाहे ला परखे के निमन से हाँ तो हजार रहती तो हम जस्ती करती
1: और यहाँ के कलाकार लोग के बारे में आपके कौन सी बाबू लेके
0: हम देखे थे सब कोई आगे जाता हाँ जैसे कि अभी एगो कीर्तन है वो ताबेलचे रह नहीं
1: हाँ
0: अभी गावत है एगो गीत नहीं कर ले बा हाय हैंडसम गीतवा जस्ट जोली हाँ अच्छा हाँ
1: और मॉरिशस में अभी देख बा कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट अलग अलग जो स्थिति बा ओके लेके अलग अलग गीत लिखल जाता ओकर में भक्ति गीत भी बा ढेर सुंदर सुंदर भक्ति गीत बा और युवा पीढ़ी लोग एक नवा नवा संगीत में भी नवा लय में भी एक तैयार करके प्रस्तुत करत हवन जा जब भी मॉरिशस में अब कोनो धार्मिक त्योहार आवेला त नवा भोजपुरी गीत के कोनो कमी नहीं बा बल्कि बॉलीवुड के गीत के भी ये लोग मात दे देवत हवन सा और भोजपुरी के ऐसन स्थिति में पहुंचते हुए देख के आपका बोलबा ये सब कलाकार लोग के कौन संदेश देबा
0: हम देखना अच्छा करत हवन सा हम आगे चाहे आगे बढ़ाए के होड़ी जैसे के एगो शिवरात्रि के एगो गीत नहीं लिखल हाँ बहुत चली रहा
1: वहाँ पर सुने ला जा
0: सुने हाँ तो यूट्यूब में देखे रहा सब सुनी रहा तो वो अच्छा रहा बहुत अच्छा रहा और यू ओके जब इंटरव्यू कर तब बोला गीत गवाए में जाते हल तो सुना था गीत वाता लिख रहा
1: जी ये जो गीत रहा महादेव के चढ़ाई बो गंगा के जलवा ये जब नवा पीढ़ी लोग सुनलन जा नवा पीढ़ी लोग सोचलन जा ओकर म्यूजिक खास तौर पर कुछ ऐसन बनावल गल कि सब कोई के बुझा कि ये एगो नवा गीत बनावल गल नवा म्यूजिक के साथ लेकिन जैसे अभी बोलत हवा ये एगो बहुत पुराना गीत
0: बहुत पुराना हमके बहुत याद दिला दिलक जब हमने गाँव भाषा से हवा चली सा तो जुलूस हो गया था ना ही तो झाल के लिए तली सा
1: ढोलों को
0: बखत तब भी हम गीत वगाओ
1: तब वो गाओ था अभी गाओ था हाँ। खाली ये बखत जो म्यूजिक बा ओके एगो नवा अंदाज देके हाँ एगो नवा स्पीड दाके
0: ये एगो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है
1: जी
0: कि सकबा एगो पुराना गीत लेके कुछ लेके नया कर दिया
1: जी हाँ और खूबसूरत बना देवे
0: खूबसूरत हाँ
1: जेके नवा पीढ़ी जो नुवो जेनेरेशन बा उ लोग भी अप्रिशिएट करिए जा और हमने सुनील गंगाराम जी के एगो दूसरा गीत सुनब जा फिर ई बातचीत के समाप्ति की ओर बढ़ब जा

0: संस्कृति की बातें
1: कार्यक्रम में आप सबको के एक बार फिर स्वागत बा। ये कार्यक्रम के लगभग समाप्ति की ओर बढ़ा थी जा। आज के ये कार्यक्रम दुगो कड़ी में रहल। पहला कड़ी में देख ली जा कि मॉरिशस में आज भी कैसे भारत के स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से बढ़ चढ़ के मनावल जाला, और ये दूसरा कड़ी में हमने एगो भोजपुरी कलाकार से बातचीत कर रहे जा जो विदेश में रहते, इंग्लैंड में रहते। मॉरिशस के जन भोजपुरी भाषा बा, मॉरिशस के जन संस्कृति बा, और साथ साथ हमने के जोन बीतल दिन के कहानी बा, इस सब के बहुत बढ़ावा देवेलन अपन गायन में। और आज भी वो गीत, भोजपुरी गीत गावेलन, भोजपुरी संगीत में हवन, और उनकरा प्रेरणा मिल रहा उनकर पिताजी से जे कि एगो गमटिया रहलन सुनील जी। हमने के बोला कि अभी बोला था कि आप खाली अपन लिखल गीत नहीं गावेला, बल्कि दूसर दूसर कलाकार लोग के गीत भी गावेला। आपके जो सबसे मनपसंद गायक में से कोई हुई तो वो
2: के नाम हमर
1: सबसे मनपसंद गायक
2: रहा
1: खाली पी ले। जी तो एक टुकड़ा गा के सुनाओ।

0: दुनिया में काबा, हाँ दुनिया में काबा, खाले पीले जीले भैया, जिंदगी में काबा, खाले पीले जीले भैया।
1: और फिर गायक, इधर रहा गायक के बात, अब आपके मनपसंद गायिका भी हुई को नो भोजपुरी में, गायक आप देखा थे बा, आज भी सब पीढ़ी भोजपुरी में ऊँचा है, औरत हो चाहे पुरुष हो, सब कोई गावत हो,
0: सब कोई गावत हाँ। हाँ,
1: तो गायिका के हाथ और सबसे मन,
0: हमारे गायिका सबसे फेवरेट गायिका रामबा दीदी
1: जी हाँ। और हम कब अंदाजा लगाए जुबेदा लुतो लेके जाए आपके मनपसंद हुई, सबके मन पसंद है, ये एगो टुक लगा के सुनाओ जो हुआ पर गावेला।
0: शहर के लिजिनुआ में जोली जोली छोकरी, शहर के लिजिनुआ में जोली जोली छोकरी, जुबे डालो तो लेके जाए, जुबे डालो तो लेके जाए, चुन चुन के मारे नजरिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। आखिर में आप हमनी मॉरिशस में बसल जो भोजपुरी गायक लोग हवन जा, जे लोग उभरत हवन जा, कोई गईते गईते थोड़ा रुक जाता, वो लोग कौन संदेश देबा?
0: वो लोग के हम बोला कि नहीं रुके के, आगे बढ़े के चाहेला, चाहेला कोशिश करे के, इतना आसान नहीं बात हम जानी ला, पढ़ी कोशिश करे के भोजपुरी के चाहेला आगे बढ़ाए के।
1: और हमनी के भोजपुरी गीत विदेश में भी पसंद करल जात हुई?
0: हाँ, सब कोई पसंद करल। जैसे वो हमार दीदी को संगतिया बात है, वो एगो मोरक्कन भक्ति, वो नहीं जानला भोजपुरी, तो नाचेला भोजपुरी गीत गाय जाता।
1: हाँ, मतलब सब कोई अप्रिशिएट करे।
0: अप्रिशिएट करल
1: जी। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप अपन समय निकाल के, अपन छुट्टी के समय निकाल के यहाँ पर आइला स्टूडियो में थोड़ा बातचीत खातिर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामना। आज के हमने के संस्कृति की बातें कार्यक्रम हैजे पर समाप्त होता, अगला कार्यक्रम तक हमने के आज्ञा द, धन्यवाद, नमस्ते।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें गीता जी से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे समाज के हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रही है, लेकिन इससे मिलने वाले अवसरों के साथ साथ इसे सही तरीके से नियंत्रित करने का सवाल भी उठ रहा है। अफ्रीकी देशों की इन चुनौतियों से निपटने की तैयारी का स्तर जानने के लिए एक नया उपकरण लॉन्च किया गया है, अफ्रीकन AI गवर्नेंस इंडेक्स। ये सूचक

बैंक अफ्रीकी संघ के 55 सदस्य देशों में एआई के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियों, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है। आज ब्यूनो लोगेत की दो पुस्तकों का विमोचन किया गया, द अम्ब्रेला द पावर बिहाइंड ग्लोबल लॉ और नार्को टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग इन अफ्रीका एंड द इंडियन ओशन।

0: संस्थाओं, सुरक्षा और सत्ता की सीमाओं पर अपने विचार सामने रखते हैं। विदेशी खबरों में नेपाल में आई जल प्रलय की भयावहता से दो दिन पहले ही पहाड़ खतरे के संकेत देने लगे थे। चीनी सीमा पर केरांग से लेकर त्रिशूली नदी और उसके पार नेपाल के रसुआ तक जगह जगह भूस्खलन होने लगा था। पहाड़ से पत्थर खिसक रहे थे और रास्ते बंद हो गए थे। नेपाल में लापता लोगों की संख्या बढ़कर 4,200 से ज्यादा हो गई है। राष्ट्रीय आपदा एजेंसी ने इसकी जानकारी दी। खोज अभियान में आग बुझाने और बचाव के लिए प्रशिक्षित कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। सीमा के दोनों तरफ मौसम का कोई भरोसा नहीं है, जिससे राहत और बचाव कार्य लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं। अगले 24 घंटों तक लगातार बारिश होने का अनुमान है। और आज तेल की कीमतों में 2% से ज़्यादा की तेज़ बढ़ोतरी हुई है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत फिर से $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। ये बढ़ोतरी तब हुई जब अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलमार्ग में ईरान के लारक द्वीप पर दो ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया। जुलाई के अंत के बाद ईरान पर अमेरिका का ये पहला हमला है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। इकबाल रोड विचैमिल थ्रियोली में 58 साल के 58-year-old के जनाब अशरफ चेदी, जो अशरफ से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात 8:30 बजे उनकी बेगम मिसेस बीबी रुखसाना मनबहाल के घर इकबाल रोड विचैमिल थ्रियोले से उठाकर खिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: RM3 Radio.

0: बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हवा आज की चर्चा कार्यक्रम में सबको के प्रणाम नमस्ते। हाँ पन्या तो बरसता मूसल बरसात बरसता तो अपन ख्याल रखिएगा और हमने तुहर स्वागत करे थे जा आज के कार्यक्रम में जो है आज की चर्चा और आज हमने चर्चा करब जा प्याज ओनियन जी हाँ जोयों पर हमने बतियाब जा हमने जो सीखते हैं प्याज के वो कैसे चला था कौन कौन चैलेंजेस के वो सामना कर रहा था ये सब हमने ढेर बतियाब जा आज। और हमने के विशेष मेहमान हवन फागिद अनी से आप हवर रिसर्च साइंटिस्ट एंड सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट श्रीमान भेद नंदन दोबे जी जिनका हमने स्वागत करी राजा। दोबे जी नमस्ते।
1: नमस्ते सभी दर्शकों को।
0: आज हमने प्याज पर बतियाब सब और प्याज हमने के आगे बढ़ाए से आगे ये जो टॉपिक हुआ है प्याज के जो सीखते हैं मोरिस में वो कैसे बातें अभी
1: शुरू के आगे हमें बोलते जैसे हमें सब कोई जानी ना सा प्याज एगो सब्जी जिनके बहुत महत्व है
0: जी
1: हमी के देश में और हमी के पकवान में प्याज हमी के पकवान के बहुत स्वादिष्ट करेला। अब सोचा एगो पलदामुन के चटनी जब करत हो या एगो बिरयानी पकावत हो या एगो दाल छौंकत हो तो जे ओकर में प्याज नहीं रही तो पिया पकवान वान नहीं खाई
0: आगे बोलत रही सब नामो गंद तुला सोस हाँ। अब जे प्याज भी नहीं रही
1: प्याज भी नहीं रही
0: ढेर जना खा लन जहां
1: हां त अब जन हमी के सीखते बा प्याज के गर साल जब दिखनी सा 2025 में तो हमने पे 18,000 टन प्याज के जिसवित मिल्टन प्याज के सेवन कर लेनी सा
0: जी
1: है और उकर में सिर्फ हमी जो लोकल जो पूजे का इना सा वो सिर्फ 6,000 टन है
0: माने कि हमने जस्ती खाई ला सा हाँ। जितना हमने पैदावार कर लिया सा
1: सिर्फ आपे फे को जब देखबा तो 30% ही खाली हमी पूजे करीना सा
0: जी
1: और जो बाकी है जो बाकी है जो बहिना सा 12,000 टन वो हमी विदेश से मंगाइना सा जैसे कंट्री है जैसे साउथ अफ्रीका इंडिया ये सब पे से हमें ये सब प्याज मंगाने सा अरे प्याज हुआ जाए कि नामी के कुत्ते हो जला गल साल हमें 50 करोड़ रुपया प्याज हुआ के मंगाई लाई सब
0: मतलब हमने न सकब से बोले कि हमने वो तो सुफिजा है प्याज में
1: 600 मिलियन हमें जब देखा था गल साल प्याज मंगाई लाई
0: सा
1: हाँ बहुत बाबा।

0: बहुत, और खाली हम प्याज जो खाई के नहीं मंगाई ना सा, और जो प्याज है जो तारल प्याज
1: जी
0: जो हम बिरयानी में डाली ना सा जो बनी ना सा जो फ्री है देव से मंगाई ना सा।
1: तो जैसे बोले थो जो प्याज हमने ढेर मंगाए ला सा बाहर से, तो हमने लगे जो पैदावार होला वो लोकल वाइते है इब्रिड है कौन सी है?
0: नहीं तो जब देख बता लोकल जब मोरिस में हम दो तरह के प्याज के वाइते प्रांते कहीं ना से।
1: अच्छा।
0: दो तरह के एक वह जो हमी जो फोजे कहीं ना से जो हमी के बीज है लोकल, जैसे वाइते जो टुपी है, जैसे वाइते वेरोनिक है, जैसे वाइते बेलारोज है, जैसे वाइते फ्रांसिया है, और दूसरा तरह के है जो वो इतने इब्रिड है वो हमें विदेश से मंगाई ना सा
1: जी
0: हैं, वो हमें विदेश से मंगाई ना सा। जैसे तालेरवा बोला था नहीं खाली हमें प्याज नहीं मंगाई ना सा, हमें तारल वो प्याज मंगाई ना सा देव से।
1: अच्छा।
0: जो फ्री है जो बनिया सा जो बिरयानी में सिर्वी होला बस मौसम लोग जो पकावे ना सा लोग लेता नहीं आ जाके फ्री करे के लोग डायरेक्ट देव से मंगावेला। और जब देखा था 2023 में हमें आप पे 50 टन जो फ्री मंगाई लेनी सा, और गल साल जो रहा आप 100 टन
1: मतलब कि साल दर साल वो बढ़ाते जाता
0: और जो प्री पे कर लेनी सा अब देखा 2023 में है जो 50 टन रहा वो आप 50 लाख रुपया कुत्ते हो गल
1: बापरे।
0: और 2025 में जब देखा था है जो 100 टन जो बोला था ये हमी के आप 100 लाख रुपया कुत्ते हो गल
1: जी।
0: सोचा था हम के 6 लाख कुछ ना कुछ करे के जब हम के प्रोजेक्शन लुका के चना बढ़ाए के ताकि यही सब जो हम के जो पैसा जो दियो जाता
1: वो हजे रही
0: हजे रही।
1: हाँ तो जितना जना हम के संगे जुड़ल हो वह कुछ हो पूछे की बातें आज प्यार पर प्याज पर प्यार के साथ प्याज पर बतिया था ऐसा। तो हमने संगे जुड़ल रही है 402-402-4002-8085 पर सक बजा कुछ हो पूछे हमने के विशेष मेहमान हवन श्रीमान डोबी फागे दाने से। तो प्याज पर कुछ हो पूछे की बातें हमने के मेहमान हवन जब तो हैजा परी हम तोहर से पूछब जो ट्रेंड ऑफ प्रोडक्शन बा वो कैसे बातें मोरिस
0: जब हम ट्रेंड ऑफ प्रोडक्शन जब देख बा तो हम के प्लीज मैं जब देख बता हई हम इस सब से पूजे करे 6,000 से 7,000 हई हम के मिनिमम और मैक्सिमम
1: है जी जी। तो हमने जानी लाजा मोरिस में सीड जो सेमोंस बात है ढेर जना हमने माटे के मोल कार्यक्रमों कर ले है जब प्याज पर हम देख लीजा ढेर मात्रा में कई जना वो अपन सेमोंस में निकाले ने जब प्रोजेक्शन करे लंजा तो जो स्मॉल ग्रोवर्स हवन जा जो कॉर्पोरेट ग्रोवर्स उन लोग में कौन फर्क पाती?
0: हाँ तब जब स्मॉल ग्रोवर्स आर कॉर्पोरेट में जब देख तो पहला हम बोल सा पहला हम बताया बीच के सेक्टर पर
1: जी
0: जब देख बता जो 6,000 टन जो प्याज हम पोजे कहीं ना सा में हम के आप 1,500 किलो बीज हर साल लगेला हर साल 1,500 किलो बीज। अब एकर में जब देख बता 70% 70% जो वाइते हम सेवी कहीं सा वो विदेश से आवेला विदेश से आवेला और ये हम के आप 3 करोड़ रुपया
1: हो जाला 3 करोड़ रुपया
0: कुत्ते जला सब वाइते जो विदेश से आवेला। वैसे जब देखा था 1 किलो जो वाइते वा ना दे ओके वो 20,000 से 30,000 किलो कुत्ते होला
1: जी।
0: और जो 30% जो रगल बा वो हम ही अपन वाइते लोकल से भी कहीं ना सा।
1: अच्छा।
0: वाइते लोकल जब से भी कहते हैं जब बताए वाइते बिलाहोज बा जो है टुपी बा फ्रांसिया बा तो ये सब कहे है सब कमती है बस ये कारखान मो जो है वो कमती है। अब जो जो विदेश से वाइट वन जो नावेला वो कारखान में जस्ती है तो जो है जो कॉर्पोरेट है जब दिख बा था लोग जन आप प्रे को 60 से 70%
1: जी
0: लोग है विदेश के बीच से भी करेला कहे लोग के चला खान में मिले के ना
1: जी जी
0: जब खान में मिली तो लोग के थोड़ा जस्ती पैसा मिली।
1: तो हमने हमने सब जानी ला जा हम जब बात कर रहे थे सब प्याज के तो हमने जो यो लोकल खुशी रही ला सा तो हमने के तनी सुन बोला हमने जानी ला लाल बाटे हाँ। तनी सुन पियर बाटे एगो उजरवे रहल एगो छोटा छोटा टूपी नियन एकर बारे में तनी सुन
0: बता हाँ, मोरिस में जब देख बा था हमी के पहला जो बहुत रहा उस टूपी रहा जैसे लोकल रैत बहिना सा ये हमी के दादा दादा लोग 100 साल हो गल बातवा हब्बी लगवा मोरिस हाँ जब देख बता सब हई बातवा हमी घास साफ पीछे साफ वहाँ पड़ी और बेलमा पालमा में प्याज है जो बालू के माटी में सब रोपा थल तब कल कल जब देखा दन सा

0: जब हानमो नहीं मिला था उकर, पसे उकर हानमो फे
1: जी
0: जब देख पाते 8 से 10 टन हेक्टर मिलेला, तब भाई किसान भाई लोग के तो लोग के आमदनी थोड़ा कमती मिला था ना, तब नवा वे तो जा कर निशा जैसे रहा हौले पोकर वे वेओनिक जो लागिनो से मंगाई ला निशा हौ वे तेवा उकर आम उकर खानमा जस्ती रहल 12 से 15 टन हेक्टर। अब जब देखवा तो हई सब वे उनके एगो का हस्ते से बहुत है पोता है वो बहुत पंचायत है चाहे जब दलबा तो आँख में से लुट चुकेला
1: जी जी
0: आज बिरयानी के लिए बहुत अच्छा है। अब हाउ होगा तब भाई जब देखा था तब रे से हमें खोज कार करनी सा फागे बार मिनिस्टर बगल से तब ना वहाँ वही तो इभेद धनी सा इभेद का है जस्ती हम के चला पूजा करे के ना बस हम के दिन पर दिन हम के पुपिला शौक बहुत होता तब प्याज के रोक्रो मांग बाते तो हाई सब वही तो नहीं तो जया होल तो हम भी जो समस्या बा जब देखा था इस तरह सब वही थे जो इभेद जब यहाँ दियो के तो एक हमें एक बहुत समस्या होता कि जो वही थे हमें जो फाके के कमौदे करा था वो 4 साल या 5 साल के बाद रेस से मंडली में नहीं मिला था।
1: अच्छा
0: हाँ अगर एगो किसी बहन से एगो पेनी हुई समझा था बस ये विदेशों में पारे जिसके हम ही के देश में विदेशों में उस सब नहीं सकते सा लाखों चीते है सब बीच के भोजे करे के मुँह पर जब देख पाता सांस मोकलीमा होता जब एक कुत्ता हुआ था सांस मोकलीमा उसे को मुटका पानिया हुआ था तो सब बीच के पौताशियों देव में वो सब गाते हो जाता
1: जी
0: तो पारे जैसे मोरिशो में मुँह पर पारे तो देख पाता और लोगों के बहुत जब सिकलते होता अब जब मुँह पर जब सिकलता था उन लोग के फ्री जन बा
1: बढ़ जाला
0: बढ़ जाला तब
1: फ्रेट अब फ्रेट वो सब
0: सब बढ़ जाता सब अब वहाँ से अब जब मोरिस आवा था तब यहाँ पर आर बढ़ रहा था तब हाई को जस्टिल ने पक रहा था कुपोजिक्शन पर
1: तो हाई जा परी जो प्याज के बाते उकर फ्रीवा तो फिक्स बा ना
0: हाँ फिक्स बा हाँ
1: सगरो
0: सगरो फिक्स बा हाँ जन जो बनिया सभी 25 रुपया जो ने लिबर बा हाँ। उसा 50 रुपया किलो
1: जी
0: तो ये तो फिक्स बा 2-3 बजे तक का ही फिक्स बा पसे गवर्नमेंट एगो कम डिफरेंट तरह के हाउ दे था फैसिलिटी दे था
1: सब्सिडी सब
0: हाँ सब्सिडी दे था जिसमें फ्रीवा फिक्स है जिसमें जो हम जो हाउ लोग बा कंसुमेटर लोग बा लोग के उतना
1: मुश्किल सब नहीं हुई जी सब कोई की फैसिलिटी हो जाए सब की
0: फैसिलिटी ही
1: तो दोबी जी हमने के बतावा है जा परी मोरिस में जैसे बोला पेची साहब ग्रां साहब हमने गए रैली सा थ्रू दो दूस और मोरिस में कहाँ कहाँ परी जो प्याज के ऊपर रुपाई होगा
0: हाँ तो हम भी जब देख बा जैसे हम के प्याज के सेक्टर इवोल्यू होता हम जो छोटा किसान बा लोग के जन पॉपुलेशन बा किसे बोला नंबर ऑफ किसान उगर बगल जमीनिया होता अर्जुन कॉर्पोरेट बा और लोग टेक ओवर करा था
1: जब कॉर्पोरेट की बात करे तो मतलब जो बड़का बड़का जो उपाय
0: हाँ जैसे बा सेंट एंटोन बा जैसे मेजिन बा जैसे तेगा बा जैसे बेलेर शुगर स्टेट बा उन लोग के जस्ती लोग हाउ करता का है बस वो लोग सब चीज मैकेनिजे करेगा
1: और आजकल तो मैडव काम करवा के प्रॉब्लम
0: जब देख बा प्याज के जब एको हाउ करता एको रोपाई करता देखा मैं बहुत मैदेव लगेला जस्ट सेतु छोटा किसान लोग के पहला बार प्याज सिम करे के अब जो ट्रांसप्लांटे करे ना जवाइया हाउ में जस्ती प्याज मैदेव लगेला और जब रिकुलते वो करबा तो जस्ती मैदेव लगेला पाकों जब देखबा कॉर्पोरेट लिख के तो लोग सेमी जगह करेला
1: जी
0: जब मशीन से लोग सेमे कर देलक तो उन लोग के मैदेव नहीं चाहला ट्रांसप्लांटे करे के जिरेक रिकोल्ट में चालन सा तो है जो मैदेव जो ट्रांसप्लांटेशन में कुतला तो लोग के कमती हो जाला और जब रहला फोंजिसिड डाले के घास के दवाई डाले के तो सब ट्रैक्टर से डाले रहन सा वहाँ पर
1: आजकल टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे ऐसा इनोवेशन ढेर
0: ढेर बा
1: जी तो हमने संगे जुड़ल रहिया हमने वापस आप जा एगो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद तो हमने के संगे जुड़ल हवा आज प्याज पर बतिया था ऐसा

0: तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा कार्यक्रम के संगे हमने संगे जुड़ल हुआ तो हूँ। जितना जना अभी रसोई में हवन जा सकेला खाना वो सब बनावत हुआ सब कोई के बोको आश प्याज के इस्तेमाल करत हुआ। अब जानना प्याज के कितना हमने इस्तेमाल करी लाजा कितना मंगाए लाजा कितना पोजुशो हजा परी होला। और दोबी जी हमने जब बात करे थे जा कोनो चीज के रुपाई से आगे हमने अब जानत है जा जो प्याज बाते ओकर बिया बाते ओकर खितमा होला ओकर खितमा होला। हमने बात करब जा जो चैलेंजर्स पर ओकर से आगे जब हमने बोलब जा जन खितमा होला हॉट वाटर ट्रीटमेंट होला तो निमन से जन सिमोस बाती जन बिया बा ओ निमन से ओकर रुपाई होला और रोगनमा वो अच्छा रहेला।
1: हाँ तो जब देख बार जब जन बोले सा हॉट वाटर ट्रीटमेंट जन 50 डिग्री और 20 मिनट हमें सर्वी करना सा हर प्याज के ओके ट्रीटे करे के तो एकर में ढेर बीमारी है ओके ओकर नाश हो जाला। जब नाश हो जाला जब हम सब बीजवन सेमे करबा तो निमन ओकर फसल होला
0: जी
1: कर गान में वो मौत होला क्या है पसे जब देख बता एगो बीज एगो जवाइयों देवेला
0: जी
1: जब हवी बीजवा में बीमारी रही
0: तो सगरो फैल जाला
1: तो सगरो फैल

0: जला ता हॉट वाटर ट्रीटमेंट बा है सब बीमारी वन के कमती करेला नहीं बताई 100% होला
1: जी
0: सिर्फ आप पे 80% सब बीमारी वन के निकाल देवेला तब हमी के जो खेत में एक सबके अनुभव होते हो।
1: अच्छा हमें एगो चीज बोल ले हुआ जो माला दी उस सब बातें हमने जानी ला जा जब देख ली जा कारो में गए ली सा ढेर जो खेतीहर हवन जब लौटते हवन जो वो आजकल दुगो बीमारी से वो लोग सामना करत हवन जा जब प्याज के बात करत है जा तो और कौन कौन चैलेंजर्स जो बातें प्याज के सकते हैं वो फास करता।
0: हाँ तो पहला चुनौती जो हमें देखा था इसे हबी जो फास करता है इसा वो बीज जब बीज में नहीं रही तो प्याज नहीं रही। अब जब बीज के जब देखा सकर सेक्टर जैसे तलेरवा बोलनी 70% हमें विदेश मंगाई ना सा तो हमी आर जब देखा समी के वो थे लोकल ये सब बीमारी के संकट संकट भावकर जैसे बात ट्विस्टर डिजीज जैसे बात स्टेमफिलियम तो जब हबी जब देखा था इसे फारे एगो सोल्यूशन देख ले बा है ट्विस्टर डिजीज के जैसे गत देख लें इसे माटी के मोल में हमार कोलेग रहा वाली वो है बताइला कैसे सकब से के कंट्रोल करे तो हबी सकब से हमी बीज जो बा सकब से प्रोजेक्ट करे अब जो वो इतने बा हमी के लोकल जैसे बा जो टूपी जो बेलारूस जो फ्रांसिया देखकर बीज सकब से जस्ती निकाले और जो नवा वो इतने जो अभी फारे जो रिकमेंड करे अभी तो कुल बीज सकब से उगमोते करे तब सकब समी के प्रोजेक्शन होते करे
1: जी माने कि फारे के जो रिसर्च जो जैसे बोला था वो ये सब के आइडेंटिफाई करा था।
0: हां तो बस खाली हम नहीं हमी के डिफरेंस डिवीजन है फारे में।
1: अच्छा
0: जैसे बा कैसे पैथोलॉजी पैथोलॉजी जो हमी के भाई वाली वो मलादी पर काम करेला अब जैसे बा एंटोमोलॉजी वो सब कीड़ा पर काम करेलन सा बस के प्याज में दो को कीड़ा बहुत नाश करेला
1: जी
0: एगो है थ्रिप्स एगो है लीफ माइंडर तो हयु सब के हमी के जो भाई एंटोमोलॉजी में वन सा वो लोग इस सब पर खोज काज कर रहे थे सा
1: तो फाखे दने से कौन जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स वो आइडेंटिफाई जैसे बोला था वह और कैसे इम्प्लीमेंटे कर रहा था वह।
0: हाँ तो जैसे बोला था नहीं अब जब देख बा बीच के ना जब देख बा बीच के तो हमार जो डिविजन एगोनॉमी तो एक में दो गो रिसर्च प्रोजेक्ट हम आइडेंटिफाई कर लें सा और एक पर काम कर रहे सा जिसने सा खाते में जिसवीत से अभी ले जब जिसने सा खाते में जिसवीत ओकर है जो पहला जो प्रोजेक्ट है वो है हमी डेवलपे करते सर नवा वो थे एगो प्रोग्राम के ख्वाजमो परे जो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट बनना सा और एगो दूसर उखड़े में एगो दूसर पहुँची है हमें विदेश से वो थे ओपी मंगाईना सा
1: ओपी
0: मतलब ओपन पोलिनेटेड जेकर बीज सकब से हमी मोरिस में निकाले जो वो थे हाइब्रिड नहीं है वो थे ओपी एकर बीज सकब से हमी निकाले हाइब्रिड के बीज नहीं सकब से निकाले
1: तो कई जना सकेला नहीं समझे तो वन जैसे बोले तो ओपन पोलिनेटेड जो हाइब्रिड वो बा ओकर मतलब कहा खाली बाहर से मंगावल गल बात है कि कोनो मीनिंग बा डेफिनेशन
0: ना तो हवे जैसे बोला था प्याज के दो तरह के है एगो है ओपी ओपी प्याज जेकर बीज सकब से निकाले
1: जी
0: अब देओ में देओ से जो वायतवन आवेला वह वायते हाइब्रिड ओकर जब रेस इफेक्ट में जाओ प्याज वा प्लांटे करब से ना तो ओकर बिया नहीं
1: सकब अच्छा
0: नहीं सकब सकर बिया निकाले पसे ओ प्याज वा नहीं है फुलाई कबो
1: तो मोरिस में जितना हमने रोपाई करत है सब प्याज के वो जितना हमने जैसे बोला था रोपाई करत हुआ प्रोजेक्शन बाते तो ओकर जो प्याज वा बाते जो बल्ब बाते जो बीज बाते वो नहीं सकल जाए फोपाशे करे है जे।
0: हाँ सकब से करे तो हवी बोला थे ना तो हई तो फागे खोज करा था नहीं कर पर हमी के जो विदेश से ओपी वैरायटी जो मंगावा था ऐसा तो हई सब के रिसर्च करते जा इसके हई सब वॉइते वन पर देव में सब वॉइते वन पोजे और बा तो हई सब मोरिस में आन के
1: अदाप्ते जैसे हो
0: जिससे हाँ जैसे बोला तो चाहिए अदाप्ते करे के मोरिस में अब चाहिए देखे के इसकी हई हई वॉइते वा बिलमो में सकता हो कि लाशुमिया में सकी हो
1: तो मोरिस में जैसे बोले हो गांव साहब पे जी साहब कहाँ कहाँ पर प्याज के जस्ती पैदावार रुपाई होला।
0: हाँ जब देखबा तो प्याज के जब देखबा तो वो इतने जो बेलारूस जो टूपी ये सब प्याज हमी बालू बालू में प्लांटे कहीं ना सा जैसे बा रेजियन बेलमा पालमा टू दे दूस जैसे बा पेची साहब घंस साहब अब जब देखबा तो दूसर एक रेजियन बा लाशोमिया लाशोमिया वहाँ पर माटिया अब वहाँ पर सकबा जैसे वो इतने फ्रांसिया और जस्ती फोरा जैसे वो इब्रिदा रानमो जस्ती

0: फोरा पस माटी के बिहाव में उकर घान में जस्ती होला पौकों बालू में उकर में उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं है ना तो उकर में जब भाई सब प्लांटिंग कर बता कर अगर पोजिशन मैक्सिमम नहीं मिलेला तो हवी खातिर हाई सब वॉइट वन प्लांटिंग नहीं ऐसा पस हाई सब वॉइट वन किसी तरह तभी बोलनी 8 से 10 टन हेक्टर तो सेकेंड सब अपनी पूजा करे अब देख जैसे बाप प्लेन सोफी लामारी सेंट एंटोन हई सब कॉर्पोरेट लोग ये लोग हई सब वॉइटे दूसरा वॉइटे प्लांटे कर जैसे वॉइटे हिब्रिड ça veut dire जोन जोन रीजन बा प्लांटे होला ça veut dire मी बा बिल्मा जहाँ पर बा लुके ला शुमियर बा प्लेन सोफी बा लामारी बा आर हई जन कॉर्पोरेट लोग बा जैसे बा मिजिन हई जैसे बा सेंट एंटोन तेरा जोन लेनो में हा सुद में जैसे बिले
1: तो अभी हमने जैसे बोलत रहला अभी जो बीमारी उस बातें ट्विस्टर उस बातें अटके कर रहता हमने हाँ। के प्याज के सीमेंस के तो फागे दाने से कौन सोल्यूशन कौन कौन कौन सोल्यूशन बातें इस सब के सैनिटेशन बातें कौन चाहेला करे के
0: हाँ जैसे देख बात है सब जैसे ट्विस्टर डिजीज है जैसे ट्विस्टर डिजीज है एक एक कंडीशन है जब वो बीमारी वाला आवेला
1: मतलब
0: जैसे देख बात अगर एक टॉपेगाचिया चला अगर एक सेटेन टॉपेगाचिया और एक सेटेन इमिजिटे चला अगर मैं और जब प्लांटे कर पाओ प्रोजेक्शन में और जो इमिजिटे हुआ और हो पनिया इफेक्ट में जब पनिया आल तो इमिजिटे हुआ प्री होल और टॉपेगाचिया हुआ बाहर तब हो मलेरिया इवॉल्व होला
1: तो प्याज के जब रोपाई होला ओकर इरीगेशन कैसे होला
0: हाँ तो इरीगेशन हब भी जैसे बा तो जैसे बा हब जैसे बड़ा चाचा चाची लोग तो लोग ऑनशेन वे मेथड सर्वी करते हैं सा
1: मतलब
0: है जो ना स्प्रिंकलर
1: अच्छा जो ओवरहेड चक चक जैसे चक चक बोली लाता
0: है चक चक बोलना सा और जो कोऑपरेट वो लोग हा वो लोग को चक चक सर्वी करेला पूर्ता हबी जो हबी जो हमी फारे के कमांडे करते हैं सा वो है ड्रिप इरिगेशन
1: गुट
0: कहे बस ये वो पत्ता के अफेक्ट नहीं करेला वो डायरेक्ट रासिन
1: में जाला
0: हाँ कर पनिया जो बा वो रासिन में जाला डायरेक्ट तो हाई सेलमोट रासिन कुत्ती होला
1: भगाए खातिर हम जाने से थ्राप सब बातें कौन सी कौन सी इस्तेमाल होला
0: थ्राप सिर भी होला कीड़ा लोग के बीमारी के है सब हम के चला सैनिटाइजेशन करे के सब जगह हम के जो मैनेजमेंट जो बड़ी ना सा कल्चरल प्रैक्टिस जो बड़ी ना सा है चला हम के नियम से सिर्फ करे के जैसे बा प्लांटे करा था ऐसा अब जब देख बा उकर मैं एगो प्लां बीमार हो गल तो के चला नहीं आता न करे के नेट प्लां वा बीमार हुई तब निकाले के
1: जब हमने के बोला जब है दुगो बीमारी वा अटैक करे था वंस कौन सी के अटैक करे था खाली बिया सीमेंस पत्ता
0: सब कौन सी सब है जो स्टेम फिलिया मा ट्विस्टर डिजीज है ये दोनों का अफेक्ट करेला बीजों के प्लांटेशन में और जो बल्बों के प्लांटेशन में दोनों का अफेक्ट करेला सो बीज के कर जो यहाँ पर बीजवा होला और स्टेम हो के बल्बों के
1: अच्छा हम कहे कि हमने देख लीजा कारों में कई जो प्लांटे हवन जाओ वो जो लथरा बातें प्लास्टिक ब्लू वो लोग डले हवन जाओ गो लागरेस उस सब में डाल के उस सब वो जो मुस्टिक जो बेबेटवा बातें वो में जाके चिपक जाना
0: सा तो जो बा जैसे तलेर बा बोला था नहीं प्याज के दो गो कीड़ा बहुत नुकसान करेला वो है थ्रिप्स
1: जी
0: और लीफ माइनर जो बहिना सा तो है जो ब्लू कलर के ट्रैप बोला तो ये थ्रिप्स के आता करेला
1: जी
0: तो जन ट्रिप्सन अपन कारों में बाहर कोना में डाल के तब चला कर पॉपुलेशन जिमिनिया होला बस यह जन ट्रिप्सन बहुत जीव से कंट्रोल कर रहे बस यह सब ट्रिप्सन जब देख बता है प्याज के है प्लां के का लिके में रहला का लिके भीतरे बस प्याज जब देख बता प्याज में ढेर पत्ता है जब ट्रिप्सन जब भीतरे रहला जब एप्लीकेशन का इना सफ हूँ जिसित के तो थोड़ा जिप्सिल वाला भीतरे जाए के जब भीतरे जब जिप्सिल वाला जाए के क्योंकि बहुत कंट्रोल करेंगे कर 100% एफिकेस नहीं होला
1: तो जब ड्रिप इरिगेशन करत हुआ काहे कि हमने जानी ला जब ड्रिप इरिगेशन करत हुआ कोनो चीज ओ में डाला जाला जो जो दवाई कुछ हो उन लोग गासिनवा के और मजबूत सब बना के तब कुछ हो डाला जाला ओ में
0: ड्रिप इरिगेशन से कब्स को में फर्टिलाइजर डाले फर्टिलाइजर सब डाले सिर्फ हाई फंगिसाइड सब नहीं
1: ना
0: फंगिसाइड सब नहीं खाली ए कर फर्टिलाइजर जब मैं कर गासिन में जाए तो जस्ती बड़ा हो
1: अच्छा हमने के बोला अब जब प्याज के रोपाई होला वो ओकर शुरुआत कैसे होला बिया से हमने जाने ला जा और तरीका बातें
0: हाँ जब देख बात दो तरह के सकब से हमी प्याज के रोपाई करे। पहला है बीज, बीज और दूसरा

0: ha jen hami bo nasa zwanyo maos. Jen po chia bo ni nasa.
1: Acha.
0: Explica in na. Da bit se sakap sa oke ese kisan log usaki apan platform me se me kare. Swa bit sa ki sitre me se me kare. Ar jen ba ko poret log masin se me kare la. Je se bonisa se moi. Se mi direct. Ça veut dire direct jala ou
1: Matieme.
0: Ka platform ban gal. वो खाली अगर डिस्टेंस में फेंक मुझे सेंक सौंच में इतने के पिया चहला तो उससे
1: यूनिफॉर्म रहेगा
0: यूनिफॉर्म करेगा सिमे कर ले जाता हूँ सो आपका मैं कौन लाभ होता है हाँ ये जो ट्रांसप्लांटेशन जो छोटा किसान लोग है उखर में नहीं है सब जब ऊब जब प्लोमा जब बीज जब ढूंग गल माटी में तो वो एक एक कुत वो जब बढ़ ले जाता है मेरे को शोक लगा था ना अब जब शोक लगा था तो रे से परी नवा हासिन भी गए कबार के परे ला ट्रांसप्लांटे
1: दिरांजे कर रहे थे
0: हाँ दिरांजे कर रहे थे पर कि हाउ में नहीं हाउ में जब देख पाता
1: सीधा
0: हो समझे आज उकर जब देख पाता कर रिकॉल एको 15 दिन से 20 दिन कमती लगेला हाई जन ट्रांसप्लांटेशन जब करा था ओके दो समय लगेला ओके रेस अडॉप्ट हो के रेस से अगर मैं खासिन भी है के हाउ में नहीं हाउ में समझे जस्ती हाली ओके पूजा करते हैं सर
1: तो एगो प्याज कितना वक्त ले वाला उपारे हो के
0: सवे जब देखबा था जैसे बोलते हैं एगो प्याज चार से पांच महीना लगे
1: बीज वो और वो जो
0: नहीं अब जब बीज के हाई बीज के बोलते हैं अब जब बोलते हैं ज्वायमॉस जो पूछिया ई कुछ वाला फेक मजा हमके गल साल पूजा करे के बाद बिल तो हाई साल 2022 में हमी उत महीना में बीज से मैं करब सा बीज से मैं करब सा तीन महीना के बाद छोटा छोटा बिल्प फो में होला ओके बढ़िया सा पूछिया जन स्वायो मॉस बस जब बाजार में मार्केट में जाइबा तो देख पता कहूँ बेचाला बोला सा स्वायो मॉस बेचाता
1: हाँ
0: एगो चिपाके में दस दस गो स्वा पंद्रह गो बाकी वह बेचारा
1: हाउ जन स्वायो मॉस उस सकप से लेके रुपाई करे
0: हाँ तब वो सकप सा फेक मजा वो नवंबर महीना में पारे होगा तो के रखा अब सा
1: तब भरती भरी प्याज के पोजुक्शन होला रुपाई होला
0: नहीं
1: प्याज सीजन हा
0: कर सीजन हा कर सीजन तो हुई खाते बात है जब नवंबर में हो प्याज वाला जन जुआ या मौसम कबार देनी सा तब वो मौसम में ओके प्लांटे कर अब सा
1: चाहिए सुखाई के
0: हाँ तो हुई सब बस वाला घरे कैसे हो कैसे आगे हो मैं रखा तनी सा मंचान में लाओ
1: हाँ हाँ
0: बांध के टांग देवता नि� तब मौस महीना में बस मौसम महीना में थोड़ा थोड़ा पानी आवेला मोटा पानी तो सकाप से थोड़ा सुन देखा ले करे ना फिर मौस ले ओके हाउ पुछवन प्लांटे कर अब सा तो एक में दो गोला मौत आ सा पुछिया के स्वा ओके 40 दिन के बाद ओके लाख के ज्वाइयों सकाप से सेवी करे बस लाख के ज्वाइयों सेवी करें यहाँ सा हमी के वो गाय सब में डाले के स्वा 40 दिन के बाद एगो फसल मिल गल किसान लोग के अब जब देखबा जे बिल्प करे खोजा था तो वो आर तीन महीना में फेक मजे अप्रैल में से मैं कर प्लांटे करनी था अप्रैल में जून जुलियत
1: जी
0: जुलियत में प्याज मिले लगी तो कुछ ही बा हमी के एको जुसर एको जो हमी प्याज बीच से सितंबर महीना में शुरू करने से पूजा करेंगे तो है जस्ती बुनेर से कब से पूजा करेंगे जुलाई अगस्त में सब सब पूजा करे तो ये गोला वंताज रही कि हमी के पोजिक्शन लोकल सकब सा है पैयो
1: तो हमी हमने वो उत्तर फिनी हो जा तो हमी लेता बा हमी रुपाई हो आता
0: हाँ तो गल साल दुन रहल एको मोटका पानी आला नवंबर महीना
1: तो कैसे अडॉप्ट करे न सका कि जैसे हमने बोला था अडॉप्टेशन बीच गाशो सब होला तो हमने के जो छोटा खेती हर सब भगवान जा वो लोग कैसे अडॉप्ट हुआ सब कहे कि आजकल हमने शौच मक्लिमाचिक की बात कर रहे थे अभी देखा कोनो दिन इतना गरम दो तीन दिन से इतना ठंडा पड़ा था तो कोनो फर्क पड़ेला जो सिमांस के जो पोजुशन होला रुपाई होला
0: बहुत से बहुत बहुत फर्क करेला पसे प्याज जब देखबा तो कर सीजन है ना सीजन का है बोलना सा ओके चाहेला है जो प्लावा के बड़े के विस्ताचिव जो नहीं बोलना सा ओके चाहेला विंटर चाहेला ओके तब उकर में जस्ती पत्ता हुई जब जस्ती पत्ता हुई तब वहाँ उत में अभी कैसे बाहर सा उत सेक्टम में दिन बढ़ता ना
1: जी
0: और थोड़ा गर्म हो कर
1: रहा हाँ।
0: जब भाई गर्म आज जन है दिन वहाँ बढ़ता तो प्याज लाहो से दिशानो लानी चाहिए
1: लाहो से दिशानो
0: लाहो से सब जाओ पतवा हाँ। से जन खाई के बाव कर मैं वो सब नीचे दिशानो ला तब बाव प्याज वा फोमे होला
1: अच्छा
0: हाँ तब देख बस सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर में तब हम प्रोजेक्शन लोकल करना सा
1: जी तब बहुत बहुत धन्यवाद फिर उसे हमने संगे जुड़ा हुआ एक छोटा सा

हमने के जोनी मोरिस हाइजा पर कितना हरियाली बाटे त सबके बो कुआज हमने बोला था सर जितना चना अभी अपन खेत कारू में काम कर रहे थे वजह हाँ आज प्याज पर बतिया था जा तो दोबी जी हम

0: तबिया तुहरा से पूछत रली कि फागे जोन बाते कौन कौन रिसर्च प्रोजेक्ट वो आइडेंटिफाई कर ले रहल कर ले बाते और वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहता।
1: हाँ तो जैसे पहला कुछ बोलनी पहला जोन प्रोजेक्ट रहल वो रहल हम नवा वे ओपी जोन देव से मंगेल ओपन पोलिनेटर जो बीच से कब से मोरिस में निकाले और दूसर प्रोजेक्ट है हमी के चाहना हमेशा एगो दूसर प्रोजेक्ट एंथोजिया और इवैल्यूएशन जोन विदेश से मंगाना सा चाहना हमेशा एगो बैलेंस रखे के दो तरह के ओपी और इत के मोरिस में कहे ही बोला था फैक मजा जब मोरिस में है मलदिया आवता जैसे ट्विस्ट डिजीज एंथ्राक्नोज स्टेम्फिलियम तो बीच के पोजिशन के अगर पोजिशन जिमिनी उथल तो हमें कुछ पर दिपान रही सा
0: बाहर से
1: ना अब जब बाहर से वहाँ पर जब एगो प्रॉब्लम होता तो हमी के चलना अपन बीच उगमौते करे के तो हमेशा है दोनों वैरायटी वा जो बात तरह के वैरायटी वा में चलना हमेशा एगो बैलेंस रखे के स्वा एगो चलना हमी के एगो बफर स्टॉक जैसे बोना सा चलना रखे के वो बफर स्टॉक पे जब प्याज के जब देख पा तो मैक्सिमम दो साल सब सब करे के तब वो जमीनाशन अफेक्टिव होला तो है जो हमी के बीच जो पूजा के यहाँ से लोकल उस सब से दो बरिस के बफर स्टॉक सब से रखे सब जैसे फैक मजा हमें वही थे भौसिया
0: जी
1: प्लाते करके पूजा करते हैं सब तो कर बीच से सब से जस्ती बीच पूजा करे कैसे हब्बी लापा हब्बी है बरिस जब देखबा तो है पूजिक्षो भौसिया गत साल के है।
0: अच्छा
1: हाँ तो है हब्बी जो बा हब्बी और जमीनाशन जब देखनी सर तला वो कतु मैं पूछो बा तो सब से गत साल के लिए वो सब रखे बहुकों जन विदेश से वायते जो होता हमी के रहल चार पाँच साल एगो वायते रहा वो बैक्स वायते हुआ थोड़ा बोल रहा सात से सत्तर टन हेक्टर प्याज करे हमी कॉर्पोरेट में मिलल तो हम सब वायते जब देखो तो चार पाँच साल के बाद नहीं मिला था।
0: अच्छा
1: तब हमी के पोजिशन जिम नहीं होता तब रे से पड़ा था कैसे हम बोलनी है हमारे देश में पहुंचे हुआ मैं रे से परेला हमी के नवा वायते मंगाए के तो है सब कैसे हमी के सहायता करे लगा ये सब हमी के लोकल सीड कंपनीज।
0: अच्छा
1: जैसे बा रोजेफे देव जैसे बा ब्लैक कैम्प गोल्डन वाली ग्रीन वॉल ये सब कौन सी है वो लोग वहाँ पर कैसे है वहाँ पर है जो बीच करेल सब कंपनी कैसे है सकाता साउथ अफ्रीक में स्टॉकियर्स है साउथ अफ्रीक में वो कल लोकल रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर।
0: अच्छा
1: तो हमी के जस्ती फैसिलिटी रहला
0: जी
1: वो लोग देवेला हमी के बीच तो हमी बीच वन दिवाली करीना सा अपन स्टाशों में जब स्टाशों में देखी ना सा ये सब वायते वन निमन हो रहा तो ओके किसान भाई लोग यहाँ जाए ना सा
0: जी
1: आज जो पहला प्रोजेक्ट जो बतनी सा वो रहल वायते ओपी ओपी हमी के चला बहुत बहुत बहुत एक में ले पोता हूँ जाने के कहे बस हमी के चला अपन बीच प्रोजेक्ट करे के मोरिस में
0: इतने सच्चे बात बोला था।
1: हाँ ताकि हमी के जब देखबा कैसे बोला था नहीं ना चार पाँच साल के बाद हम सब नहीं मिलेला
0: नहीं मिलेला
1: तो हमी के जो बा चला हमी के वायते वर के जस्ती
0: और काम हुआ था अभी रिसर्च हुआ
1: था हुआ था तो एकर में दो गो वायते देजा रिकमेंड कर पा बेलारूस और फ्रांस आर हब्बी जो बा 2015 में हमी चार गो वायते ओपी मंगाए जाए सा हाई एगो वर्ल्ड वाइड सेंटर से इवी और देसी जो बहिना सा ये एगो सेंटर है जहाँ पर सब बीज सब सब्जी के वहाँ फिस्तो के होला।
0: अच्छा
1: तो हमी वहाँ पर एगो रिक्वेस्ट करनी सा हमी बनी सा हमी मोरिस में हर तरह तरह के कास्ते सीखबा तब वो वहाँ पर विश्वास गए करके बोला देखा हई सब वायते उनके कास्ते सुन बा हमी तो के दिवा थी सा तो जाने ला हमें कितना मिलेगा सिर्फ 3 ग्राम मिलेगा
0: है जी
1: 3 ग्राम से मास अब एक जब 3 ग्राम से मास बताइए
0: सर प्रोपगेशन अब कितना सकेला हुई।
1: हाँ तब 3 ग्राम ई 750 से मास बीज मिलेगा तो ई पहला साल हमी के बड़ा सीथ्रे में सेमे करेंगे तब सीथ्रे में सेमे करके तब अगर बिल पहुंचा कर आपसा अब गत साल जो नाई तब सब बिलबम लेकर कर बीज
0: जी
1: कर बीज पहुंचे कर आपसा ऐसे करत करत जेनेगेशन से बया सा एगो जेनेगेशन 2 साल लगेगा पहला कुछ चाहना होकर बल्ब पहुंचे करे के देजेम खुद होकर बीज हो करे के तब ऐसे करत करत तभी हमी जुन बा 4 गो वायते हुआ में एगो वायते हुआ के वो अधपते हुआ मरीज में ओकर खान में जस्ती बा ओकर फूल कमती फुलाला सकेला हमी जस्ती बुनेर प्लाते करे ओके

0: Arvaiti wa se sagap sami pucha kare ukar se sagap sa lakis vayon kare ukar se sagap sa bilp kare pucha se are kare go kaste sikha kar stuhabilite stuhabilite jo banya sa bahut acha ba
1: ji
0: tab sagap sa ke jasti din rakhe fek majam in november mahina mein ukhe pujya kani sa ukhe sagap sa 4 mahina rakhe jab 4 mahina rakha tha insa tab dabra tha na december janvier fevrier ta sab le pourquoi ami vide se mangaina sa
1: ji
0: तो जमी के स्टोरिटे जब आई वही मैंने कहा छपा तो नहीं परी देव से मंगाए के अब जब देव से नहीं मंगावते हैं सा तो हमी के जन सैक्सो मिलियो जन जाता बोला था
1: हुआ बातें वो कमती हो जाए
0: कमती हो जाए तो हाई दिशा में हमी जस्ती लौफा डालते हैं जैसे वही थे ओपी वन पर
1: अच्छा ये तो बढ़िया बार बातें तो हमने सकब से बोले कि हाँ हमने की जो सकते प्याज बातें जोयो बातें वो निमन रास्ता पर चले था रिसर्च होते जात बातें और वो जैसे बोले ला जा गौरमा मिली कुछ और बढ़ी और हमने के पैसा वो हमने लगे रहे तो अब हमने के तन सुन जल्दी जल्दी बतावा कहे कि वक्त जो बातें वो भागते जाता और फागे दने से जो स्कीम्स बातें आई एम बी दने से सरकार दने से कौन कौन मदद मिला था सबको
0: बड़ी जो बा सरकार बगल से एगो इस एगो वन ऑफ ग्रांट पा 10,000 रुपया मिला था बीघा पर जोन जोन किसान प्याज पनौते कर ले बा
1: अच्छा
0: हाँ हाई बा पहला और दूसरा बा जैसे बा फाहे जो न प्रॉब्लम रही हमी हाई से यहाँ पर को न डिविजन रही पैथोलॉजी रही ऑटोमोलॉजी रही नया पोत को न प्रॉब्लम रही हमी यहाँ पर हाई सा आर एगो कमिटी है जो कमिटी बनना से नेशनल यूनियन एंड गॉलिक कमिटी
1: अच्छा
0: यो नहीं वो नेशनल है ये हर महीना हर 3 महीना पर हम इस चीज होना सा एक मैं सब रिप्रेजेंटेंट हूँ कर कोपोहित के कर चिपलाते है के कर आई एम बी बा कर मैं हम ही ऐसा फागे ऐसा एस पी डब्ल्यू एफ बा और मिनिस्टर मिनिस्टर वो बा तो एक मैं सब जो समस्या होला ओके डिस्कट करना सा और जो फोर प्राइस सब जो डिस्कट होला तो हई कमिटी में डिस्कट होला
1: अच्छा तो अभी ढेर जाना तो हो रहा दुखत हुआ सुनत हुआ वो लोग की कौन चीज बोल कितना जाना अभी वो लोग के त्राका हो गल बाती हाँ ये सब बीमारी के संगे जुझत हुआ जा तो लोग की कौन कौन से ही देवा कौन कौन कौन कैसे वो लोग के सहराना देवा
0: हाँ आर एगो चीज भुला के नहीं बोले के अभी जो बा प्याज बीज फोसिया के
1: जी
0: उसी पर 2,500 रुपया किलो में मिला था
1: अच्छा
0: तो सगबा सब प्याजवा लेके सगब सर रखे गत साल से आप सब कैसे में करे स्वा ओकर हब्बी लिपोक बा हब्बी उत महीना में है ऐसा सगप सा ओकर से पूछिया पूछिया करे
1: ओ लोग के जितना जना अभी तो हो रहा सुनत हुआ धला ओ लोग ला ओ लोग संगे कर प्रत्या कुछ होने बातें ओ लोगों संगे
0: हाँ सकी सकिया के किने आईएमबी में बिचाता है सब बीचवान सकिया के किने
1: जी
0: अर्जुन बुलत है फागे से हर मेसा चलाया हो करे के हम काम करे थे ऐसा इसे था बोलने अभी नवा नवा वो थे ओपी जो नाव था आर एगो वो थे ओपी अभी जो अन्य ऐसा वो नीला येलो
1: अच्छा
0: हाँ पीला पीला पीला सॉरी
1: पीला जो था जो नीला वाले जो प्याज वाले कैसे रही
0: नहीं पीला पीला पीला हाँ वो आंधे ना ऐसा वो हमें 2023 में तो जा करना ऐसा तो कुरो पर अभी काम होता तो सवे अब जब देख पाता पीला प्याज के रही लाल प्याज रही पीला का है जो सलाद में से भी होला
1: अच्छा एगो जो उजर रहल वो तो नहीं लौकेला का है
0: नहीं तो उजर में एगो जहक को नहीं को एगो कन में को
1: बाहर से रहल
0: की है जे बाहर से आवेला वो
1: अच्छा
0: बाहर से आवेला तो हम उजर प्याजों में काम कर लेनी तो कौन प्रॉब्लम होला जब उजर प्याज जब जब रिकोलते करबा तो लाहो जब देखबा तो कुले वे हो जाला
1: वो अच्छा नहीं है
0: वो अच्छा नहीं है
1: आलुओं के बारे में बोला जला जे ओ तनी सु हरियर हरियर हो जाते ने चाहिए
0: ला ने चाह खाई के उला सोते के लिए ने चाह
1: अच्छा
0: तो हाँ भाव जब पिया जामे जब वे वे हो लगे ला तो जब देख पा बाजारों में दल पता वो
1: कहीं से ना बोले उकर गासीन उकर जेम है नहीं वो नहीं है
0: नहीं नहीं
1: नहीं अच्छा तो जाते जाते तोह से एगो अंतिम प्रश्न पूछती ढेर हमनी महिला लोग इस्तेमाल करे जस्ती महिलाओं लोग इस्तेमाल करे रंजा प्याज के वो लोग कंप्लेन करे रंजा हमार प्याज जम गल उजैमे हो गल कैसे चाहिला रखे के जब किन ले ली सब बाजार से कैसे हमने धूप में घामा में डाली ला सब बोल काजे ने काहे बोलल जाला घामा में चाहे ला रखे के हमने के बोला फ्रिज में रखे के घामा में कैसे
0: नहीं तो जब जब देखबा तो प्याज जो विदेश से आवेला तो उस शमफ्वाद में आवेला ना शमफ्वाद में जब आवेला तो जैसे बढ़िया से उकर शमफ्वाद में जाता वहाँ पर ही सब शमफ्वाद में डाला तो प्याज के एक जो बढ़िया से डोमेंसी पीरियड तो डोमेंसी पीरियड वो जब ठंडा में रखबा तो टूट जला तो वही खातिर जब हम प्याज के बीज जब हो

0: kainasa ta isa bilbuan jon ha wo mi chamfrad me la kinasa ta vous nikle la ta domaine supérieur je sais tout est là ta ou jamela
1: ha
0: ta jami ta mi ke facile rahi ta hobi khate jab dekba jab vide se jon ha sab pia jon avela ta sab chamfrad me avela na ba to sab me ta hobi khate rahola ta jon ba mi ke kare ke sakap sa trasun piaj gham me rakhe je me ha je moi ke le temps les
1: trois le
0: temps les ha se moi 100% nahi rahi
1: nahi hum ट्राई कर ली वो काम आवेला
0: हां
1: काम में निमन से तलबा
0: सुख जाए निमन से
1: सुख जाए तो लेता ले विलाज है में के
0: तो है जो नमी के वॉइस थे जो लोकल वन बा ये सब जो वॉइस थे जो नमी है कमोते का सब कर क्वालिटी वे दूसरा
1: तो सब बोले जाय से आगे कि हमने के देश कबो ना कबो सकेला 5 बरिस 10 बरिस में हमने ओतो सुविधा बनब सब प्याज में
0: हाय
1: तो रिसेसवा होते बातें
0: अभी रिसेसवा होते रही से मत तू देपान है हमी के किसान भाई लोग पर जे उन लोग प्लांटे करे सकी तो सकब सही करे सब दीपान हा सब हाँ। किसान और कुपोड़े लोग पर
1: तो जब किसान के बात करे तो हमने के चाचा दादा लोग तो अभी कहाँ हमने के जिने सुलोग ऐतिहासिक से हवन सब
0: नहीं ऐतिहासिक से हवन सब हमने नवा पीढ़ी कहाँ थे से आगे किल्चे में सब तो देख बा खाली सेक्टर फिनांसी में जाते हैं सब तो जब देख बा आगे किल्चे तो चला आगे जे जो करे के चला मॉडर्निजे करे के जैसे बड़ी ना सब वहाँ पर व्हाइट कलर जब बना तो यहाँ पर चला हम आई किल से एगो फासो करे के जब मैं वो व्हाइट कलर जब रही जैसे एगो अपन अपन पोता बे क्या हुआ था तब प्लावा के देखी कैसे बा
1: आज तक टेक्नोलॉजी बातें
0: टेक्नोलॉजी बा कैसे बा ऐसा
1: ड्रोन बातें आजकल बातें
0: हाँ, बाते,
1: कैमरा बातें सब कुछ तो फैसिलिटी बा
0: सब में चला हम के इन्वेस्ट करे के
1: इनोवे हो
0: इनोवे करे के चला तब हम के नवा पीढ़ी लोग ढुकी कर में
1: तो चलो हमने के जन माटी है और मोल हमेशा रही और हमने वही खाए लासा जो हमने पैदावार करी लासा रुपाई करे लासा तो आज के चर्चा कार्यक्रम है जो परिसमाप्त हो गल बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान भेदनंदन दोबी जी आप रिसर्च साइंटिस्ट सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हुआ प्याज पर तो ऐसे रिसर्च करते रहिए और नवा नवा वही थे जब आगे हमने सकब से बोले कि हाँ ये जो प्याजवा बातें है हमने के है खाली हमने के है और का जनी बाद में हमने एक्सपोर्टे कर
0: बस नवंबर में कबो जस्ती हो जाला तो सकब सा मादागास्कर सोलारिन उसा कोनो दे सकब सा
1: तो चाहे ला हो जो पॉजिटिव माइंडसेट वा उ चाहे ला रहे माइंडसेट
0: बस मम्मी के चला हमके जस्ती किसान भाई लोग और कॉर्पोरेट लोग के जस्ती चला लोग
1: चला संगे संगे हाथ में हाथ डाल के हम अपन देश के आगे बढ़ा जा तो आज की चर्चा कार्यक्रम है जी परी समाप्त होगा सबको की बहुत बहुत धन्यवाद दोबी जी तोहरो बहुत ही धन्यवाद नमस्ते शुभ दिन

0: Check your time, it's already 4 p.m. I sent the SMHR. गीता के साथ नमस्कार।
1: नमस्कार गिनिशा, सभी को हमारा नमस्कार। साल की शुरुआत से अब तक हमारी सड़कों पर 103 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। 1500 से ज्यादा वाहन चालकों की अल्को टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 500 चालक ड्रग्स के प्रभाव में पाए गए। इन चिंताजनक आंकड़ों के बीच रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल कल संसद में

पेश किया जाएगा। इस विधेयक में शराब या ड्रग्स के प्रभाव में गाड़ी चलाने से जुड़े मामलों में वाहनों को जब्त करने का प्रावधान है। इनमें रोड रेज यानी सड़क पर गुस्से से आकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने जैसे नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इसके लिए 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और 12 महीने तक की जेल

0: जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। 300 से ज्यादा मॉरिशन कंपनियों ने ट्रेड एंड मार्केटिंग स्कीम का लाभ उठाया है, जिसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड संचालित करता है। इसके तहत कुल 2.2 बिलियन रुपए की राशि वापस की गई है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य मॉरिशस के उद्योगों को अपने उत्पादों के निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी सोच के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने आज सुबह गो एक्सपोर्ट कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं और कंपनियों को अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने और निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। नीलकंठ डलू ने लेबर पार्टी को छोड़ दिया है और अब पुल बेहोंजे के साथ फ्रों मिलिटन प्रोग्रेसिस में शामिल हो गए हैं। वकील का कहना है कि ये फैसला उन्होंने अचानक नहीं लिया, बल्कि पिछले साल से ही कई महीनों तक विचार करने के बाद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर ये फैसला किया है। नीलकंठ डलू ने आज लेबर पार्टी से अपने इस्तीफे को आधिकारिक रूप से घोषित किया। उन्होंने गैम्बलिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के स्वतंत्र बोर्ड सदस्य के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उनका ये दोहरा इस्तीफा उनके राजनीतिक सफर में एक नए मोड़ की शुरुआत है। अब उन्होंने पुल बेहोंशे की नई पार्टी का साथ देने का फैसला किया है। मिथुन चुलन आज रिवियनो की जिला अदालत में पेश हुए। उन पर 3 अस्थायी आरोप लगाए गए हैं, गांजा आयात मामले में शामिल होने, गैरकानूनी तरीके से गोलियां रखने और अपने हथियार लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप। उन्हें 7 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। और विदेशी खबरों में आज तेल की कीमतों में 2% से ज्यादा की तेज बढ़ोतरी हुई। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत फिर से $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। ये बढ़ोतरी तब हुई जब अमेरिकी सेना ने होमुज जलमार्ग में ईरान के लड़ाक द्वीप पर 2 ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया। जुलाई के अंत के बाद ईरान पर अमेरिका का ये पहला हमला है। इसके साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। इकबाल रोड विच एमिल थ्रियोले में 58 साल के 58-year-old के जनाब अशरफ चेदी, जो अशरफ से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात 8:30 उनकी बेगम मिसेस बीबी रुखसाना मुनबहाल के घर इकबाल रोड विच एमिल थ्रियोले से उठाकर गिश्तिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: आपके सितारे
4: सोमवार 31 अगस्त घड़ी मिला लीजिए 4:05। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार। स्वीकार करें आपके सितारे इस प्रोग्राम को लेकर आ चुके हैं हम आपका साथ देने के लिए। उम्मीद करते हैं ये सोमवार का दिन आपका बहुत अच्छे से बीत रहा होगा और अभी से लेकर शाम के 6 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। और आज जो है आपके सितारे इस प्रोग्राम में जो है हम बात करेंगे ऋषिकेश मुखर्जी इनके बारे में। कल 30 नहीं यानी कि जो है 30 सितंबर 1922 को इनका जन्म हुआ था और 27 अगस्त 2006 में ये चल बसे थे। इन्होंने अपने जीवन में अपने करियर के दौरान काफ़ी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें करेंगे, इनके फिल्मों से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। अभी के लिए अनाड़ी फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं।

0: के सितारे।
1: घड़ी मिला लीजिए, सब 4:15 बज रहे हैं और आपके सितारे इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। और आज आपके सितारे इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश मुखर्जी, इनके बारे में और इनकी बनाई हुई एक फिल्म थी चुपके चुपके, जो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। और चुपके चुपके इस फिल्म का ये तराना हो जाए आप सभी के नाम।

0: के सितारे।
1: तो श्रोताओं, आपके सितारे इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश मुखर्जी, इनके बारे में। ऋषिकेश मुखर्जी जो है फिल्म डायरेक्टर, एडिटर और राइटर रह चुके हैं। 4 दशक से भी पहले अपने करियर में इन्होंने काफ़ी ऐसी फिल्में बनाई जो सामाजिक जो है विषय पर आधारित रही। और साथ ही ऋषिकेश मुखर्जी की बात करें तो ये इन्हें प्यार से ऋषिदा के नाम से भी पुकारा जाता था, और इन्हें पायनियर ऑफ द मिडिल सिनेमा ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और अपने करियर के दौरान इन्होंने जो है आर्ट सिनेमा में भी काफ़ी जो है अपना योगदान दिया है, और जीवन के हर पहलुओं को अपने सिनेमा के ज़रिए इन्हें दिखाने का इन्होंने प्रयास किया। चलिए अभी के लिए आनंद फिल्म का ये तराना हो जाए। जी हाँ, आनंद इस फिल्म को भी इन्होंने ही बनाई थी। और आनंद ये फिल्म कितनी पॉपुलर हुई थी, अपने आप में फिल्म ही कह देती है। तो चलिए आनंद फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए हो जाए।

चले आपके सितारे इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं और आज ऋषिकेश मुखर्जी इनके बारे में हम बात कर रहे हैं और ऋषिकेश जी के बारे में बात करें तो इनका नाम पूरा ऋषिकेश

मुखर्जी है, प्यार से इन्हें ऋषि जा बुलाया करते थे। और इनके जीवन की बात करें तो ऐसे इन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है और मैथ्स और साइंस ये सिखाया करते थे फिल्मों में आने के पहले। बाद में इन्होंने थिएटर ज्वाइन किया और फिर कोलकाता में ये फिल्म के एडिटर बने। लेजेंडरी डायरेक्टर बिमल रॉय को इन्हें असिस्ट करने का मौका मिला और साथ में फिल्म में एडिट करने का भी मौका मिला। और दो मशहूर फिल्मों में जो है असिस्ट करते हुए इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और वो दो फिल्में थी दो बीघा ज़मीन और देवदास। और इनके फिल्मों का स्टाइल जो है मिडिल सिनेमा कहा जाता है, जहाँ पर जीवन से मिडिल क्लास के जीवन से जुड़ी कहानियाँ यह दर्शाते हैं। और ऐसे ही फिल्में लोगों को बहुत पसंद आती है। अभी जो गाना हम चलाने वाले हैं आपके लिए गोलमाल फिल्म का ये तराना है और गोलमाल फिल्म भी कुछ ऐसी ही थी जीवन की सच्चाई को दर्शाते हुए।

0: के सितारे।
1: चलिए रशीदा की फिल्मों के बारे में बात करें तो अपने करियर के दौरान इन्होंने 40 से भी ज़्यादा फिल्में बनाई हैं और इनके कुछ पॉपुलर फिल्में जो है वो खासकर मिडिल क्लास फैमिली की कहानियों से जुड़ी होती है। सिंपल और रियलिस्टिक कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे आनंद फिल्म की इस बात करें तो आनंद फिल्म में राजेश खन्ना जी ने जो किरदार निभाया था, देखिए आज भी हमें याद है।

0: मतलब कि जो किरदार उनका था, और फिर इमोशनल स्टोरीज हुआ करती है, और कॉमेडी से जुड़ी हुई कहानियाँ भी इनकी काफ़ी पॉपुलर है, जैसे चुपके चुपके, गोलमाल, इस फिल्म की अगर बात करें, सारी फिल्में जो है इनके जो है करियर की कॉमेडी फिल्मों में नाम शामिल होते हैं। और वहीं पर इनके फिल्मों का म्यूज़िक भी बड़ा कमाल का होता था। इनके जो फिल्में हैं वो मानवीय रिश्तों को बहुत ही खूबी दर्शाते थे। चले अभी के लिए आनंद फिल्म की इस बात करें तो आनंद फिल्म का ये गाना अभी हम आपके लिए चलाने वाले हैं। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जी इस फिल्म में नज़र आए थे। ऑब्वियसली ये फिल्म अपने आप में एक मास्टरपीस है, जो दोस्ती पर आधारित है, जो ज़िंदगी पर आधारित है, जो इमोशंस पर आधारित है। फिल्म में जो है काफ़ी पॉपुलर डायलॉग्स भी है, जैसे कि बाबू मोशाय, ज़िंदगी भी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए, और हिंदी सिनेमा के ग्रेटेस्ट फिल्मों में इस फिल्म का नाम शामिल होता है।
1: मैंने

0: के सितारे
1: चलिए दिस इज़ यू आपके सितारे और आज हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश मुखर्जी इनके बारे में और इनके बनाए हुए फिल्मों के बारे में. अब जो अगला गाना हम चलाने वाले हैं अभिमान इस फिल्म का तराना है. अभिमान इस फिल्म को इन्होंने बनाई थी. अभिमान इस फिल्म में ये नज़र आए थे अमिताभ बच्चन जी नज़र आए थे, साथ में जया बच्चन थी और ये फिल्म भी काफ़ी कमाल की थी. ऐसे ऋषिकेश मुखर्जी इनके बारे में बात करें तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन रहे हैं और साथ ही नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के. वहीं पर भारत सरकार की ओर से इन्हें कई बड़े बड़े जो है अवार्ड्स से नवाजा भी गया था. इनके अवार्ड्स के बारे में थोड़ी देर में अगर हम बात करेंगे और इनके करियर की बात करें तो इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में असिस्टेंट डायरेक्टर और एडिटर के रूप साथ साथ कैमरामैन के भी रूप में इन्होंने काम किया है. इसलिए इनके फिल्मों को अगर हम देखते हैं तो फिल्म में जो बारीकियाँ है वो काफ़ी खूबसूरती से नज़र आती है.

मैं आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। मैं हूँ सुमी और आप सबका साथ हम दे रहे हैं आपके सितारे इस प्रोग्राम में। और चलिए अभी के लिए मिली फिल्म का ये तराना हो जाए आप सभी के नाम। मिली ये फिल्म भी ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी इन्होंने, और मिली इस फिल्म में जया भादुरी नज़र आई थी, जया बच्चन नज़र आई थी। और अब देखेंगे इनकी काफ़ी फिल्मों में जया बच्चन नज़र आई है, और जितनी भी फिल्में नज़र आई उतनी सभी फिल्में काफ़ी पॉपुलर भी हुई है, काफ़ी हिट भी हुई है, जैसे कि मिली, गुड्डी, अभिमान, चुपके चुपके, बावर्ची जैसी फिल्में।

0: RM3 Radio. Radio.
1: और चलिए आपके सितारे के इस सेकंड आवर

तो है तुमसे हर खुशी अपनी अभिमान फिल्म ये जो है 1973 में रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जो है कहानी बड़ी ही खूबसूरती से इस फिल्म में दिखाई गई थी इनके शादीशुदा ज़िंदगी की इनके करियर की और फिल्मों को इस फिल्म को लोगों ने बेहद ही पसंद किया था तो यह है आपके सितारे और आज आपके सितारे इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश

0: मुखर्जी इनके बारे में
1: आपके सितारे
0: चलिए जहाँ कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं आप सभी के साथ के लिए शुक्रिया और ऋषिकेश ऋषिदा की बात करें तो 1999 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था वहीं भारत सरकार की ओर से 2001 में पद्म विभूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ था और वहीं पर कई अन्य अवार्ड्स भी इनकी बनाई हुई फिल्मों को मिले हैं और यहाँ पर अगर अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पर इनकी काफ़ी फिल्में जो है काफ़ी अवार्ड्स ले गई है जैसे कि अगर हम फिल्म फेयर की बात करें तो बेस्ट एडिटिंग के लिए नौकरी इनकी फ़िल्म को अवार्ड मिला था वहीं पर मधुमति इस फिल्म के लिए आनंद इस फिल्म को बेस्ट स्टोरी का भी अवार्ड मिला था वहीं पर खूबसूरत जो फिल्म थी ये बेस्ट मूवी का अवार्ड ले गई थी फिल्म फेयर की ओर से तो इनकी बनाई हुई काफ़ी फिल्मों को काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं और लोगों ने इनके फिल्मों को बहुत पसंद किया है अभी के लिए नमक हराम फिल्म का ये गाना हो जाए

0: आपके सितारे
1: चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन पर और इस समय आपके सितारे इस प्रोग्राम में हम ऋषिकेश मुखर्जी इनके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे अपने करियर के दौरान इन्होंने 4 दशक से भी ज़्यादा फैले अपने करियर में 42 फिल्में बनाई हैं और 1998 में आई फिल्म झूठ बोले कवा काटे ये फिल्म जो है इनके करियर की अंतिम फिल्मों में से थी। ऐसे इनके काफ़ी फिल्मों में हमने अमोल पालेकर जी को भी देखा है और इस फिल्म में भी उन्हें अमोल पालेकर जी को कास्ट करने की बड़ी इच्छा थी लेकिन अमोल पालेकर जी की उम्र होने की वजह से इस फिल्म में उन्होंने अनिल कपूर जी को कास्ट किया था और इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ जूही चावला नज़र आई थी और साथ में अमरीश पुरी भी थे। ऐसे ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में बात करें तो अनाड़ी इस फिल्म को इन्होंने राज कपूर साहब के लिए डायरेक्ट किया था और इस फिल्म से इन्हें अपनी पहचान मिली थी। आनंद इस फिल्म को जो इन्होंने बनाया था, इस फिल्म की स्टोरी को इन्होंने काफ़ी समय पहले लिखा था लेकिन इन्हें फिल्म को बनाने का मौका काफ़ी बाद मिला। और वहीं पर खूबसूरत ये जो फिल्म थी जिसमें रेखा नज़र आई थी, इस फिल्म को उन्होंने रेखा को ही ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की कहानी को लिखा था। और वहीं पर इनके बारे में कुछ और बात करें कि एक समय ऐसा भी आया था जब ये इन्हें हेल्थ इश्यूज़ होने लगे थे, इन्हें अर्थराइटिस हो गया था और अर्थराइटिस होने के बावजूद ये व्हील चेयर पर बैठकर अपनी फिल्मों को डायरेक्ट किया करते थे।

0: आपके सितारे।
1: चलिए आज का हमारा आपके सितारे प्रोग्राम जो ऋषिकेश मुखर्जी पर था, इस आखिरी गाने के साथ ख़त्म होने को चला। ऋषिदा ने अपनी फिल्मों में कभी एक्शन, वायलेंस या ग्लैमर को नहीं दिखाया। इनकी फिल्में जो है बहुत ही साधारण हुआ करती थी, आम जिंदगी से मेल खाती थी और हर कोई इनकी फिल्मों को देखकर रिलेट कर पाता था। यानी कि ऐसा लगता था कि शायद ये हमारी ही ज़िंदगी की कहानी है और ऐसी फिल्में जो आप पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते थे, इनकी फिल्में ऐसी हुआ करती थी। तो चलिए ऋषिकेश मुखर्जी पर से जुड़ी कुछ बातें हमने आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर की, उनकी बनाई हुई फिल्मों के कुछ गाने आपके लिए चलाए। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। 5:50 पर आप जो है हमारी धरोहर इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे किरण जानकी से और 6 बजे जो है आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। तो चलिए अभी के लिए बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये जो तराना है किशोरदा की आवाज़ में आप सबके नाम करते हैं और इसी के साथ जो है आपके सितारे इस प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं। आपका साथ हमें यूँ ही मिलता रहे रेडियो मनोरंजन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए।
0: आपके सितारे

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस स्मॉल इंडस्ट्री डे हर बरिस मनावल जाला 30 अगस्त के। ई दिन लघु उद्योग स्मॉल इंडस्ट्री के बढ़ावा देवे के और बेरोजगार लोग के रोजगार के अवसर देवे के उद्देश्य से मनावल जाला। भारत जैसन विकासशील देश के आर्थिक विकास खातिर लघु उद्योग के महत्व के भूमिका पर जोर तो देवल ही जाला, लेकिन मॉरिशस जैसन छोटा टापू देश में छोटा उद्योग के महत्व पर और बहुत जोर देवल जाला। और हमने के देश में ये उद्योग तब सबसे जस्ती कामकाजी साबित होल जब हमने के देश में लॉकडाउन चलत रहल, जहाँ पर सब जोन कारोबार बा ठप पर गल रहल, कितने जना नौकरी बिला दिले रहलन सा। और ऐसन में मॉरिशन सरकार स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के जरिए कितने सुविधा देलक, छोटा उद्योग शुरू करे होला लोग के, औरत लोग के विशेष सुविधा देवे के प्रावधान कर गए। और ई लघु उद्योग तब से चल ले आवता, ई रुके के नाम नहीं लेवता। ऊ चाहे कितना भी छोटा उद्योग रही जोन छोटा पैमाना पर करल जाता, सब कोई के बहुत सहयोग देवल जाता और सामान्य रूप से मजदूर और श्रमिक के सहायता जस्ती देवल जाला। ई उद्योग जेकर में 10 से 25 लोग मजदूरी के बदले में काम करेलन सा, उ लघु उद्योग के अंतर्गत आवेलन सा। लघु उद्योग खातिर सरकार कितने सुविधा देवता, जैसे कि

0: लोन बा, मशीनरी के सुविधा बा, और एकर में औरत लोग के जस्ती से जस्ती जो मौका बा, अवसर बा, उ देवल जाला। और फिर एगो और समस्या बा जेकर से निपटे खातिर ई लघु उद्योग बहुत अच्छा साबित होवेला, और उ है बेरोजगारी के समस्या से निपटे खातिर। जब आप पढ़ल लिखल शिक्षित हवा और आपके आपके मनपसंद नौकरी नहीं मिली, तो सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप अपन लघु उद्योग शुरू करा। लघु उद्योग से आप सकबा एगो मध्यम उद्योग बने, और आगे चल के सकबा बड़ा उद्योग भी बने। और जैसे तोहरा बोलत है जा कि ये लघु उद्योग खाली मॉरिशस में नहीं बल्कि विश्व भर में प्रेरित करल जाता सब कोई के करे के, कहे कि अब एगो ऐसा समय चलाल बा जहाँ पर दिखत हवा एक दिन युद्ध आवता, उधर वायरस फैल जाता, फिर जो क्लाइमेट चेंज की समस्या बा वो भी आवता। तो ऐसन में बहुत ज़रूरी बा कि व्यक्ति अपन पैर पर खड़ा रही, व्यक्ति अपन उद्योग चलाए, और ये जो छोटा उद्योग है वो लोग के हर स्तर पर प्रोत्साहन देवल जाला। जनता के भी प्रोत्साहित कराल जाला कि आपके कुछ खरीदे के होई तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा ब्रांड नहीं खरीदा, बल्कि अपन देश के जो स्थानीय पैदावार बा, ख़ास तौर पर जो छोटा उद्योग बा, स्मॉल एंटरप्राइज, हुआ पर खरीदारी करा। कहे कि एकर से आपके देश के इकोनॉमी के फ़ायदा होई, आपके जो जनसाधारण बा उ लोग के प्रगति होई, और साथ में आपके देश सकी खुद अपन पैर पर खड़ा रहे, अपन सामान खुद पैदा करे, और आपके भी कोनो भी समस्या होई तो दूर नहीं पड़ जाए के जब युद्ध के दौरान कोनो नाव नहीं सकता आए, जहाज़ नहीं सकता आए विदेश से, तो एकर पर आपके पैदावार निर्भर नहीं रही। कहे कि आपके पैदावार खुद आपके देश के जो छोटा एंटरप्रेन्योर लोग हवन जा उ लोग ही पैदा करे लन जा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के 6 दिन बाद भी हालात बहुत ही गंभीर बने हुए हैं। हजारों लोग अब भी लापता हैं और दुर्गम इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी हैं। नेपाल में जमीन पर कैसी है स्थिति, इसे लेकर नेपाल के पत्रकार दिवाकर राय से खास जानकारियां इस बुलेटिन में। सड़क हादसों और नशे में गाड़ी चलाने के बढ़ते मामलों के बीच सड़क सुरक्षा कानून को और कड़ा करने की तैयारी है। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल कल राष्ट्रसभा में पेश किया जाएगा, जिसमें वाहन जब्त करने से लेकर सजा बढ़ाने तक कई अहम बदलाव प्रस्तावित हैं। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन का अब पहले ही अनुमान लगाया जा सकेगा, इसके लिए एक नया एप्लीकेशन शुरू किया गया है, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र सहित कई बातों के आधार पर पेंशन की रकम का हिसाब लगाया जा सकता है। मॉरिशस की सहकारी संस्थाओं के लिए विदेशी बाजारों तक पहुंच आसान बनाने की पहल की गई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने गो एक्सपोर्ट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका मकसद स्थानीय सहकारी संस्थाओं को अपने सामान मॉरिशस से बाहर बेचने और निर्यात की दिशा में आगे बढ़ने में मदद देना है। और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी CSO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हैं। इस दौरान वे सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। वहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और विभिन्न समुदायों के लोगों से मुलाकात की। और अब समाचार विस्तार से। हिमालयी क्षेत्र में आई विनाशकारी बाढ़ के 6 दिन बाद भी नेपाल में हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं। कई इलाके अब भी तबाही के निशान

समेटे हुए हैं। हजारों लोगों का कोई पता नहीं और बचाव दल समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं। सबसे कठिन तलाश उन सुरंगों में चल रही है जहां हाइड्रो पावर परियोजनाओं के सैकड़ों कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। दुर्गम पहाड़ी रास्ते और मलबे के बीच राहत अभियान लगातार जारी है। पड़ोसी तिब्बत में भी इस आपदा का भारी असर पड़ा है। नेपाल और हिमालयी क्षेत्र में बाढ़ के बाद

0: लगातार बढ़ रही है। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार नेपाल में अब तक कम से कम 903 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,247 लोग अब भी लापता हैं। इनमें 3,655 नेपाली नागरिक और 592 विदेशी नागरिक शामिल हैं। बुधवार को नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास हिमनद का एक हिस्सा टूटने के बाद बर्फ, चट्टानों, मिट्टी और पानी का तेज बहाव नीचे की घाटियों की ओर आया। देखते ही देखते कई गाँव इसकी चपेट में आ गयी, और पुल बह गए, बिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा और कई इलाकों का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया। इस समय बचाव दलों की सबसे बड़ी चिंता हाइड्रो पावर परियोजनाओं में काम करने वाली 937 लापता कर्मचारी है। रसुवा और नुवाकोट जिलों में 11 पनबिजली परियोजनाओं में उनकी तलाश की जा रही है। आशंका है कि इनमें से कई कर्मचारी सुरंगों के भीतर फंसे हो सकते हैं। सुरंगों में जमा भारी मात्रा में मिट्टी और मलबे को हटाने के लिए मशीनों और नियंत्रित विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ सुरंगों में बचाव दल प्रवेश करने में सफल हुए हैं, लेकिन तलाश अब भी जारी है। नेपाल की सेना, पुलिस और बचाव कर्मियों के साथ भारत और चीन के विशेषज्ञ भी अभियान में मदद कर रहे हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टरों के जरिए भोजन, दवाइयाँ और दूसरी जरूरी सामग्री पहुँचाई जा रही है। आपदा के बाद नई चिंता संभावित भूस्खलन और पहाड़ी इलाकों में बने अस्थायी जलाशयों को लेकर भी है। अधिकारियों को आशंका है कि इनके टूटने से दोबारा बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रभावित इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है। सीमा के दूसरी ओर तिब्बत में भी तबाही हुई है। चीनी अधिकारियों के अनुसार वहां 16 लोगों की मौत हुई और 546 लोग लापता हैं। चीन ने 2000 से अधिक बचाव कर्मियों को अभियान में लगाया है। नेपाल में फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती हजारों लापता लोगों का पता लगाना है।
1: नेपाल की तस्वीरें तबाही की कहानी बता रही हैं, लेकिन ज़मीन पर हालात इससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हैं। राहत और बचाव अभियान के बीच हजारों परिवार अब भी अपनों की खबर का इंतज़ार कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति को और करीब से समझने के लिए हमारे सहयोगी शहजाद जुमन ने नेपाल के पत्रकार दिवाकर राय से बात की, उनको सुनते हैं।
2: More than 10,000 people have already been rescued, and we have again more than 20,000 security personnel deployed to various affected areas who are in the search and rescue operation right now. So, but the operation is being hampered by bad weather. Because it's monsoon here, and Nepal has lots of difficult terrains, and also the risk of landslide and further flooding has made the task very, very difficult. We have helicopter operations that have been affected by the weather. Looking at the scale of what happened last Wednesday, and looking at the scale of disaster that we saw and Nepal experienced, yes, there is a very, very real possibility that the death toll could rise further, unfortunately. In this situation, you know, nothing is enough, you know. No amount of money or no amount of assistance is enough. The only thing is we need to do our best. We need to, you know, give our best and try to help people in need.
1: साल की शुरुआत से अब तक हमारी सड़कों पर 103 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। 1500 से ज्यादा वाहन चालकों की अल्को टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 500 चालक ड्रग्स के प्रभाव में पाए गए। इन आंकड़ों के बीच रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल कल संसद में पेश किया जाएगा। ज्यादा जानकारियां इस रिपोर्ट में।
3: पहली जनवरी से अब तक यानी 8 महीनों में 1505 अल्को टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2025 में पूरे साल ये संख्या 968 थी। 494 चालकों को ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के लिए पॉजिटिव पाया गया। चिंताजनक आंकड़ों के बीच सरकार एक सख्त कदम प्रस्तावित कर रही है। उन चालकों के वाहन की जब्ती जिन्हें शराब या ड्रग्स के लिए पॉजिटिव पाया गया हो। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के तहत पुलिस को ये अधिकार होगा कि यदि कोई चालक में शराब निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है, ड्रग्स टेस्ट में वो विफल रहता है, या उसके शारीरिक व्यवहार में नशे के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं, तो पुलिस उसके वाहन को जब्त कर सकेगी। 8 महीनों में सड़क हादसों में 103 लोगों की मौत, इनमें दोपहिया वाहन इस्तेमाल करने वाले सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक 10,254

0: चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस पर पेनल्टी पॉइंट्स लगाए जा चुके हैं। हाल के दिनों में रोड रेज यानी सड़क पर गुस्से और हिंसक व्यवहार की घटनाएं भी लगातार बढ़ी हैं। इस समस्या से निपटने के लिए विधेयक में रोड रेज से जुड़े व्यवहारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इस नए अपराध के दायरे में हमला करना या हमले की धमकी देना, अपशब्दों का इस्तेमाल, किसी आक्रामक हथियार का उपयोग, किसी वाहन को पकड़ कर लटकाना, वाहन का दरवाजा जबरन खोलने की कोशिश करना, वाहन को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक सड़क पर यातायात की स्वतंत्र आवाजाही में बाधा डालना या आम लोगों में डर पैदा करना शामिल हैं। रोड रेज के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और अधिकतम 12 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने और किसी अन्य व्यक्ति की मौत का कारण बनने को भी रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के तहत एक अलग अपराध बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकतम 5,00,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा। वही दोबारा अपराध करने पर अधिकतम जुर्माना बढ़कर 1,000,000 रुपए और अधिकतम जेल की सजा 8 साल तक हो सकती है।
1: अच्छी तरह से देखभाल की गई आर्टेरियो वेनस फिस्टुला डायलिसिस कराने वाले मरीजों के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। मॉरिशस के मरीजों को इसकी बेहतर देखभाल में मदद करने के लिए भारत से एक वास्कुलर सर्जन अपनी विशेषज्ञता साझा करने आए हैं। खून तक पहुंच के इस ज़रूरी रास्ते की बेहतर निगरानी के लिए अब एक नया ऐप भी मरीजों की मदद करेगा। ज़्यादा जानकारियाँ करुणा लालू के साथ।
0: कचमिलिया की मेडिकल क्लिनिक में एक चिकित्सा कक्ष में श्री पी, जो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, पिछले 15 वर्षों से डायलिसिस पर हैं।
2: Nous opération ça. Nous fait dès la 20 juin pour nous gain pression 10 ans pour nous capable faire dialyse. Faut dire une bon pression, un bon fistula et là qu'on va faire dialyse.
0: उनके रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उनके पास एक आर्टेरियो वीनस फिस्टुला यानी कि AVF है, लेकिन इस फिस्टुला की सुरक्षा और नियमित निगरानी आवश्यक है। मरीजों को इसकी बेहतर देखभाल करने में मदद करने के लिए भारत से एक वास्कुलर सर्जन को मॉरिशस आमंत्रित किया गया है। डॉक्टर हिमांशु वर्मा कहते हैं,
3: वी ट्रेन देम बाय स्पेशल टेक्निक बाय गिविंग देम स्टेथोस्कोप्स and we trained them how to listen to their fistula themselves. This technique will enable them to identify the problems in their fistula before it fails. That is a time window you can still fix it.
0: एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया जिसकी मदद से मरीज अपनी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख सकते हैं और अपनी AVF की निगरानी कर सकते हैं। इसमें खास तौर पर अपने रक्तचाप की नियमित जांच और निगरानी की सुविधा शामिल हैं। मॉरिशस में लगभग 1500 मरीज डायलिसिस पर हैं। इनमें से करीब 150 मरीज अभी एक कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं जिसे उदाहरण के लिए गर्दन में लगाया जाता है और जिसके जरिए डायलिसिस किया जाता है।
4: कैथेटर दी प्रोन टू इन्फेक्शन ए एंजिमोन सी दी गेन इन्फेक्शन दी कैपेबल डेवलप एन सेप्टिसेमी ए सा कैपेबल कुट मेम सुर ला वी।
0: इसका उद्देश्य मरीजों को अपनी फिस्टुला को अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखने में मदद करना है, क्योंकि एक AVF कई वर्षों तक मरीज का साथ दे सकती है। डायलिसिस किसी मरीज के जीवन का अंत नहीं, कुछ मरीज इसके साथ कई वर्षों तक और कभी कभी कई दशकों तक भी जीवन जीते हैं।
1: रिटायरमेंट की उम्र में मिलने वाली पेंशन की गणना करने वाला ऐप पिछले सप्ताह लॉन्च किया गया। इस सिमुलेशन में कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे रिटायरमेंट की उम्र, महंगाई और रिटायरमेंट की उम्र के आधार पर कटौती और बोनस की व्यवस्था। मॉरिशस की सहकारी संस्थाओं के लिए अब विदेशी बाजारों के दरवाजे खोलने की पहल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने आज गो एक्सपोर्ट कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य स्थानीय सहकारी संस्थाओं को अपने सामान मॉरिशस से बाहर बेचने और निर्यात की दिशा में आगे बढ़ने में मदद देना है। ये पहल ऐसे समय में हुई है जब EDB की योजनाओं के जरिए पहले ही सैकड़ों स्थानीय कंपनियों को निर्यात के लिए वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। और विदेशी खबरों में, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी CSO शिखर सम्मेलन में

0: हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हैं। इस दौरान वे सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। वहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और विभिन्न समुदायों के लोगों से मुलाकात की। पेश है रिपोर्ट।
1: भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। बिश्केक पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने वहां विभिन्न समुदायों के लोगों से मुलाकात की। उनके होटल में वंदे मातरम के नारों के साथ उनका अभिवादन किया गया। इस दौरान माँ तुझे सलाम पर योग की प्रस्तुति हुई, साथ ही भगवान शिव पर आधारित एक सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किया गया।
2: बहुत-बहुत

0: अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल जाकर भारत के राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्प अर्पित किए और महात्मा गांधी को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर किर्गिस्तान पहुंचे हैं। वे 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले 26वें SCO लीडरशिप समिट में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों का भी कार्यक्रम है। SCO इस वर्ष अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा कर रहा है। संगठन में फिलहाल 10 सदस्य देश हैं। भारत के अलावा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस इसके सदस्य हैं। किर्गिस्तान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि भारत क्षेत्र में सुरक्षा, संपर्क और अवसरों को आगे बढ़ाने के अपने दृष्टिकोण पर काम करना चाहता है। उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए SCO देशों के साथ मिलकर काम करने की भी बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी का बिश्केक दौरा उनकी 2 दिवसीय उज्बेकिस्तान यात्रा के बाद हो रहा है।
1: प्रीमियर लीग के दूसरे दिन के मुकाबले जारी हैं और इंग्लैंड के मैदानों पर एक बार फिर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इप्सविच के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इप्सविच को 5-2 से हराया, जबकि चेल्सी को ब्राइटन को हराने के लिए आखिरी तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। स्कोर 4-3 रहा। करुणा लालू।
2: ओल्ड ट्रैफोर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पीछे रहने के बाद शानदार वापसी की और फिर मैच पर पूरी तरह अपना दबदबा बना लिया। 29वें मिनट में डेविस ने टक्टर बॉयज के लिए पहला गोल किया। 40वें मिनट में ब्रूनो फर्नांडेज ने गोल कर दोनों टीमों को बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ की शुरुआत के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैच की कमान अपने हाथों में ले ली। 56वें मिनट में ग्रीव्स ने गोल कर यूनाइटेड को बरहद दिला दी। शानदार प्रदर्शन कर रहे रेड डेविल्स के कप्तान ने फिर कमाल किया। ब्रूनो फर्नांडिस ने 61वें मिनट में पेनल्टी पर अपना दूसरा गोल दागा और 68वें मिनट में एक और गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। एम्ब्यूमो ने भी गोल कर जश्न में अपना नाम जोड़ा, जबकि अतिरिक्त समय में अकपुम ने गोल कर अंतर कुछ कम किया। अंतिम स्कोर 5-2। ये जीत माइकल कारिक की टीम के लिए काफ़ी राहत देने वाली रही, खासकर हल सिटी के खिलाफ बेहद खराब शुरुआत के बाद। वहीं चेल्सी ने भी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। ब्लूज ने स्टैमफोर्ड ब्रिज में ब्राइटन को 4-3 से हराकर अपनी दूसरी जीत हासिल की। लाविया ने मैच के 4वें मिनट में ही गोल कर चेल्सी को बरहद दिला दी। इसके बाद 14वें मिनट में पेड्रो नेटो ने दूसरा गोल दाग दिया। फिर 32वें मिनट में जोआओ पेड्रो ने गोल कर चेल्सी की बरहद और मजबूत कर दी। इसके ठीक 3 मिनट बाद ब्राइटन ने यालकुए के गोल से वापसी की कोशिश की। दूसरे हाफ में सिगल्स ने अंतर और कम कर दिया। 63वें मिनट में जोआओ पेड्रो ने आत्मघाती गोल किया।

0: लेकिन 74वें मिनट में पाल्मर ने शानदार शॉट के जरिए ब्लूज को फिर से राहत दिलाई। और हालांकि अतिरिक्त समय में 96वें मिनट पर ग्रॉस ने एक और गोल कर अंतर कम किया, चेल्सी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। अंतिम स्कोर 4-3, 2 मैच 2 जीत। चेल्सी ने अपने धमाकेदार आगाज की पुष्टि कर दी।
1: और अब पेश है मौसम संबंधी जानकारियां। मस्कारेंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर तेज हवाएं चल रही हैं। आज रात बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी, खासकर पूर्व, दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर कहीं कहीं कोहरे भी छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी पूर्व, दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 19 से 22 और साहिली इलाकों पर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में 3.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:18 पर सूरज निकलेगा।

और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ देर में शोक समाचार सुन सकेंगे। इकबाल रोड विच एमिल त्रियोली में 58 साल के 58 ईयर ओल्ड के जनाब अशरफ चेदी, जो अशरफ से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात 8:30 बजे उनकी बेगम बीबी रुखसाना मुनबहाल के घर इकबाल रोड विच एमिल त्रियोली से उठाकर गिश्तिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8:30 PM। रॉयल रोड रोजबेल में सुपरकाश के पास 45 साल की 45 ईयर ओल्ड की मिसेज बीबी फजाना महमूद अली, पैदाइश नाम इस्लाम और जो फजाना से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज रात 9 बजे उनके दामाद मोहम्मद यशिर परमिसा के घर रॉयल रोड रोजबेल सुपरकाश के पास से उठाकर प्लेनमायों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। अवका स्ट्रीट मौलाशो में 70 साल की 70 ईयर ओल्ड की श्रीमती शीला सिचोन, पैदाइश नाम मंगा, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे राकेश सिचोन के घर अवका स्ट्रीट मौलाशो से उठाकर काथकोको की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। जबुलेन थोबिश रोड त्रियोली में 78 साल के 78 ईयर ओल्ड के श्री बाबू राव दुखी, जो विजय से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पहले कृषि उद्योग मंत्रालय अब्याकोम्बरी में काम करते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुपहर बाद के 3 बजे उनकी पत्नी जयंती दुखी के घर जबुलेन थोबिश रोड त्रियोली से उठाकर तेमिनिस त्रियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 3 PM। शेनफील रोड रिवियर जुरांपो में 66 साल के 66 ईयर ओल्ड के श्री देवानंद रामभरत, जो जॉर्ज से ज्यादा जाने जाते थे और रिवियर जुरांपो के CAB दफ्तर में काम करते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनकी पत्नी कविता रामभरत के घर शेनफील रोड रिवियर जुरांपो से उठाकर उत्तरी रिवियर जुरांपो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 9:30 PM। पॉइंट डिस्नी रोड बुवालों में 67 साल की 67 ईयर ओल्ड की श्रीमती ललिता गुलजा, पैदाइश नाम बुलक सिंह और जो अमृता से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर

वेंटिस ने होड़ बुवालों से उठाकर तोंबो में बर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। नोवेल फ्रांस में 49 साल के श्री अशोक कुमार कुरमुल, जो विशाल से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी पिंकी और भाई धीरज कुरमुल के घर नोवेल फ्रांस से उठाकर मार्गजानी रोजबेल का कब्रस्तान ले जाई जाएगी और दफनाने के लिए मार्गजानी का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुमरो एट 9:30 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल मंगलवार 1 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक NHDC सुयाक और मोसल मोंग्रीग्री में और परसों बुधवार 2 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक सैंक्वा और आसपास के इलाकों में एमिल बासे सेंट मारी इंपास सेंट मारी रूट बासिन नंबर 1 और 2 मोसलमों लावाले और सोफिया लेन में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सोमवार 31 अगस्त घड़ी मिला लीजिए शाम के 6:30 बज रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी का वेलकम है। मैं हूँ सुमी और आप सबका साथ देने के लिए हम एक बार फिर आ गए हैं। आप सबसे यहाँ पर जुड़ चुके हैं और अभी से लेकर रात के 9 बजे तक हम आपके साथ साथ रहने वाले हैं। तो कैसे हैं आप? ठीक है और दिन भी अच्छे से बीत रहा होगा ऐसी उम्मीद हम करते हैं। तो चलिए नई सोच ये जो प्रोग्राम है अभी से लेकर 7 बजे तक चलेगा और 7 से 9 के बीच आप दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को सुन पाएंगे। तो चलिए ये जो मंडे है और आज तो अगस्त महीने की आखिरी तारीख है, कल से नया महीना शुरू हो जाएगा। आजकल तो समय इतने जल्दी बीत रहा है कि क्या कहें। और समय की बात करें तो वक्त की बात है, वक्त की कद्र करें तो वक्त आपकी कद्र करता है। तो चलिए ऐसे में इस खूबसूरत गाने के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं।

तो चलिए इन खूबसूरत गानों के बीच आपका साथ हमें मिल रहा है। नई सोच ये प्रोग्राम आप रेडियो मनोरंजन पर सुन रहे हैं। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। कभी कभार जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं ना, जो लगता है कि कभी बीते ही नहीं, कभी ख़त्म ही ना हो, जिन्हें हम बांध कर रख पाए, जिन्हें हम संजो कर रख पाए, जिन्हें हम संभाल कर रख पाए। लेकिन वक्त है, वक्त तो बीतता ही रहता है, कौन यहाँ पर किसके लिए रुकता है, बस यादें जो है रह जाती हैं। और ऐसे ही खूबसूरत गानों के बीच हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, आपका साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया। और चलिए अब बारी है इस अगले तराने की।

0: नहीं सो।
1: जी हाँ, कभी कभार जिंदगी को समझने में ये जिंदगी ही गुजर जाती है और कुछ बातें, बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि कभी कभार हम बीते हुए बातों में या आने वाले कल में इस तरह से अपने आप को खो देते हैं कि हम अपने आज को जी नहीं पाते हैं। अगर आज को जी लेंगे तो आने वाले कल में जो होगा इसकी चिंता नहीं होगी, क्योंकि आज के समय को हमने बहुत अच्छे से स्पेंड किया है अपनों के साथ, अपने सपनों को पूरा करते हुए, अपने अरमानों को पूरा करते हुए और कुछ वैल्यूएबल करते हुए। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ है कि हम बढ़े इस आखिरी गाने की ओर, और इसी गाने के साथ नई सोच ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और इसके तुरंत बाद शुरुआत होगी दिलों की आवाज़ की। तो जुड़े रहिएगा, हमारा साथ देते रहिएगा ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Monday, 31st August, time check, it's 7 p.m.
4: दिलों की आवाज़।
3: और चलिए 7 बजते ही रेडियो मनोरंजन पर शुरुआत होती है दिलों की आवाज़ की, और दिलों की आवाज़ को लेकर यहाँ पर मैं सुमी आ चुकी हूँ, आपका साथ हम दे रहे हैं। ऐसे तो 4 बजे से ही हमारा और आपका साथ है यहाँ पर ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। रात के 9 बजे तक हम आपके साथ जुड़े रहने वाले हैं, और दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में आप बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ते हैं और रोमांटिक गानों की फरमाइश करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आज तो मंडे है और अगस्त महीने की अंतिम तारीख, और कल एक नए महीने में हम कदम रखेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि अगस्त का महीना बहुत अच्छे से बीता होगा आप सभी के लिए, और ये जो नया महीना कल से जिसकी शुरुआत होगी, ये एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ शुरू हो, और जो भी हो अच्छा ही हो। और चलिए, ऐसी अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छे अच्छे गानों के साथ 2 घंटे के इस सफ़र में हम आपका साथ देने वाले हैं। नॉट टू फॉरगेट, आप भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं और जुड़ सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5250-6200 पर। साथ ही यू कैन कॉल अस ऑन 4028070। आज के इस प्रोग्राम की चलिए शुरुआत करते हैं फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म के इस गाने के साथ।

0: लेकिन है ना, ज़िंदगी को गुजारने के लिए तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए, आपका साथ देने के लिए। और RM3 रेडियो मनोरंजन पर आप भी बड़े ही प्यार से हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हमारे सभी प्रोग्रामों को पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, आप है तो हम हैं, हम हमेशा कहते हैं, और आपका साथ हमें यूँ ही मिलता रहे। अभी के लिए आपके ढेर सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, आपकी फरमाइशें मिल रही है, तो चलिए एक नज़र उन पर दौड़ाते हैं।
1: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
0: यस, दिस इज़ योर दिलों की आवाज़ ऑन रेडियो मनोरंजन, और इस समय स्वेनल हमारे साथ जुड़ी हुई है, और बड़े ही प्यार से इस अगले गाने की फरमाइश उन्होंने की है। और ये जो अगला तराना है इनकी ओर से यहाँ पर जाता है इनके भाई श्रवण के लिए, भाभी कृति के लिए। और यही गाना इनकी ओर से अभिनव, कियान और नव्या के नाम भी। और यही गाना जाएगा इनकी ओर से पूरे तिलक फैमिली के नाम, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। और अभी के लिए आपका प्यार भरा साथ, और ढेर सारे मैसेजेस हमें मिल रहे हैं 5250-6200 पर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: अजय, इन गानों को हम नहीं भूल पाएंगे, इतने खूबसूरत गाने अभी सोनू निगम की आवाज़ में तुमको ना भूल पाएंगे, फिल्म का ये तराना अभी आप सुन रहे थे। और चलें यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट की ओर हम नज़र दौड़ाते हैं। गुलशन जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे कि आज उन्हें एक ऐसा गाना याद आया जब वो प्राइमरी में थे तो सुना करते थे, तो उनको मन कर रहा है कि अगर वो गाना हम उनके लिए चला पाए तो। तो चलिए, किंग अंकल फिल्म का ये तराना है, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो। और ये गाना आपकी ओर से आपके मामा प्रभा के नाम, सिस्टर दीक्षिता के नाम, आयशा के नाम, साथ में सभी भोला फैमिलीज के लिए, हमारे सभी आजेस के लिए। और यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हर रोज़ हमारा साथ देते हैं, तो ये गाना खास कर आपके लिए भी गुलशन जी।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चले दिलों की आवाज़, ये प्रोग्राम है और शाम का वक्त है इस समय, जो है लेट इवनिंग, इस समय डिनर करते करते हमारा साथ दे रहे हैं आप सभी को बुना पेची शुभाहार। और यहाँ पर अच्छे खाने के साथ अच्छे गाने भी सुनने का मौका मिल रहा है और देखते ही देखते यहाँ पर लगभग 8:15 बजने को है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेडिकेशन। और अगला जो तराना है, घर का चिराग फिल्म का ये गाना होगा, अमित कुमार जी की आवाज़ में, और पॉपुलर म्यूजिक से सचिन इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है और इस गाने की फरमाइश उन्होंने की है। तो चलिए सचिन जी, ये गाना खासकर आपके लिए चल पड़ा।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस।

0: दिलों की आवाज।
1: तो चलिए अभी जान एल्बम से लिया गया ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सुन रहे थे सोनू निगम जी की आवाज में। 90s का दौर था जहाँ पर बहुत सारे एल्बम्स रिलीज़ हुआ करते थे। ऐसे तो फिल्मों के गाने तो खूबसूरत होते ही थे लेकिन एल्बम्स के गाने भी काफ़ी पॉपुलर होते थे। तो सोनू निगम के एल्बम का एक तराना था और इस एल्बम के काफ़ी गाने हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी खूबसूरत है। और चलिए खूबसूरत गानों का ये जो सिलसिला है, ये जो कारवां है, हम आगे ले जाते हैं। और अगला जो तराना है, हम हो गए आपके, फिल्म का ये जो तराना है, इसकी फरमाइश यहाँ पर आई है दारिन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लवेशा और सभी अपादू फैमिलीज के नाम जो रोशनुआ से इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग द शो एंड आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तराना चल पड़ा आप सभी के लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: और चले दिलों की आवाज के सेकंड आवर में आप सभी का स्वागत हम करते हैं और इस समय रात के 8:08 हो रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर डेडिकेशंस फॉर ऑल योर फरमाइशें जो हमें यहां पर मिल रहे हैं इंडीड इन सभी गानों से कितनी यादें जुड़ी है ना क्योंकि कभी भी कोई गाना मांगता है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मेमोरी उस गाने से ज़रूर जुड़ी है तो इसलिए तो आप उस गाने को सुनना चाहते हैं है ना तो चलिए ऐसे में अगला जो तराना है यहाँ पर जाता है गिरीश हरलोल आपके नाम जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है और श्रीमान आशिक फिल्म का ये जो तराना है चुमलू होठ तेरे इस गाने की रिक्वेस्ट इन्होंने की है और यहाँ पर एक और फरमाइश यहाँ पर आई है हेलो प्लीज़ प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय ब्यूटीफुल वाइफ छाया हु इज़ द क्वीन ऑफ माय हार्ट एंड माय लाइफ शी इज़ आल्सो केयरिंग एंड लविंग लॉट्स ऑफ लव एंड हग फ्रॉम हर हस्बैंड सर्वेश और गाना जाएगा सभी विवाह फैमिली के नाम जो बेलेयर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी लक्ष्मण परिवार जो सेंट ओबे से हमारा साथ दे रहे हैं
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए यहाँ पर दिलों की आवाज़, ये प्रोग्राम हर एक की अपनी पसंद होती है, हर एक की अपनी फरमाइश होती है। ऐसे में माधुरी जी की एक फरमाइश आ गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माधुरी जी, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक है। कह रहे कि इस ठंडे ठंडे मौसम में कोई मसाले वाला गाना हो जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें सुन रही है, हमारा साथ दे रही है। तो हमने सोचा माधुरी के लिए एक माधुरी वाला गाना क्यों ना हो जाए। चलिए याराना फिल्म का ये जो तराना है, आपके नाम और खासकर परी के नाम, आप दोनों के नाम बड़े ही प्यार से। उम्मीद करते हैं गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। एंड नॉट टू फॉरगेट 5250 6200 है नंबर हमारा फॉर योर डेडिकेशंस एंड फरमाइशें।

0: स्टेशन है शोला और शबनम का बड़ा ही खूबसूरत सा गाना अभी आप सुन रहे थे और ये जो गाना है पिक्चराइज्ड हुआ था दिव्या भारती और गोविंदा पर और ऐसे में इस समय बड़े ही प्यार से अनीता जी फ्लिक ऑफ लक से हमारे साथ जुड़ी है नमस्ते आपको भी अनीता जी थैंक यू सो मच गानों को पसंद करने के लिए और कह रही कि एक गाना आपके लिए भी आपके सभी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए तो चलिए आपकी फरमाइश पर फरे फिल्म का ये जो तराना है खासकर आप सभी के लिए यहाँ पर बस चल पड़ा
1: दिलों की आवाज़

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: चले इस समय माला जी बासें कट्रबून से हमारा साथ दे रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए माला जी। ऐसे दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में पुराने गाने हम नहीं चलाते हैं, यहाँ पर थोड़े 90s के गाने, थोड़े रोमांटिक तराने चलते हैं। पुराने गाने अगर आप सुनना चाहते हैं तो बेशक रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में आप साथ दे सकते हैं, पुराने गानों की फरमाइश कर सकते हैं जो दोपहर के 12 बजे

0: तो चलिए, इन गीतों को आपने भी गुनगुनाया, इन गानों को आपने भी गाया हमारे साथ मिलकर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो सुरीला सफ़र रहा दिलों की आवाज़ का, अब ख़त्म होने को चला, जाते जाते ये लवली तराना आप सभी लवली लिसनर्स के नाम हम करते हैं। जल्द हमारी आपकी मुलाकात कल फिर होगी। जी हाँ, कल हम आपसे मिलेंगे भक्ति में शक्ति और सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में। तो रेडियो मनोरंजन पर ऐसे ही साथ देते रहिए हमारा, जब भी मौका मिले जुड़ते रहिए हमारे साथ।
1: की आवाज।
0: और चलिए, यहाँ पर 9 बजे जो है रेडियो मॉरिशस से सीधा प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट आप सभी को। हैव अ लवली लिसनिंग ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। सुमिता को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
4: जी हाँ, आज की रात 31 अगस्त 2026 लेंदी के रात है, 9:02 होलबा। हम किरण आप सब कोई के स्वागत करत है, हमार करजोर नमस्ते स्वीकार कर। आशा करत है जा कि आज के इजोन सप्ताह बा आप सब कोई खातिर बहुत अच्छा से शुरू होलबा। थोड़ा कठिन लगेला ये सप्ताह के पहला दिन, लेकिन एक बार जे ई शुरू हो गल, सांझ हो गल, तो मतलब कि दिन कट गल जैसे तैसे, और अब ई सप्ताह के पूरा करे में ढेर घड़ी भी नहीं लगी। देखा देखते देखते ई महीना के आखिर तक चले लीजा। आज 31 अगस्त है, काल से सितंबर महीना के पहला दिन चढ़ जाए। तो आप सब कोई के ई पहला सितंबर के तारीख बहुत बहुत शुभ रही, ऐसन उम्मीद के साथ शुरू करी जा ई पहला गीत रागिनी सवारत के आवाज़ में।

रात के 9:13 होलबा और आप लोग साथ देवा था वजह ई सर्दी मौसम में कहूं कहूं बरसाती मौसम भी बा हवा पानी थोड़ा दिन से काफी ओकर असर पड़ा था हमने के मौसम पर हमने के सेहत पर हमने के मिजाज पर और ऐसन में मसाला के तकारी चाहिए पकावे के चाहिए मसाला पीसे के और ई गीत सुने चाहत हवन बड़की मसाला पीसेला शीला और उनकर पति सुरेन और आप लोग अपन सब लेका लोग के नाम ई गीत करत हवा जा खास तौर पर अभी जे आपके साथ हवन सोनम और आपके पोता यौवन और साथ में कृष हृदय के ई आवाज में ई गीत के जितना कोई भी पसंद करे ला जा आप सब कोई के नाम ई अगला गीत और आपके फरमाइश ऐते बा आपके फरमाइश के बल पर ही ये प्लेलिस्ट फिर से बन ले जाला तो फोन करा और अपन गीत के मांग करा और वो सब गीत चली जोन आपके मनपसंद है

क्रिश रिदोई के आवाज़ में ई गीत के बाद जो नगला गीत के फरमाइश आल बा हियाँ पर मसाला के बात चलल खाए पिए के बात चलल जो रसोई में बनेला और रसोई में ही रह जा। अब बसंत सुपोल जी हमने के कौन सी बेला था एकर बारे में बोलियन बेलेला ई गीत सुने चाहत हवन छोटी पोलॉजी से और आप ई गीत ललिता प्रभावती दादी हरीश भैया और आत्माराम भैया के नाम करत हवा और बसंत सुपोल के आवाज़ में ई गीत आप सब कोई के नाम जेकर ई गीत

रात के 9:26 होल बा और अगला जन गीत के फरमाइश आल बा वह सुनीता ननकू के आवाज़ में चमेली चमेली ई गीत सुने चाहत हवन पितों से अमृता गणेश आप ई गीत पूरा गणेश परिवार के नाम करत हवा साथ में अपन पोती सोनिया परी मीनाक्षी विशान और अपन बेटी के नाम और जितना कोई ई गीत खुशी रहेला जा आप सब कोई के नाम जितना कोई ई बखत काम करत हवा जा या फिर आराम करत हवा जा या फिर ई बखत भोजन होत होई ता आप सब कोई के अमृता जी याद करत हवन और ई गीत आप सब कोई के नाम करत हवन।

नाकों के फुलिया भुइया गिरल जाला ई गीत संभावती दुमन के आवाज में मेविन के ओर से बुंतिया के जानवी के नाम और ललिता जी के ओर से सुकलाल मौसी देवीना ज्ञानी छोटी परभावती आत्माराम भैया और हरीश भैया के नाम

अगला गाना सुना नुयान की आवाज में साधु के बोली बोल के करनी करे सैतान ई गीत के मांग कर लेवन आत्माराम जी बेलिया से अपन चार गो बहिन ललिता छोटी प्रभावती और सुदेवी के नाम

सुना नोयान के आवाज के बाद अगला जो गीत सुनबा वह सुमन राम तोहल के आवाज में बरसेला बरसेला ये गीत सुने चाहत हवन फिनिक्स से रेहाना

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
0: Your kind of music.

मैंने प्यार किया फिल्म से ये जो अगला गीत चला था शारदा सिन्हा के आवाज में, एक फरमाइश कर ले हवन बुआशेगी से धनी जी, धनी जी के ये मनपसंद गीत है और आप सबको के नाम धनी जी के ओर से शारदा सिन्हा के आवाज में कहे तो से सजना।

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो।
0: योर काइंड ऑफ म्यूजिक ऑल डे ऑल

0: संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music.

रात के 11 बजे में अब खाली 7 मिनट बाकी बा और आप लोग अभी ले प्यार से साथ देला जा। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। हमने के मुलाकात कल फजर के फिर से हुई हमारी धरोहर प्रोग्राम में और नहीं तो ई कार्यक्रम में भोजपुरी तड़का में फिर से मिलब जा बीफे के। आप सबको के शुभरात्रि और कल फजर के जो नवा दिन रही नवा महीना रही आप सबको खातिर बहुत शुभ रही ऐसा हमार शुभकामना बा।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे लवली लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। गिनिशा बड़े प्यार से आई है आप लोगों का साथ निभाने के लिए इस प्यारे से सफर में। आपका सुनहरे पल, आपका दिल से स्वागत है। आज फिर हम लेकर आए हैं वो अनमोल नगमे जो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जिंदगी के हसीन लम्हों का एहसास है दोस्तों। तो बस मुस्कुराइए और यादों की इस महफिल का हिस्सा बन जाइए।

दोस्तों, हर पुराना गीत एक खुशबू की तरह होता है। जैसे ही सुनाई देता है, दिल पुरानी यादों के बाग में खो जाता है। आज के इस सफर में हम मिलकर उन यादों को फिर से महसूस करेंगे। तो बैठ जाइए आराम से और अगला नगमा आपके नाम।

कभी किसी गाने ने आपको अपनी स्कूल की याद दिलाई है, या किसी अपनों की मुस्कान, या हो सकता है किसी का प्यार। वैसे भी आज के हर गीत में वही जादू छुपा है, तो बने रहिए हमारे साथ सुनहरे पल में। इस खूबसूरत से शो में हम लेकर आए हैं आपके मनपसंद गीत। तो चलिए अगला नगमा आप गुनगुनाइएगा जरूर, और अपनी उन खूबसूरत यादों को फिर से याद कर लीजिए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रात कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, एक प्यारा सा पुराना गाना दिल को फिर से ताज़ा कर ही देता है। आज हम वही सुकून और प्यार लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए इस खूबसूरत से शो में। वैसे जिंदगी बदलती रहती है, लेकिन कुछ गीत हमेशा दिल में रहते हैं। आज उन्हीं एवरग्रीन मेलोडीज के साथ अपनी रात को यादगार बनाइए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।
2: वही तो है।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो की दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास तब होता है जब एक गीत आपके दिल की बात कह जाए। शायद, बिल्कुल जी शायद, आज का अगला गीत भी आपके लिए कुछ खास हो। किसको पता?

पुराने गीतों की बात ही अलग होती है मेरी जान, ना उनमें शोर होता है ना दिखावा, सिर्फ दिल से निकली हुई आवाज और रूह को छू लेने वाले सुर होते हैं। तो चलिए आप तैयार हो जाइए अगले गीत में खो जाने के लिए।

पुराने गीतों की बात ही अलग होती है मेरी जान, ना उनमें शोर होता है ना दिखावा, सिर्फ दिल से निकली हुई आवाज और रूह को छू लेने वाले सुर होते हैं। तो चलिए आप तैयार हो जाइए अगले गीत में खो जाने के लिए।

खूबसूरत नगमे सुनाते सुनाते इस खूबसूरत शो का अंत में कब पहुंच गया हमें पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है जब इंसान इन खूबसूरत नगमों में खो ही जाते हैं, जैसे कि हम अभी अभी खो गए थे इस एक घंटे की सफ़र में। लेकिन दिल छोटा ना कीजिए, फिर से आएंगे एक और खूबसूरत सी सफ़र के साथ रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, सिर्फ सुनहरे पल में आपके लिए ऑन रेडियो मॉरिशस। हमें इजाज़त दीजिए, शुभ रात्रि।

0: एमबीसी रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
1: श्री आर डी बर्मन जी हमेशा इंस्पिरेशन उनसे हमने लिया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए लाइफ में, कई इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किए, जैसे 12 स्ट्रिंग गिटार, मादल, बेस गिटार। एक बार इस इंडस्ट्री में म्यूजिशियनों की स्ट्राइक हो गई थी, कोई म्यूजिशियन बजा नहीं रहा था,
2: किसी को गाना रिकॉर्ड करना था। तो देखिए इंस्पिरेशन कैसे काम आती है, पंचम दा ने गाना रिकॉर्ड किया, वो गाना बहुत चला और उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें जो म्यूजिक के इंटरलूड्स हैं वो कुछ नहीं है, रिदम चल रहा है, एक आलाप जैसी वॉइस डायलॉग बोलती है, एक इंजन का इफेक्ट दे दिया है और गाना स्मूथली निकल गया। देखिए

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है

धड़के हैं।